0: आत्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि नहीं होती, पर जिसका केंद्र शरीर में है। मृत्यु इस केंद्र का स्थानांतर मात्र है। परमात्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है, पर केंद्र सभी जगह है। जब हम शरीर के इस समीप केंद्र से बाहर निकलने में सफल हो सकेंगे, तभी हम परमात्मा की अपने वास्तविक रूप की प्राप्ति कर सकेंगे। आत्मा न कभी आती है, न कभी जाती है, न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। प्रकृति ही आत्मा के सम्मुख गतिशील है और इस गति की छाया आत्मा पर पड़ती रहती है। भ्रमवश आत्मा सोचती रहती है कि प्रकृति नहीं, वही गतिशील है।
1: सुप्रभात, नमस्कार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है जिसका प्रसारण किया जा रहा है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं और इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी प्यारे श्रोताओं का मैं आपका रेडियो दोस्त कारगर युवा आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सन 2026 के अक्टूबर महीने की आज 4 तारीख है और दिन है रविवार। आज के हमारी पहली प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो ठदा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रामा। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ देश और दुनिया के ताजा तरीन खबरें। तो आइए सभा को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हमारे पहली प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों के रूपरेखा से।

हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति गीत। 6:40 पर प्रसारित होगा गालो श्रोताओं का समाचार। 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे।

7:10 पर आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इंपोर्टेनमेंट। 7:35 पर आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार। 7:40 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सदा बहार।

और इन सब के अलावा आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज आप सुनेंगे 8:30 पर। 8:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर।

0: 9 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। 9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्मी गपशप। 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। 10:10 पर वक्त रहेगा आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड का। 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। तो प्यारे श्रोताओं, ये था आज के हमारे पहली प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उल्लाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल

0: साथ ही इनके साहित्य और भाषाई विरासत को सुरक्षित रखने और डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने पर भी कार्य किया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशिया खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bhartuhari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from Lok Sabha and 10 members from the Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from the lower house and 10 from the upper house. While the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta, Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as the chairperson of the Committee on Chemicals and Fertilizers. Congress MP Charanjit Singh Channi will be the chairperson of the Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing. BJP MP Radha Mohan Singh will be the chairperson of the Committee on Defence. BJP MP Rajiv Pratap Ruti has been appointed as the chairperson of the Committee on Water Resources, while the Committee on Rural Development and Panchayati Raj will be headed by Congress MP Shaptagiri Ulaka. BJP MP Nishikant Dubey has been appointed as the chairperson of Committee on Communications and Information Technology. The term of these committees will be effective from the 26th of last month. Niti Aayog member Rajiv Gauba has emphasized the need for regulatory frameworks to evolve alongside a rapidly changing geopolitical, technological and economic environment. He emphasized that the challenge before policymakers is not to choose between regulation and growth, but to develop regulations that manage risk while supporting innovation, competition and investment. Mr. Gauba stated this while addressing the plenary session on regulatory oversight in an age of disruption at the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi yesterday. Emphasizing the need for a proportionate approach, Mr. Gauba said regulatory requirements should be calibrated to the nature and consequences of the risk involved. The Ministry of External Affairs has summoned the Charge d'Affaires of Pakistan High Commission to lodge India's strong protest over the continued facilitation of illegal cross-border infiltration from Pakistan. India also categorically rejected the baseless and motivated allegations regarding an incident in the Firozpur sector, Punjab, along the international border on Friday. The External Affairs Ministry said that the Pakistani side was informed that 3 individuals infiltrated into the Indian territory, and despite multiple warnings by the BSF to return to Pakistan, they continued to move towards the border fence. The BSF was compelled to engage them for posing an imminent security threat.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और मैं हूं आपका अपना आरजे कारगर, लेकर आया हूं प्रेम, शांति और विश्वास से भरा हुआ आपका अपना आध्यात्मिक कार्यक्रम भक्ति गीत। श्रोताओं, आज का ये पावन सफर समर्पित है प्रभु यीशु मसीह को, जो प्रेम, दया, क्षमा और मानवता के संदेश के प्रतीक हैं। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें दूसरों के लिए करुणा हो, जरूरतमंदों के लिए सहायता का भाव हो और हर इंसान के प्रति सम्मान हो। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखें, क्योंकि ईश्वर पर भरोसा रखने वाले के जीवन में हमेशा आशा की एक नई किरण रहती है। श्रोताओं, प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि हमारे दिल और परमेश्वर के बीच का एक पवित्र संबंध है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो मन को शांति और आत्मा को नई शक्ति मिलती है। और आज के इस विशेष भक्ति संगीत कार्यक्रम में हम सुनने जा रहे हैं क्रिश्चियन भक्ति गीत हाबुंग जोशुआ और पार्टी की श्रद्धा और विश्वास से भरी मधुर प्रस्तुति में। तो आइए श्रोताओं, अपने दिल को प्रार्थना से जोड़िए, मन को प्रभु यीशु के प्रेम से भर लीजिए।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम भक्ति गीत। आज के इस भक्ति गीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं क्रिश्चियन भक्ति गीत। श्रोता, प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम और क्षमा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। उन्होंने हमें यह संदेश दिया कि नफरत को प्रेम से और अंधकार को विश्वास की रोशनी से दूर किया जा सकता है। जब जीवन की राह कठिन हो जाए, जब मन निराश से भर जाए, तब प्रभु यीशु का संदेश हमें याद दिलाता है, विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे साथ होते हैं।

0: श्रोताओ, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति गीत। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का समाचार।
1: हे आकाशवाणी ईटानगर, हेलो पूरा पोल ग आलो लोपिना ने जुत आर होक गालो मेंकेन अगम मेलन जिदाक नांगो दक्षापत कॉपी बोर्ड ऑफ इंडिया ओक स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गद लेकिन गो बे येबाम दुबाम हिदाकला हिल्स टू कप अमला कॉपी वर्कशॉप गो ईटानगर लो दुंगला दो दकालो लो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू में आल जिदाकला मेनला मुग स्टेट होक रिक इलाये ने नीगा दम अगेदा दी पुष्पा सिला दोपत पहिला येद ब इत्ता नम लगा ब कॉफी कल्टीवेशन हिगिम दिन से अरुब इलायम के दो अमला मेंटु निर्म कांडो में मेनला मुग स्टेट होगो कॉफी बागनम इलायन में अन्य हम गोगो ब इगेकु इजालो ब प्रोडक्शन अत्ब नेम्मा कम ब दूनक अमला गोमिन होइनम मेम पाजितु वर्कशॉप हिगिम इरोब योना रिकमेंडेशन गो जिलेन येक दे एगन गवर्नमेंट अलेब पोलो अपम इज दुला गवर्नमेंट पेले लोक योना कागुरता गुरसा गो कायद एगम अलेब कास्ता स्टोकलप के अमला तो कलेक्टु मलो डीसीएम टूर्नामेंट मु मेनला इंडिया हिगिम दिरिक दरेक बले नम लगा ब क्लीनलीनेस जर्नी इरोप गनमम काकुर काक्यम पब्लिक पार्टिसिपेशन इनोवेशन ओक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी हिगी दिन सियारुना अबागोब इदा कुन्नक अमला मेंटू स्वच्छ भारत मिशन इरोप गर्म अन्य न्यू ईगोला न्यू निगोब इकाकु अमला सोशल मीडिया लो पोस्ट दूला डीसीएम मेला मिशन इरोप गदा कोगो कन्वेंशनल क्लीनलीनेस ड्राइव लो न्यूम्ब गोतर तो इजा इलेलाकु टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सैनिटेशन सिस्टम लाल जिखनम मौखिस समतर एक लेनम ही गिमाज बे जग जोगो यारू दकना के अमला मेंता तू लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी गद नॉर्थ ईस्ट फाउंडेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन एंड लाइवलीहुड स्किल्स गद ग तुर्बु दाले जिक लोक सीबे सर्कल लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट सीबे दोलू लोक किन लो इंटीग्रेटेड हेल्थ कैंप को लो दूंगे तू हेल्थ कैंप इदाखलो गायनोलॉजिकल पेडियार्टिक ऑप्टल्मोलॉजी जनरल मेडिसिन सर्जिकल कंसल्टेशन कैंसर टीबी ओरल मेंटल हेल्थ और ऑडियोमेट्रिक स्क्रीनिंग अलजब इक जितु 190 निदुम गो कैंप इदाखलो के लापन पागी कुनमे के अमला सिंह में पाजेता तू कनेक्टिंग हैबिटेट थ्रीविंग वाइल्ड लाइफ अमला अगम गोम लम लेतुला केलोंग फॉरेस्ट डिवीजन गद मोतुम लोक कोबु पत्ता ओक आसा मेन रू गदम अलिब तुस बल्लास का अमला नीतम दोई में नम लगा ब 72nd वाइल्ड लाइफ वीक मलो लोदुम गतु लोदुम अलोलो 47 किलोमीटर गोब बालुकपुंग तू नीचीपु हाई

0: वे लोग आके आया ओके प्लास्टिक ट्रक पे इंगो बत्ती बिंती का गीता तू मेंके नगम हिमनु आकाशवाणी ईटानगर लोग के तपादू ईटानगर के सिद्धार्था बिहार लो गोम्पा मंदिर आली बे मोलिग लग बे मिला कुम्त जोत बे आलिक जिने तावंग मोनिस्ट्री के रिलीजियस हेड रेवरेंड धर्मेद सुंग्रब तुलकु ओके कब कब सीनियर मॉन्क्स रूगदम चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू में मलो कारिक तारीखी तू तावंग मोनेस्ट्री लोक के आदम जाबक डोला गोम्पा मंदिर लगा बे कुमलिक जोलिक जिला ओके आयागम जिस नम असिना पुग्रा ये लोक के एक गो एक जा अमला चीफ मिनिस्टर में कुमलिक जोलिक जीतू इजागे अली बे गोम्पा मंदिर मोलिक जीता नाम हिगी पिर्दे यारू ना बुद्ध धर्म सेंटर को बे इकुल पके अमला निर्मकांडो में मेंता तू इंडिया हो के मेंस क्रिकेट टीम का दे एशियन गेम्स के T20 फाइनल मैच इधर क्लो पाकिस्तान 19 रन्स लो के इगुम गेकला गोल्ड मेडल को पास तू हॉकी के फाइनल मैच इंडिया और मलेशिया केली इकामिंस नम इंडिया और मलेशिया 5-1 लोग इगुम गेक डाला गोल्ड मेडल को पावे जीतू ओलंपिक गेम्स 2028 लॉस एंजलिस लो एक जीता दो ऑक्सिन इंडियन हॉकी टीम क्वालिफाइड गेक बा अमला मेंटू एशियन गेम्स इधर क्रू लोग इंडिया के मेडल्स पाना में हाप का कुन में 85 मेडल्स को बे बोधुं बे पास तू ओके गोल्ड मेडल है 21 गो सिल्वर मेडल्स है 27 गो ओके ब्रोंज मेडल्स 37 गो बे पास तू इंडिया का दे क्रिकेट हॉकी आर्चरी रेसलिंग बॉक्सिंग एथलेटिक्स ओके गोल्फ लो परफॉर्मेंस हम अलग इदुला ओवरऑल मेडल तेलीग रैंक लो फोर्थ नंबर लो आज तू गोगे स्टेट हो के पपुम पर एम कितला ये डिस्ट्रिक्ट लो दोई दो गुम गुमला दो या क्या गला ओके निदो अतिब ओदे दंग नक एंस्कासी ला यतला का एम दुला इटानगर मेट्रोलॉजिकल सेंटर गद येलो अलर्ट गो जिलें जितु के तन गद हिरग गलो में के नागो में जिसा एगे
1: तागप सागम गो HIV बेमार हिगुम अल्लुब हेंसला ये नाम हिगी नरु लोक दिन्स ना
2: HIV बेमार हिगी यो लोक न्योमिन ही तक को एम योम ने HIV बेमार गन लोक इलाला HIV गन नाम ने युपम दोबम हिला बेजी स्रिंज निगबम हिक लोक ओक अन्न HIV गन योम ने अकी लोक आवम से न्योगला दू
1: एम गे मुब तो का मुंब दूबम हिक लोक अलाकिया या हिक लोक गोम्बगोम या हिक लोक दोबम तिबम हिक लोक ओक तारु पीक लोक HIV हिगि न्योंग मादोना क
2: HIV टेस्ट इका हिला येरु तोला का हेंगोर बोलो नोम ने मोपलासिन इला दो नोक गुनम हुनम एमसिन अल्लु ब ग्रुप हिपुलासिन इला दो
1: HIV हि गुम बोसियो का अल्लु बदन हेन लाजुका टेस्ट कोत का ओक HIV गन नाम ने अरिक माप जुका हिगि अरिक सा कामा
2: HIV ग लगु लगा हिगि ने अल्लु ब हेन नाम लगा ब नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 नंबर होगा कॉल रू तोला का
1: हक ना दिन्स ना आबा ही गुम गुम इन होइन लगा बा अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नहर लगन पेले लोक का जिलेंतू

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: श्रोताओं, से थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम सुबह सवेरे के साथ, इस छोटी सी अंतराल के बाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम।

शुभ प्रभात दोस्तों, सभी की ताजी हवा, चिड़ियों की मधुर आवाज और एक नई उम्मीद के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा मॉर्निंग हेल्थ शो सुबह सवेरे में। मैं हूं आपका अपना आरजे कारगे और आज फिर हम तैयार हैं आपके दिन की शुरुआत करने के लिए एक नई ऊर्जा, सकारात्मक सोच और अच्छी सेहत के साथ। दोस्तों कहते हैं, जो सुबह को संभाल लेता है वो पूरे दिन को बेहतर बना लेता है। इसलिए सुबह सवेरे में हम लेकर आते हैं योग के आसान और लाभदायक आसन, स्वस्थ जीवन शैली से जुड़े जरूरी हेल्थ टिप्स और ऐसी छोटी छोटी बातें जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बना सकती है और भी बेहतर। तो दोस्तों, अपने शरीर को थोड़ा सा आराम दीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए एक हेल्दी और हैप्पी मॉर्निंग के लिए। दोस्तों, आज की बदलती लाइफस्टाइल में बढ़ता हुआ वजन एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। कम फिजिकल एक्टिविटी, ज्यादा बैठने की आदत, अनियमित खानपान और तनाव की वजह से शरीर में एक्स्ट्रा पेट जमा होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम नियमित योग, संतुलित आहार और अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो वजन को नियंत्रित करने में काफी मदद मिल सकती है। आज हम बताएंगे कुछ ऐसे योगासन जो शरीर को एक्टिव बनाते हैं, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में मदद करते हैं और कैलोरीज बर्न करने में सहायक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास योग सेगमेंट।

सबसे पहला है सूर्य नमस्कार। ये पूरे शरीर के लिए सबसे बेहतरीन योग अभ्यास है। सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ें, धीरे धीरे आगे झुके, फिर शरीर को पीछे की ओर की विभिन्न मुद्राओं में ले जाएं। दोस्तों, सूर्य नमस्कार ये कुल मिलाकर 12 चरणों का एक स्टेप है। इसे आप शुरू में 4 से 5 राउंड से शुरू करके धीरे धीरे इसके स्टेप्स को आप बढ़ा सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने के फायदे हैं, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है, कैलोरी बर्न करने में मदद करता है, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म बेहतर करने में सहायक होता है।

अगला है उत्कटासन। ये चेयर पोज है, पैरों और पेट की चर्बी के लिए उपयोगी। इसे करने के लिए सिरे खड़े हो जाएं, हाथों को ऊपर उठाएं, घुटनों को मोड़ कर ऐसे बैठे जैसे कुर्सी पर बैठे हो। कुछ सेकंड इसी मुद्रा में रहे। इसके फायदे हैं, जांघों और कुल्हों की मसल मजबूत होती हैं, शरीर की ताकत बढ़ती है और कैलोरीज बर्न करने में मदद मिलती है। अगला है नौकासन। ये बोट पोज है। ये पेट की चर्बी कम करने के लिए लोकप्रिय योगासन है। इसे करने के लिए पेट के बल लेट जाएं, पैरों और शरीर के ऊपरी हिस्सों को ऊपर उठाएं, शरीर को वी आकार में रखें, कुछ सेकंड तक संतुलन बनाए रखें। इसके फायदे हैं, पेट के मसल्स मजबूत होती हैं, कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है और पेट के आसपास जमा पेट कम करने में मदद मिलती है।

अगला है धनुरासन। ये शरीर का स्ट्रेच और एक्टिवेट करने वाला एक आसन है। इसे करने के लिए पेट के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़कर पैरों को हाथों से पकड़े, शरीर को धनुष की तरह ऊपर उठाएं। इसके

फायदे हैं, पेट और कमर के मसल्स पर काम करता है, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है और साथ ही शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। अगला है त्रिकोणासन। ये शरीर के साइड फैट और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। इसे करने के लिए पैरों के बीच दूरी बनाकर खड़े हो जाए, एक हाथ नीचे पैर की तरफ ले जाए, दूसरे हाथ ऊपर की ओर रखे। कुछ सेकंड तक इसी मुद्रा में बनाए रखें। इसके फायदे हैं, कमर और पेट के आसपास के मसल्स सक्रिय होते हैं, शरीर का बैलेंस बेहतर होता है और स्टिफनेस कम होती है।

अगला और अंतिम आसन है कपालभाति प्राणायाम, स्वस्थ और पेट के लिए उपयोगी अभ्यास। इसे करने के लिए आराम से बैठ जाएं, पेट की मदद से सांस को तेजी से बाहर छोड़ें। शुरुआत में 1 से 2 मिनट करें। इसके फायदे हैं, शरीर को एनर्जेटिक महसूस कराने में मदद करता है, पेट की मसल्स सक्रिय होती हैं और ब्रीदिंग कंट्रोल बेहतर होता है। तो दोस्तों, वेट लॉस के लिए कुछ जरूरी बातें, रोज कम से कम 30 मिनट योग या एक्सरसाइज करें, योग के साथ वॉकिंग भी करें, मीठा तला हुआ और जंक फूड कम करें, पर्याप्त पानी पिए, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। अगर किसी को कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या, चोट या बीमारी हो तो योग शुरू करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। याद रखिए दोस्तों, वजन कम करना कोई जल्दी होने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल की यात्रा है। छोटे छोटे कदम, रोज की अच्छी आदतें और नियमित योग आपको पीठ और कॉन्फिडेंट बनाने में मदद कर सकते हैं। इसी के साथ आज का योग सेगमेंट यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे सुबह सवेरे के एक नए योग और नई स्वस्थ जानकारी के साथ। तब तक फिट रहिए, एक्टिव रहिए और मुस्कुराते रहिए। आइए कार्यक्रम में सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत। आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

दोस्तों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुबह सवेरे का। और दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं आज के हेल्थ सेगमेंट की ओर। आज के हेल्थ सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं वॉलंटरी ब्लड डोनेशन यानी स्वैच्छिक रक्तदान के महत्व के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है रक्तदान महादान है, क्योंकि आपके कुछ मिनट किसी को जीवन के कई साल दे सकते हैं। हर दिन कई मरीजों को दुर्घटना, ऑपरेशन, गंभीर बीमारी, प्रसव, थैलेसीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के दौरान रक्त की जरूरत पड़ती है। ऐसे समय में स्वैच्छिक रक्तदाता किसी के लिए जीवन दाता बन जाते हैं।

किलोग्राम और स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। और हीमोग्लोबिन रक्तदान से पहले इसकी जांच की जाती है। रक्तदान करने से पहले डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी आपकी जांच करते हैं ताकि रक्तदाता और मरीज दोनों सुरक्षित रहे। किन लोगों को रक्तदान से बचना चाहिए? जिसे तेज बुखार या संक्रमण होने पर, गंभीर बीमारी या कुछ विशेष स्वास्थ्य समस्या में, और हाल ही में बड़ी सर्जरी हुई हो या डॉक्टर द्वारा मना किए जाने पर, अगर कोई व्यक्ति किसी दवा का सेवन कर रहा हो या कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो रक्तदान से पहले स्वास्थ्यकर्मी को जरूर बताएं। रक्तदान से पहले और बाद में ध्यान रखें। रक्तदान से पहले अच्छी नींद लें, हल्का पौष्टिक भोजन करें, पर्याप्त पानी पिए और रक्तदान के बाद कुछ देर आराम करें, ज्यादा पानी पिए, उस दिन भारी मेहनत से बचे। तो दोस्तों, आज का स्वास्थ्य संदेश है, रक्तदान सिर्फ एक सामाजिक सेवा नहीं बल्कि मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। आपका दिया हुआ रक्त किसी अनजान व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, किसी परिवार की उम्मीद बचा सकता है। तो आइए संकल्प ले, स्वस्थ है तो रक्तदान करें, क्योंकि आपका रक्त किसी के लिए जीवन की नई किरण बन सकता है। इसी के साथ आज का हेल्थ सेगमेंट यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे सुबह सवेरे में एक नई स्वस्थ जानकारी के साथ। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, आपसे थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज।

नई सुबह की ताजगी, सुनहरी किरणों और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका अपना आरजे कारगर और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इंफोटेनमेंट कार्यक्रम। दोस्तों, हर नई सुबह अपने साथ लेकर आती है नई उम्मीदें, नए अवसर और नई जानकारियां। इसलिए हम भी हर दिन की तरह आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया के ताजा और भरोसेमंद खबरें, साथ ही अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय दैनिक समाचार और दिन भर से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारियां। सबसे पहले आइए देखते हैं आज के राष्ट्रीय ताजा खबरें। भारत पाकिस्तान के बीच राजनयिक तनाव बढ़ा। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में 2 अक्टूबर को बीएसएफ द्वारा 2 संदिग्ध पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के वरिष्ठ राजनयिकों को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान पर सीमा पार घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान ने कार्रवाई को अत्यधिक बताते हुए जांच की मांग की है। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया है। दिल्ली में सीईसी को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी एसआईआर में अनियमितताएं हुई हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव के बीच कई प्रमुख सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हिरासत में लिए गए। भारत की अर्थव्यवस्था में रणनीतिक संसाधनों की सुरक्षा पर जोर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के दौर में भारत के लिए रणनीतिक संसाधनों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक नीति अब रणनीतिक संसाधनों की उपलब्धता तथा आपूर्ति की मजबूती से सीधी जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में पर्यटक बस दुर्घटना, 1 की मौत और 55 घायल। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन जिले में पश्चिम बंगाल लौट रही एक पर्यटक बस के पहाड़ी से टकराने के बाद बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक पर्यटक की मौत और 55 घायल हुए। बचाव के लिए भेजा गया क्यूआरटी वाहन भी पलट गया, जिसमें 9 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। भारत ने एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन किया। आईची नगोया एशियन गेम्स के अंतिम दिन भारत ने पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। भारत का अभियान 21 स्वर्ण, 27 रजत और 38 कांस्य से कुल 85 पदकों के साथ छठे स्थान पर समाप्त हुआ। यह भारत के लिए एशियाई खेलों में एक मजबूत प्रदर्शन रहा। भारत ब्राजील फुटबॉल मुकाबले में ब्राजील की बड़ी जीत। कोलकाता के सोल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मुकाबले में ब्राजील ने भारत को 4-0 से हराया। सैमुएल लिनो ने 2 गोल किए, जबकि एस्टेवियो और फेद्रो ने भी गोल किए। करीब 51,000 दर्शकों की मौजूदगी में मुकाबला खेला गया। आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। ब्राजील में आज राष्ट्रपति चुनाव का पहला दौर। ब्राजील में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। मुकाबला मौजूदा राष्ट्रपति लियोज इनासिया लूला दी सिल्वा और दक्षिणपंथी उम्मीदवार फ्लेवियो बोल्सोनारो के बीच बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में हमले तेज। यूक्रेन में रूसी हमलों में कम से कम 6 नागरिकों की मौत और कीव के नॉर्डन ब्रिज को नुकसान पहुंचने की खबर है। कार्किव और आसपास के इलाकों में भी ड्रोन और बम हमलों में लोगों के मारे जाने तथा घायल होने की सूचना है। रूस ने कीव पर आगे भी हमले जारी रखने की बात कही है। जेलेंस्की ने रूसी तेल रिफाइनरी पर हमले बढ़ाने की चेतावनी दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूस की नई हवाई हमले की रणनीति के जवाब में यूक्रेन रूसी तेल रिफाइनरी को निशाना बनाना जारी रखेगा। उन्होंने रूस के ऊर्जा और सैन्य ढांचे पर दबाव बनाने की बात कही है। उत्तर कोरिया के हाइपरसोनिक रणनीतिक हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण किया। उत्तर

कोरिया ने बताया कि उसने नेता किम जोंग उन की निगरानी में एक इंटरमीडिएट रेंज स्ट्रैटेजिक मिसाइल ड्रिल की। उत्तर कोरियाई दावे के मुताबिक मिसाइल ने लगभग 1000 किलोमीटर दूर समुद्री लक्ष्य को निशाना बनाया। दक्षिण कोरिया ने भी प्रक्षेपण की पुष्टि की और मिसाइल के 700 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने का अनुमान लगाया। G7 ने ईंधन कीमतों के दबाव के बीच आपात तेल भंडार जारी करने का फैसला किया। बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच G7 देशों ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के माध्यम से करीब 100 मिलियन बैरल डीजल और अन्य तेल भंडार बाजार में जारी करने की घोषणा की। दोस्तों, अब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरों के बाद रुख करते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित अरुणाचल टाइम्स की मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। गवर्नमेंट इनवाइट्स एसआईपी फॉर टॉक्स अमिड एसयूएमपी अपोजिशन, इबो मिलिस एफबी अकाउंट सस्पेंडेड। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के हालिया अपर सियांग और सियांग जिला के दौरे के बाद सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट स्टडी का जोरदार विरोध हुआ। इसके बाद सरकार ने सियांग इंडिजिनियस फोरम्स को पत्र लिखकर पासीघाट में एक बैठक के लिए आमंत्रित किया है। एक्सप्लोरिंग जियो थर्मल पोटेंशियल फॉर क्लीन एनर्जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री दासांगलु फूल ने शनिवार को कहा कि अरुणाचल प्रदेश जियो थर्मल एनर्जी की संभावनाओं का पता लगा रहा है ताकि राज्य के दूर दराज और सीमावर्ती इलाकों में साफ, भरोसेमंद और स्थानीय स्तर पर बिजली पैदा की जा सके। सीएम कॉल्स फॉर एक्सपांशन ऑफ कॉफी कल्टीवेशन। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश में कॉफी की खेती को बढ़ाने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। लैंड कमिटी सीक्स रिव्यू ऑफ एयरपोर्ट एरिया डेवलपमेंट विल। हलोंगी विलेज 1 और 2 के लैंड अफेक्टेड वेलफेयर कमेटी ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश सरकार से अरुणाचल प्रदेश एयरपोर्ट एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ड्राफ्ट विल 2026 के कुछ प्रावधानों की समीक्षा करने की मांग की। मीडिया बॉडीज मीट डीसीएम, रेज जर्नलिस्ट पेंशन कोऑर्डिनेशन इश्यूज। अरुणाचल प्रदेश प्रेस क्लब, अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और जिला प्रेस क्लबों ने शनिवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोउना मेन से मुलाकात की और काम करने वाले पत्रकारों के कल्याण और पेशेवर हितों तथा पूरे राज्य में मीडिया नेटवर्क को मजबूत करने से जुड़े मुद्दों पर बात की। टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेस होम स्टे मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ईस्ट सियांग जिले के पर्यटन विभाग ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर शनिवार को एडीसी के कॉन्फ्रेंस हॉल में होम स्टे डेवलपमेंट मैनेजमेंट और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया। तो दोस्तों, आज के न्यूज सेगमेंट में बस इतना ही। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आनंद लेते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत फिल्म मुझसे शादी करोगी से।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का मॉर्निंग एंटरटेनमेंट कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार।
1: आकाशवाणी ईटानगर स्टेशन लोक सरुंग लो तागिन प्रोग्राम मुखोकला तागिन निंग बेंतम गन सी ताचोंग चोकर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू मयु हिल्स टू कप अन कॉफी वर्कशॉप दोंगपांगु पांग को लु पांगमेन ग फु ला बें पा दकु ओक ह इंडिया ओक स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ग पांग नाम गु ला बें पा दकु ओक हु पेमा खांडू ने बेंतम नाम कॉफी रंगोंग अरुणाचल मोकुलु kai alaba melin gila marco ain lo lad bere pe ala bentuku ok ko pirengong anyeng nyengu lo ke arnachal pradesh lo murupu kuna ala bentam de la rtuku ok chief minister ni bentam de nam nge estate si 600 acres lo ko pirengong gu mugduku ala bentada deku ok government lo ke hugu mudari darse gu din sipedi hong mudar na pe ala pe me kandu ni bentada deku ओक डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मेन मयू स्वच्छ भारत मिशन ग आनिंग निंगला निंगू न ग पले लोगाम आगु जप्तांग जिला रतुकु ओक मेन मि बिनाम ग हो सब सपागु मदब अला स्वच्छ भारत मिशन गु मखुक नाम सी अचल ब अले यांग ब रे नाम सी मोनी ग अले ब नाम ग अला बेंतुकु ओक सब सपा ng मोजी ग मालो अले न अले ब रे न्यूरांग न अला बेंतुकु ओक सेजे एआई पावर लोक का सब सपा kala murubduk berepa la bentuku ok men me bende nam nga mo meneng lu ala modu ba mo nying ala be kam kaj de bolu kani ala ne pe ala bende tuku ok integrated health camp dong panggu luar siang district ga sibe nam panglu un kuna friday alu lu dong ga puku ala ben pa tuku ok ho dong pang hu bij dobai ku le ma ni akong nang mpku ala ben pa tuku ok he district health society luar siang gala North East Foundation for Health and Education and Livelihood Skill ga dongga namgu laben pada deku ok ho dong pang ho gynecological pediatric ophthalmology general medicine ok surgical ga lema nga kapku laben pada deku ok cancer TB oral mental ok odontic nga ka screening gu mpku laben pada deku ओके हु लंगुला चांगक्यागु सिबे नंपंग लोला अद्रासक लो आखोंग ला लमांग काकु पुकु लबेन पादा दुकु ओके हो दोंग पंग स्टेट ग आलु चाउंग इंटेंसिव हेल्थ केयर आउटरीच कैंपेन गु मकोक नाम ग आरा लोक काकर पुकु लबेन पादकु ओके चीफ मिनिस्टर पे माखांदु मयु रेवरेंड जेम संग्रप तोकु अबोट तबांग मोनेस्ट्री गदिन नंगेल चपचे ओक सीनियर मोंग्स ngा इटानगर दों लु पाप काम्स कु लबे पादकु ओक ह निचिन गोंपागु सिद्धार्थ बिहार हु पूजा गु रिदिन ngा पामसिप कु लबे पादकु ओक हो पामसु कु हु कंदु निमे अचल बे हिंपु पुन अलगम आगु जतला रितकु ओक हो निचिन गोंपा ngा बुद्धा धर्मा ग इंचिंग रिचिंग बरिन प अला मंगदन अला kandu ni me bende tuku ok ho ga ma chief minister ni me atu ga social media lu pau jila tuku ok kelong forest division nga 72nd wildlife week gu connecting habits thriving wildlife ge amin lok awareness ok community oriented activity gu forest range lu rege puku laben pa tuku ok hu chang pigula akan kilometer gu ni cleanliness ड्राइव गु बालुकपुंग ओके नेचिपु आइबे ngा मपुकु लबेन पादकु

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और मैं हूं आपका अपना आरजे कारगे, और अगले कुछ पलों तक आपका साथी बनकर लेकर आया हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम सदा बहार में। दोस्तों, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, और अगर उस सुबह की शुरुआत हो ताजा

मौसम की जानकारी और मधुर संगीत के साथ तो पूरा दिन और भी खूबसूरत बन जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के मौसम का बिल्कुल ताजा हाल, और साथ ही सजाएंगे आपके दिन को ऐसे सुकून भरे सदाबहार और दिल को छू लेने वाले गीतों से जिनकी मधुर धुनें आपकी थकान मिटाएगी, यादों को ताजा करेगी और चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। तो दोस्तों, आज 4 अक्टूबर यानी रविवार के दिन है। आज ईटानगर में मौसम का मिजाज रहेगा आंशिक रूप से बादलों वाला। सुबह की शुरुआत लगभग 23 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ हुई है। आसमान में बादल हैं और इस वक्त बारिश हो रही है। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और आज का अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आसमान पूरी तरह साफ नहीं रहेगा, बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और बीच बीच में धूप भी निकल सकती है। यानी आज ईटानगर में मौसम का अंदाज रहेगा कभी धूप कभी बादल। और अगर आप सोच रहे हैं कि आज बारिश का सीन क्या है, तो फिलहाल इस वक्त बारिश गिर रही है और शाम की तरफ तापमान फिर से धीरे धीरे नीचे आएगा और मौसम एक बार फिर सुहाना महसूस होगा। तो दोस्तों, आज का पूरा मौसम सारांश है बादलों की मौजूदगी और बीच बीच में हल्की से बारिश। तो दोस्तों, आज के मौसम की जानकारी में बस इतना ही। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं आज के पहले सदाबहार गीत की ओर, और आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वादकर की आवाजों में हैना फिल्म का ये बेहद खूबसूरत गीत।

तो दोस्तों, अब माहौल को थोड़ा और रंगीन और थोड़ा नटखट और बिल्कुल मस्ती भरा बनाने का वक्त है। शादी ब्याह का माहौल हो और घर में रिश्तेदारों की चहल पहल और ऊपर से जीजा साली की मीठी नोक झोंक, तो फिर मस्ती अपने आप डबल हो जाती है। और बॉलीवुड के ऐसे ही मस्त मौला गानों में से एक गाना है जिसे सुनते ही शादी का माहौल आंखों के सामने घूमने लगता है। फिल्म हम आपके हैं कौन का ये सुपरहिट गीत, जिसमें माधुरी दीक्षित की नटखट अदाएं और सलमान खान के साथ उनकी मजेदार केमिस्ट्री ने गाने में चार चांद लगा दिए थे। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का सदाबहार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। नए अध्यक्ष किए नियुक्त। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह, भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
4: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाढ़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और

0: से भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने भी भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इस भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको देश में विकसित हो रहे आधुनिक नागरिक उड्डयन ढांचे और हवाई अड्डों पर उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिचित कराएंगे।
2: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है, जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8 लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहां 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को संभाला, जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले, लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन द गार्डन कॉन्सेप्ट, जिसमें हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले इंजीनियर बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नव द्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रिजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियान ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति पजिशकियान ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को चार प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार

0: ने के लिए तैयार है। यह बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान की नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
0: मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, गोल्डन फाइव के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कटाया ओलंपिक टिकट। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, स्वर्णिम उछाल, क्रिकेट से लेकर हॉकी में गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन के आर्थिक सम्मेलन में संबोधन का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने कहा, समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमर उजाला ने युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति शीर्षक से लड़ाकू विमानों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, तेजस, राफेल और F-35 ने एक साथ भरी उड़ान। बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी, दैनिक जागरण की सुर्खी है। स्क्रीन का घातक नशा, भारतीय रोजाना गवा रहे 141 करोड़ घंटे। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे, राजस्थान पत्रिका में है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगी राम राज्य की झलक। पंडाल में भगवान राम और हनुमान की होगी मूर्तियां, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में हाड़ोती के प्रसिद्ध डोल मेले की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, झिलमिल रोशनी, झूलों की रफ्तार, डोल मेले में उमड़ रहा हड़ौती।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष की नियुक्ति। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर, आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं टुडे इन हिस्ट्री सेगमेंट, जहां पर हम बताते हैं आज के दिन में कौन सी घटनाएं इतिहास के पन्नों में दफन है। सबसे पहले आइए देखते हैं 4 अक्टूबर के इतिहास के पन्नों पर एक नजर। 4 अक्टूबर सन 1857 को गुजरात के मांडवी में जन्म हुआ था महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा का। उन्होंने विदेश की धरती से भारत की आजादी के लिए आवाज बुलंद की और लंदन में इंडिया हाउस को भारतीय राष्ट्रवादियों के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया। और साहित्य की दुनिया में भी 4 अक्टूबर का दिन बेहद खास है। 4 अक्टूबर 1884 को जन्म हुआ था महान हिंदी साहित्यकार और आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उनके प्रसिद्ध रचना हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी हिंदी साहित्य के अध्ययन की महत्वपूर्ण पुस्तकों में गिनी जाती है। अब बात करते हैं ऐसे युवा स्वतंत्रता सेनानी की जिनका नाम आज भी देशभक्ति और साहस का प्रतीक है। 4 अक्टूबर 1904 को जन्म हुआ था तिरुपुर कुमारन यानी कोड़ी काता कुमारन का। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और बाद में ब्रिटिश पुलिस की बर्बर कार्रवाई के दौरान भी राष्ट्रध्वज को अपने हाथों से गिरने नहीं दिया। उनकी यही वीरता उन्हें इतिहास में अमर कर गई। और दोस्तों, 4 अक्टूबर सन 1977 भारतीय कूटनीति और हिंदी भाषा के इतिहास में भी बेहद महत्वपूर्ण तारीख है। इसी दिन तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में ऐतिहासिक भाषण दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी की यह गूंज भारत के लिए गर्व का क्षण बनी। इसी तारीख से जुड़ी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना भी है।

अक्टूबर वर्ष 1977 को तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बिना शर्त रिहा कर दी गई। यह घटना आपातकाल के बाद के भारतीय राजनीतिक इतिहास में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और दोस्तों, 4 अक्टूबर सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास के लिए भी बेहद खास है। 4 अक्टूबर वर्ष 1957 मानव इतिहास का एक ऐसा दिन जिसने दुनिया की दिशा बदल दी। सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में भेजा। यह दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था और इसके साथ शुरू हुआ था आधुनिक अंतरिक्ष युग। वर्ष 1992 को आज के दिन मोजाम्बिक में करीब 15 वर्ष से चल रहे गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए रोम शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। 4 अक्टूबर 1830 को बेल्जियम की अस्थायी सरकार ने नीदरलैंड से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इतना ही नहीं, 4 अक्टूबर 1927 को अमेरिका के प्रसिद्ध माउंट रशमोर के निर्माण की शुरुआत हुई थी, जहां बाद में अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों के विशाल प्रतिमाएं पहाड़ की पर उखेरी गई। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ट्रेन हिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ 4 अक्टूबर के इतिहास। तो दोस्तों, आज के इतिहास में बस इतना ही। चलिए कार्यक्रम में लेते हैं ये म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में कुरुक्षेत्र फिल्म का ये बेहद खूबसूरत गीत।

तो दोस्तों अब बात करते हैं 4 अक्टूबर को मनाए जाने वाले कुछ खास और महत्वपूर्ण दिवसों की। सबसे पहले बात एक ऐसे दिन की जो हमारे आसपास मौजूद उन बेजुबान जीवों के प्रति संवेदनशील बनने की याद दिलाता है जो हमारे धरती और हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु दिवस यानी वर्ल्ड एनिमल डे। इसी दिन का उद्देश्य है दुनिया भर में जानवरों के प्रति प्रेम, सम्मान और करुणा की भावना को बढ़ावा देना और उनके कल्याण के प्रति लोगों को जागरूक करना। दोस्तों, जानवर हमारी तरह अपनी परेशानियों को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी प्यार और सुरक्षा की जरूरत होती है। इसलिए आज के दिन हम सभी एक छोटा सा संकल्प ले सकते हैं, जानवरों के साथ क्रूरता नहीं करेंगे, उन्हें आवश्यक रूप से परेशान नहीं करेंगे और जहां संभव हो किसी जरूरतमंद पशु की मदद कर सकेंगे। और दोस्तों, 4 अक्टूबर की तारीख विज्ञान और अंतरिक्ष की दुनिया के लिए भी बेहद खास है। आज से शुरू होता है वर्ल्ड स्पेस वीक यानी विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, जो हर साल 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इस सप्ताह का उद्देश्य है अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना और खासकर बच्चों और युवाओं को विज्ञान तथा अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति प्रेरित करना। और 4 अक्टूबर को ही इसकी शुरुआत क्यों होती है, क्योंकि 4 अक्टूबर वर्ष 1957 को मानव इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई थी। इसी दिन स्पुटनिक 1 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये दुनिया का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह था। इसके साथ ही आधुनिक अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई। और खास बात यह है कि वर्ल्ड स्पेस वीक 2026 की टीम है रॉकेट रेवोल्यूशन यानी रॉकेट क्रांति। आज रॉकेट तकनीक जिस तेजी से बदल रही है उससे अंतरिक्ष तक पहुंच पहले की तुलना में कहीं ज्यादा व्यापक हो रही है। नई लॉन्च तकनीक, रीयूजेबल रॉकेट

निजी अंतरिक्ष कंपनियां और नई पीढ़ी के वैज्ञानिक इस क्षेत्र को एक नई दिशा दे रहे हैं। तो दोस्तों, 4 अक्टूबर हमें दो खूबसूरत संदेश देता है। एक तरफ धरती पर मौजूद हर जीव के प्रति करुणा और संवेदनशीलता, और दूसरी तरफ आसमान से आगे अंतरिक्ष की ओर बढ़ते मानव ज्ञान और विज्ञान की नई उड़ान। यानी पैर धरती पर, लेकिन अपने सपने आसमान से भी आगे। तो दोस्तों, आज के हेलो ईटानगर कार्यक्रम में बस इतना ही। चलिए, कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की आवाजों में ये बेहद खूबसूरत गीत।

केयरून एफ एम 103.1 MHz पर जहाँ होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इन नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने
1: सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस राज्य समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाड़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगे और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपना पूरा जीवन भारत की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजनी नगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में

0: की कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: नमस्कार, आप इस वक्त सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में हर दिन कुछ नया होता है। कभी किसी स्टार की नई फिल्म की खबर सुर्खियों में आ जाती है, तो कभी कोई ट्रेलर इंटरनेट पर तहलका मचा देता है, कभी कोई गाना इंस्टाग्राम रील्स पर छा जाता है, तो कभी OTT पर रिलीज हुई कोई फिल्म या वेब सीरीज लोगों के वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच जाती है। और इन्हीं तमाम फिल्मी हलचलों को लेकर हाजिर हूं आपका अपना एंटरटेनमेंट पैक्ड प्रोग्राम फिल्मी गपशप। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ताजा खबरों और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर बात। तो सबसे पहले आइए देखते हैं बॉलीवुड के ताजा तरीन और ट्रेंडिंग अपडेट्स पर एक नजर। फर्जी 2 में शाहिद कपूर की नई फीमेल लीड की एंट्री। OTT की दुनिया से बड़ी खबर, शाहिद कपूर की फर्जी 2 में युक्ति तरेजा की नई फीमेल लीड बनाया गया है। युक्ति ने खुद बताया कि उनका किरदार इस सीजन में सेंट्रल फीमेल प्रोटागोनिस्ट होगा और उनके अधिकांश सीन शाहिद कपूर के साथ है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने हिस्से की लगभग 80% शूटिंग पूरी कर ली है और सीजन के मिड 2027 में आने की उम्मीद है। मिर्जापुर 4 ऑफिशियली बन रहा है। अगर आप मिर्जापुर के फैन हैं तो यह खबर आपके लिए बड़ी है। अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी ने पुष्टि की है कि मिर्जापुर सीजन 4 ऑफिशियली वर्क में है, यानी मिर्जापुर द मूवी के बाद कहानी यही खत्म होने वाली नहीं। गोलू गुप्ता का किरदार निभाने वाले श्वेता ने भी इस बात पर चर्चा की कि क्या वे इस कैरेक्टर को छोड़ने के लिए तैयार हैं। मिर्जापुर द मूवी में बबलू पंडित का नया चेहरा। फिल्म को लेकर एक इंटरेस्टिंग कास्टिंग अपडेट सामने आया है। डायरेक्टर गुरमीत सिंह ने बताया कि विक्रांत मैसी की जगह जितेंद्र कुमार को बबलू पंडित के रूप में कास्ट करना आखिरकार ब्लेसिंग इन डिस्क्वेज साबित हुआ। यह बदलाव फैंस के लिए काफी बड़ा था, क्योंकि विक्रांत का बबलू वाला कैरेक्टर सीरीज के सबसे लोकप्रिय किरदारों में रहा है। दोस्तों, हम इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद लौटेंगे बॉलीवुड के और अन्य ताजा तरीन अपडेट्स के साथ। बने रहिए अरुण FM 103.1 MHz पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप में।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ताजा तरीन अपडेट्स और ट्रेंडिंग न्यूज पर एक नजर। एआई से बनाया गया फेक सेलिब्रिटी वीडियो बना बड़ा कंट्रोवर्सी। आज एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में एआई मिसयूज को लेकर भी काफी चर्चा है। जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर के चुट्टा माले सॉन्ग का एक एआई मॉड वर्जन सामने आने के बाद दोनों तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई। जूनियर एनटीआर ने इसे बेहद आपत्तिजनक बताते हुए लीगल एक्शन की बात कही, जबकि विजय देवराकोंडा ने भी एआई जनरेटेड इंटीमेट कंटेंट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया की। जूनियर एनटीआर के ड्रैगन को मिली रिलीज डेट। जूनियर एनटीआर के अगले बड़े प्रोजेक्ट ड्रैगन को लेकर रिलीज डेट की खबर सामने आई है। फिल्म को लेकर काफी समय से स्पेकुलेशन था कि अब इसकी थियोरिटिकल अराइवल को लेकर तस्वीर साफ हुई है। ये प्रोजेक्ट एनटीआर फैंस के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि एक्टर लगातार बड़े स्केल प्रोजेक्ट्स की लाइनअप में नजर आ रहे हैं। विजय देवराकोंडा ने लाइगर ट्रांसफॉर्मेशन का शॉकिंग किस्सा बताया। विजय देवराकोंडा ने अपने लाइगर ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान किए गए एक्सट्रीम इफोर्ट्स को याद करते हुए बताया कि वे अपने शरीर को लेकर किस हद तक गए थे। उन्होंने मजाक

किया, लेकिन शॉकिंग अंदाज में बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आइस क्यूब तक चाटने जैसी स्थिति आ गई थी। उनका पुराना फिटनेस स्ट्रगल फिर से चर्चा में है। आमिर खान को मिलेगा स्क्रीन आइकॉन अवार्ड। आमिर खान को सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आमिर फेस्टिवल में लगान की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए डायरेक्टर आशुतोष ग्वारिकर के साथ भी मौजूद रहेगी। यानी क्लासिक बॉलीवुड सिनेमा को सेलिब्रेट करने वाला ये मोमेंट काफी खास होगा। तो दोस्तों, हम इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद लौटेंगे और भी ताजा तरीन अपडेट्स के साथ। बने रहिए अरुण FM 103.1 MHz पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप में।

0: दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप। हम लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
2: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
1: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
2: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
1: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाएं, जांच कराएं, भेदभाव मिटाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
3: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। ओ
4: गीत संगीत,
5: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में
5: दिल से दिल की बात,
4: बस आपके नाम।
5: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज।

ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा शो फिल्मी गपशप में। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ताजातरीन अपडेट्स पर। अभिषेक बच्चन फिर कजरा रे करना चाहते हैं, एक मजेदार बॉलीवुड नॉस्टैल्जिया मोमेंट भी सामने आया है। अभिषेक बच्चन ने बंटी और बबली के आइकॉनिक सॉन्ग कजरा रे की यादें ताजा करते हुए कहा कि वे इसके 2.0 वर्जन के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने मजाक में कहा कि पहले ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन को कन्विंस करना पड़ेगा। फिरे की थियोरेटिकल रिलीज डेट सामने। नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर विनोद खफरी की फिल्म फिरे अब 23 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये उन फिल्मों में से है जो बड़े कमर्शियल मसाला के बजाय सीरियस और मीनिंगफुल सिनेमा की तरफ ध्यान खींचती है। उड़ता तीर के बाद अक्टूबर रिलीज कैलेंडर में बदलाव। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की उड़ता

को अब 23 अक्टूबर के लिए पोस्टपोन किया गया है। इस बदलाव से अक्टूबर के थियोरेटिकल रिलीज कैलेंडर पर भी असर पड़ रहा है और आने वाले हफ्तों में फिल्मों के बीच कंपटीशन और इंटरेस्टिंग होने वाला है। बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट के 10 साल पूरे, बड़ा म्यूजिकल सेलिब्रेशन, म्यूजिक लवर्स के लिए शानदार खबर। बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट्स यानी अपनी 10वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहा है। 24 अक्टूबर को मुंबई के जियो गार्डन्स में होने वाले इवेंट में हिमेश रेशमिया, शिल्पा राव, अनु मलिक, हरिहरन, रूप कुमार राठौर, नीरज श्रीधर और यूपोरिया समेत कई कलाकार परफॉर्म करेंगे। यानी अक्टूबर में सिर्फ फिल्मों का नहीं, बॉलीवुड म्यूजिक का भी बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। सयमी खेर का नया फेज घूमर के बाद फिर इमोशनल लेयर रोल। अभिनेत्री सयमी खेर ने अपनी नए काम और करियर चॉइसेस पर बात की। उनका कहना है कि वो किसी चीज को प्रूव करने के दबाव में नहीं रहती और हमेशा अपने फैसले खुद लेने की कोशिश करती है। घूमर के बाद उनका नया प्रोजेक्ट उनके लिए एक और इमोशनली लेयर्ड एक्सपीरियंस बताया जा रहा है। दोस्तों, फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं ये खूबसूरत गीत फिल्म लक्ष्य से।

0: दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप। हम लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद, बने रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
0: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। शाहरुख खान के बाद अब बॉलीवुड में एआई और डिजिटल आइडेंटिटी पर डिबेट तेज। एआई मोर सेलिब्रिटी वीडियोस के मामले ने एक बड़ा सवाल फिर सामने ला दिया है। क्या सेलिब्रिटीज की डिजिटल आइडेंटिटी को भी उनकी रियल आइडेंटिटी की तरह लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए? जूनियर एनटीआर और विजय देवराकोंडा की करीब प्रतिक्रियाओं के बाद ये मुद्दा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में प्राइवेसी और कंसेंट को लेकर चर्चा में है। ये गॉसिप से ज्यादा इंडस्ट्री लेवल सीरियस इश्यू है और आने वाले समय में इसका असर फिल्म प्रमोशन और सोशल मीडिया कंटेंट पर भी पड़ सकता है। ओम चैप्टर 1 उधिरम द ब्लड ऊड की रिलीज डेट बदली। फैन इंडिया एक्शन फिल्म मम्मोटी और धनुष की ओम चैप्टर 1 उधिरम द ब्लड ऊड अब 16 अक्टूबर की जगह 20 नवंबर 2024 को रिलीज होगी। फिल्म फॉरेस्ट बेस्ड एक्शन नैरेटिव पर आधारित है और राजकुमार प्रियासमी इसका निर्देशन कर रहे हैं। हालांकि ये प्योर बॉलीवुड नहीं है, लेकिन फैन इंडिया ऑडियंस के लिए ये बड़ा एंटरटेनमेंट अपडेट है। ओम में ममोटी और धनुष की नई फेयरिंग को लेकर एक्साइटमेंट। नई रिलीज डेट के साथ मेकर्स ने ममोटी और धनुष का नया पोस्टर भी शेयर किया है, जिसमें दोनों इंटेंस एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। फिल्म का फॉरेस्ट सेटिंग और एक्शन हैवी प्रीमिसेस इसे आने वाली बड़ी फैन इंडिया रिलीजेस में शामिल कर रहा है। फौजी की डिले पर प्रवास के को स्टार ने दिया क्लैरिफिकेशन। प्रवास की

वॉर एक्शन फिल्म फौजी की रिलीज डिले पर एक्शन। एक्टर जितिन गुलाती ने बात की। उन्होंने संकेत दिया कि टीम किसी जल्दबाजी में अधूरा प्रोजेक्ट दर्शकों के सामने नहीं लाना चाहती। फिल्म हनु रगाबापुरी के निर्देशन में बन रही है और इसका स्केल काफी बड़ा बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के बॉलीवुड के ताजातरीन अपडेट्स पर बस इतना ही। चलिए कार्यक्रम में सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, उदित नारायण और राधा की आवाजों में। फिल्म क्यूकी का ये टाइटल ट्रैक।

श्रोताओं, अब फिल्मी गपशप में रुक करते हैं छोटे पर्दे यानी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से खबरों पर एक नजर। बिग बॉस 20 में खाजी थोकिर का लॉलीपॉप कमेंट बना बड़ा मुद्दा। आज की सबसे चर्चित टीवी खबरों में से एक है बिग बॉस 20 का वीकेंड का बार कणिका मन को लेकर खाजी थोकिर के लॉलीपॉप वाले कमेंट पर सलमान खान ने उन्हें जमकर पटकार लगाई। सलमान ने साफ कहा कि इस मामले में खाजी को पीछे हट जाना चाहिए था और उन्होंने गलत स्टैंड लिया, यानी घर की छोटी सी बात अब वीकेंड का वार का बड़ा मुद्दा बन गई है। कणिका मन को मौनी रॉय का खुला सपोर्ट। कणिका को लेकर विवाद के बाद टीवी की नागिन यानी मौनी रॉय उनके सपोर्ट में सामने आई हैं। मौनी ने कणिका के गेम की तारीफ करते हुए कहा कि वे घर में ग्रेस और डिग्निटी के साथ खेल रही है और उन्हें कणिका को बिग बॉस हाउस में देखना पसंद आ रहा है। इससे कणिका के लिए सोशल मीडिया पर सपोर्ट और बढ़ गया है। खतरों के खिलाड़ी 15 का ग्रैंड फिनाले आज टीवी पर असली मुकाबला खतरों के खिलाड़ी 15 का है। ग्रैंड फिनाले 3 और 4 अक्टूबर को रात 9 बजे कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर प्रसारित हो रहा है। अविनेश मिश्रा और फरहाना बट के बीच ट्रॉफी को लेकर जबरदस्त चर्चा है और फैंस लगातार अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिर बाजी किसके हाथ लगेगी। अविनेश मिश्रा वर्सेस फरहाना बट, किसका पलरा पारी? फिनाले से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है, दोनों की जर्नी अलग रही है। अविनाश ने अपनी डिटर्मिनेशन और स्टंट परफॉर्मेंस से पहचान बनाई, जबकि फरहाना का पियरलेस एटीट्यूड चर्चा में रहा, इसलिए फिनाले को लेकर सोशल मीडिया पर भी प्रेडिक्शन गेम तेज है। रोहित शर्मा का टीवी वाला नया अवतार। क्रिकेट के मैदान के हिटमैन अब टीवी पर भी दर्शकों को एंटरटेन कर रहे हैं। उनके शो फैमिली फुल हाउस का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें रोहित शर्मा ने बताया कि हैक्टिक दिन के बाद उन्हें बच्चों के साथ खेलना सबसे ज्यादा पसंद है, यानी क्रिकेट के बाद अब होस्टिंग में भी रोहित के वन लाइनर्स और फैमिली फ्रेंडली पर्सनालिटी लोगों को पसंद आ रही है। टेलीविजन से रियलिटी शो की ताकत लगातार बढ़ रही है। एक बड़ी इंडस्ट्री लेवल चर्चा भी सामने आई है। जियो हॉटस्टार के मुताबिक पिछले एक साल में 40 से ज्यादा रियलिटी शो लॉन्च हुए और इन फॉर्मेट ने करीब 1 अरब भारतीय तक एंगेजमेंट पहुंचाई। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि रियलिटी टीवी को अब तेज स्टोरी टेलिंग, रीजनल फ्लेवर्स और नए फॉर्मेट के साथ री इन्वेंट करना होगा। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में बड़ा रहस्य खोलने की तरफ कहानी। अब जरा सीरियल जोन की बात। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मिहिर की पुरानी यादें वापस आने का कहानी तेजी पकड़ रही है। मंदिरा इस बात को लेकर परेशान है कि मिहिर को अगर पुराने सच याद आ गए तो वीरानी फैमिली के कई राज खुल सकते हैं। दूसरी तरफ तुलसी मिहिर से दोबारा जुड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, यानी आने वाले एपिसोड्स में फैमिली ड्रामा और बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, आज के छोटे पर्दे के ट्रेंडिंग अपडेट्स पर बस इतना ही। चलिए फिल्मी गपशप को और बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत। आवाज दी है लता मंगेशकर और अदनान सामी ने।

दोस्तों इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप। दोस्तों आइए इस कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और बेहद खूबसूरत गीत। आवाज है अलका याग्निक, कुमार शानू और सोनू निगम की आवाजों में, फिल्म क्या यही प्यार है से।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का फिल्मी गपशप कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, और उसके तुरंत बाद हम लौटेंगे आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी जल सदन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपना पूरा जीवन भारत की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बता है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि उनका देश
4: तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सैखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सैखों की याद में आयोजित की जा रही है। एशियन गेम्स 2026 का आज समापन होने जा रहा है। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिजोहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये शाम 6 बजे शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bhartruhari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from the Lok Sabha.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके SMS का इंतजार रहेगा।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेहद स्वागत है अरुण FM 103.1 MHz पर। और अब वक्त है उस खास म्यूजिकल प्रोग्राम का जहां प्लेलिस्ट हमारी नहीं आपकी पसंद की होती है। जी हाँ दोस्तों, शुरू हो चुका है आपका अपना रेडियो ऑन डिमांड, जहां आपके भेजे हुए टेक्स्ट मैसेजेस तय करते हैं कि अब अगला गाना कौन सा बजेगा। तो देर किस बात की, अपना मोबाइल उठाइए और हमें एक प्यारा सा टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिए। मैसेज में लिखिए आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, गाना किस फिल्म का है, अगर पता हो तो सिंगर का नाम, अपना नाम और आप कहाँ से सुन रहे हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए लेते हैं आज के रेडियो डिमांड कार्यक्रम का पहला मैसेज। और ये मैसेज हमें आया है डिस्ट्रिक्ट पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। और इस बार एक साथ देर सारे लिसनर्स ने अपनी फरमाइश भेजी है। हमारे रेगुलर लिसनर शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की पहली फरमाइश भी एकदम मस्त और धमाकेदार है। गीत है तिंकू जिया फिल्म यमला पगला दीवाना से, जिसे अपनी आवाज दी है जावेद अली और ममता शर्मा ने। तो गोप परिवार जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका फिर से शुक्रिया। अब आवाज जरा बढ़ा दीजिए और तैयार हो जाइए फुल ऑन मस्ती के लिए। लीजिए पेश है तिंकू जिया फिल्म यमला पगला दीवाना से।

रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने

तो दोस्तों अब अगला मैसेज आया है बोकाकात असम से और ये शानदार फरमाइश भेजी है हमारे प्यारे लिस्नर हर्षित गोस्वामी ने। हर्षित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम पर। और दोस्तों इस बार फरमाइश है एकदम एनर्जेटिक और कैची ट्रैक की, तेरी झलक फिल्म पुष्पा से, जिसे अपनी दमदार आवाज दी है जावेद अली ने। दोस्तों कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनकी धुन शुरू होते ही मूड अपने आप बन जाता है। हर्षित जी उम्मीद है ये गाना सुनकर आपका मूड एकदम पुष्पा स्टाइल में सेट हो जाएगा।

दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड में। तो बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। और ये मैसेज हमें आया है असम से, और ये खूबसूरत फरमाइश भेजी है हमारे प्यारे लिसनर सुनीता बासुमतारी ने। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम पर। और दोस्तों, सुनीता जी ने फरमाइश की है एक बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले गीत को, तेरे गम अगर ना होता फिल्म दिल है बेताब से, जिसे अपनी आवाज दी है मोहम्मद अजीज ने। तो सुनीता जी, आपकी इस प्यारी डेडिकेशन को हम पूरे दिल से आपके दोस्तों तक पहुंचा रहे हैं। आपने अपने दोस्तों बिमल, लक्की, रमेश, रुनू और देवाशीष के नाम इस गीत को डेडिकेट किया है। तो आइए एंजॉय करते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। हम लौटेंगे अगला मैसेज के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
1: बन गया बजट?
2: हाँ,
1: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
1: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: ब्रेक के बाद आप सभी का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अब अगला मैसेज आया है विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट आसाम से हमारे प्यारे लिस्नर सोम तोदू जी की तरफ से। सोम जी ने मैसेज में फरमाइश की है फिल्म जवान का कोई भी सॉन्ग सुनाने की। तो सोम जी, जब चॉइस आपने हमारे ऊपर छोड़ दी है तो हमने भी आपके लिए चुना है एक खूबसूरत सा गाना। उम्मीद है हमारी ये पसंद आपको जरूर पसंद आएगी और इसे सुनते हुए आपका मूड भी बन जाएगा।

तो दोस्तों अब अगला मैसेज आया है गोलाघाट असम से, और इस बार एक साथ हमारे तीन प्यारे लिसनर्स रोमेश पात्रो, रोनू पात्रो और लकी ने अपनी फरमाइश भेजी है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम पर। और दोस्तों आज की फरमाइश है एकदम मस्त और फुल ऑन रेट्रो अंदाज वाला गाना, कहाँ पैसे पे फिल्म लावारिस से, जिसे अपनी शानदार आवाज दी है किशोर कुमार ने। और इस गीत को डेडिकेट किया गया है बाइकोन अमोल बिमोल देवाशीष हितेंद्र जोगिंद्र सोनाली अंजलि और सुनीता के नाम। तो गोलाघाट से आई शानदार फरमाइश और दोस्तों की नाम इस प्यारी डेडिकेशन को हम पूरे दिल से इसे शामिल कर रहे हैं। तो पेश है कहा पैसे पे फिल्म लावारिस से सिर्फ रमेश रुनू लक्की और उनके सभी दोस्तों के लिए।

तो दोस्तों, अब अगला मैसेज आया है सरिहा जान कार्बी आंगलोंग असम से, और इस बार एक साथ हमारे प्यारे लिस्नर जोगेंद्र रोंगपी, सोनाली इंगतिफी और दोरुमकिरी रोंगपी ने अपनी फरमाइश भेजी है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम पर। और दोस्तों, आज की फरमाइश है एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक मेलोडी अपने होतों की बात फिल्म गैम्बलर से, जिसे अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। और इस खूबसूरत गाने को डेडिकेट किया है अमाल बाइकोन देवासिस, रमेश रूनू विमल के नाम, और खास तौर पर हमारे सभी लिसनर्स के लिए। तो दोस्तों, कभी कभी कोई गाना किसी एक खास इंसान के नाम नहीं होता, बल्कि उसमें दोस्तों की यादें, अपनेपन का एहसास और खुद के लिए एक खूबसूरत सा पल भी शामिल होता है। लीजिए, अब सुनते हैं लता जी और किशोर जी की आवाज में अपने होठों की बात फिल्म गैम्बलर से।

और दोस्तों अब अगला मैसेज आया है मोकोक्चुंग से, और ये खूबसूरत फरमाइश भेजी है हमारे प्यारे लिसनर बहादुर ने। बहादुर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम पर। और दोस्तों आज बहादुर जी ने फरमाइश की है एक बेहद रोमांटिक और मेलोडियस गाने की, फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत के टाइटल ट्रैक की, जिसे अपनी खूबसूरत आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। लीजिए अब सुनते हैं प्यार इश्क और मोहब्बत का ये खूबसूरत टाइटल ट्रैक, जिसे फरमाइश की है बहादुर जी ने।

दोस्तों बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के अगले मैसेज की ओर। ये मैसेज हमें आया है मैशाकी सापोरी डिस्ट्रिक्ट धेमाजी असम से, और ये खूबसूरत फरमाइश भेजी है हमारे प्यारे लिसनर बिमल बसुमतारी ने। और आपने हमें सॉन्ग फरमाइश की है प्यार में दिल दे दिया गीत को फिल्म अनारी से, और ये प्यारा सा गाना आपने डेडिकेट किया है अपने दोस्तों अमाल गागे, राबा रमेश, रोनू लक्की, रोको वेली, बाइकुन, जोगिंद्र देवासी, सीतेंद्र वीरेन, चुबा के कसीम और सुनीता के नाम, और सभी हमारे रेगुलर लिसनर्स के नाम। तो आइए सुनते हैं आप लोगों की फरमाइश पर और इतने सारे आपके डेडिकेशन के लिए, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। दोस्तों, अगला मैसेज हमें आया है असम से हितेंद्र दास जी की तरफ से। हितेंद्र जी ने हमें सॉन्ग फरमाइश की है अभिमान फिल्म का अब तो है तुमसे गीत को सुनने का। हितेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनते हैं आपके फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत को।

और दोस्तों, अगला मैसेज हमें आया है निशा पेगू जी की तरफ से, आसाम से। निशा जी ने सॉन्ग फरमाइश की है नज्म नज्म गीत को सुनने का, और आपने इस गीत को डेडिकेट किया है मुझे भी। तो निशा जी, आपकी इस प्यारी सी डेडिकेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ इस वक्त आप हमारे कार्यक्रम को सुन रहे होंगे। आइए सुनवाते हैं आपके फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत को।

और दोस्तों, रेडियो डिमांड कार्यक्रम में अगला मैसेज हमें आया है असम से आकाश कुतुम जी का। आपने हमें सॉन्ग फरमाइश की है जीने लगा हूं गीत को सुनने का। तो आकाश जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत को।

और दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के साथ आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम यही समाप्त होता है। और दोस्तों, जिन लोगों का हमने आज मैसेजेस नहीं ले पाए हैं, उसके लिए हम आपको क्षमा चाहते हैं। वक्त के कमी होने के कारण हम आपके पूरे मैसेजेस को नहीं ले पाए, पर हम वादा करते हैं कल के हमारे रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में आज के पेंडिंग रिक्वेस्ट को हम जरूर शामिल करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का ये अंक आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आज के पहले प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रामा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आगे के सफर में आपके साथ होंगे आपके पसंदीदा आरजे नोरा जी। और अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो साथी कारगर रिबा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: पहुंचे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने 26 तारीख से लागू हो गया।
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 20 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृतिक के विशेष अध्ययन के लिए

0: ये बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। इसमें एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और रक्षा, स्वास्थ्य और एग्रीटेक जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाढ़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद बीएसएफ को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबियाह ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और लाल सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वर्जीनिया के ग्रेवली पॉइंट पार्क में विकसित भारत एकता दौड़ का आयोजन किया। इसमें भारतीय मूल के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान योग और ध्यान का आयोजन भी किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सैंखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैंखों की याद में आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय जनमानस में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना को जगाने और पोषित करने में श्री कृष्ण वर्मा के अथक प्रयास देश की स्वाधीनता संग्राम का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता को समर्पित कर दिया। 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह जापान के नागोया शहर में भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bhartruhari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from the Lok Sabha and 10 from the Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from the lower house and 10 from the upper house, while the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta. Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as chairperson of the Committee on Chemicals and Fertilizers. The Ministry of Education has approved 5 centers of excellence for studies in classical languages. Department of Higher Education has approved the establishment of 5 centers of excellence for studies in classical Assamese, classical Bengali, classical Marathi, classical Pali, and classical Prakrit. Ministry of External Affairs has summoned the Charged Affairs of Pakistan High Commission to lodge India's strong protest over the

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

सपनों की उड़ान आसमान तक ले जाएगी, मेहनत की रोशनी हर अंधेरा मिटाएगी, हर सुबह विश्वास जगाकर आगे बढ़ो क्योंकि मेहनत ही मंजिल दिलाएगी। दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत और सकारात्मक पंक्तियों के साथ आप सभी श्रोता दोस्तों का मेरी ओर से शुभ प्रभात और स्वागत है आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुणाचल की अपनी आवाज जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। आप सुन रहे हैं हमें सुबह के ठीक 11:10 से मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ। तो दोस्तों, होगी दिल से दिल की बात और कई सारी ऐसी मीठी बातें जिससे आपके दिन को और भी खूबसूरत बना देगी। हमारी दूसरी प्रसारण सभा के इस खूबसूरत सफर को आगे ले जाए इससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आरजे करगरीबा का, जिन्होंने स्टूडियो की कमान हमें सौंपी है और आज इस प्रसारण में आपका साथ दे रहे हैं हमारे प्रसारण अधिकारी श्री पी डोले और तकनीकी अभियंता श्री एच एम भूषण। और मैं हूं आप सबकी अपनी आरजे नूरी और अब वक्त है आज की इस संगीत भरी सुबह को सुरों और भावनाओं से सजाने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे

पहले कार्यक्रम फिल्मी लहर से, जहां हिंदी फिल्मी गानों के जरिए हम महसूस करेंगे प्यार, खुशी, याद, उम्मीद और जिंदगी से जुड़े अलग अलग जज्बातों को। क्योंकि एक अच्छा गीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, यह कहीं ना कहीं हमारे दिल की कोई कहानी भी कह जाता है। तो आइए संगीत की इस खूबसूरत लहर पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। लीजिए पेश है एक बेहद खूबसूरत नगमा।

श्रोता दोस्तों, फिल्मी लहर में आप सुन रहे थे बेहद ही खूबसूरत गीत संजय लीला बंसाली की फिल्म से। दोस्तों, फिल्मी लहर एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपके लिए पेश करते हैं हिंदी फिल्मी गानों के साथ साथ फिल्मी गानों से जुड़ी दिलचस्प बातें जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। कहते हैं ना दोस्तों, कभी कोई गीत हमें स्कूल की छुट्टियों की याद दिलाता है, कभी कोई धुन पहली दोस्ती और पहली मोहब्बत की, और कभी कोई गीत ऐसा होता है जिसे सुनते ही लगता है ये तो मेरी जिंदगी की कहानी है। तो श्रोता दोस्तों, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर आप सुन रहे हैं फिल्मी लहर मेरे साथ, यानी आप सबकी अपनी रेडियो साथी आरजे नूरी के साथ। तो दोस्तों, फिल्मी लहर थोड़ी खास है आज, क्योंकि आज हम सुनेंगे सिर्फ गाने नहीं बल्कि अपनी उम्र के साथ साथ बदलती हुई अपनी पसंद, अपनी यादों और अपने एहसासों की कहानी। तो सफर में हम अगला जो पेशकश है सुनेंगे बचपन से आज तक के सफर में। सोचिए, बचपन में हमें गीत के बोलों का अर्थ शायद समझ नहीं आता था, लेकिन उसकी धुन याद रहती थी। फिर टीनेज आया तो गानों में दोस्ती, सपने और पहली मोहब्बत सुनाई देने लगी, और उम्र बढ़ी तो वही संगीत हमें रिश्तों, जिम्मेदारियों, जुदाई, उम्मीद और जिंदगी के अर्थ समझाने लगा। यानी उम्र बदलती गई और हमारे पसंदीदा गाने भी हमारे साथ साथ बड़े होते गए। तो आइए आज अपनी यादों की प्लेलिस्ट को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, सबसे पहले उस दौर में जहां हमारी संगीत यात्रा ने पहली बार कदम रखा था, यानी कि बचपन। चलिए सुनते हैं अगला गीत अपने बचपन से जुड़े।

तो दोस्तों कुछ याद आया ना अपनी बचपन की वो दिन जहां हमें कोई गम नहीं था, हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी और बस हम जिंदगी बिंदास जीते थे। जब हमारा सबसे बड़ा सपना था जल्दी से बड़ा होना, और हमें क्या पता था कि बड़े होने के बाद कभी कभी मन फिर से उसी बचपन में लौट जाने को तरसेगा। दोस्तों बचपन के गीतों में कोई कॉम्प्लिकेटेड इमोशन नहीं था, बस मस्ती थी, कल्पना थी और छोटी सी दुनिया में बड़ी बड़ी खुशियां थी। लेकिन फिर धीरे धीरे हम बड़े हुए, स्कूल की जगह कॉलेज ने ले ली, खिलौनों की जगह किताबों और दोस्तों ने, और गीतों में भी बचपन की मस्ती की जगह आने लगे सपने, दोस्ती और दिल की पहली हलचल।

चलिए अब चलते हैं अपने उस दौड़ में, उस उम्र में जहां हमें महसूस होता है पहला प्यार, पहली मस्ती और पहला क्रश। चलिए इस एक गाने को सुनकर न जाने फिर कौन सा दौर याद आ जाए, वो कौन सा पल याद आ जाए या वो कौन सा स्पेशल इंसान याद आ जाए। लीजिए सुनिए पहला नशा पहला खुमार, जो जीता वही सिकंदर से। अब किसी एक चेहरे का जिक्र होते ही मुस्कान अपने आप आ जाती है। जब बारिश कुछ ज्यादा रोमांटिक लगती है, जब हवा में भी संगीत सुनाई देने लगता है और दिल पहली बार कहता है शायद प्यार कुछ ऐसा ही होता है, तो टीनेज के उन मीठी यादों के नाम पहला नशा।

दोस्तों सचमुच वक्त बहुत चुपचाप बदलता है। कल तक जो गाना सिर्फ अच्छा लगता था, आज वही गाना हमारी अपनी कहानी का हिस्सा बन जाता है। टीनेज में हमारी प्लेलिस्ट में शायद रोमांस ज्यादा था, दोस्ती के गीत थे, ड्रीम्स थे और फ्यूचर को लेकर एक्साइटमेंट भी थी। और फिर जिंदगी हमें अपने पहले पड़ाव पर ले जाती है, जहां सपनों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। दोस्तों जिंदगी में आगे बढ़ते हुए हर किसी के सामने ऐसे मोड़ आते हैं जहां रास्ता आसान नहीं होता, तब कोई गीत हमारा साथ हाथ पकड़ कर कहता है चलते रहो रुकना मत। तो आज की इस संगीत यात्रा में फिल्मी लहर में एक ऐसा गीत जो सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि हौसले की आवाज है। और दोस्तों आपको बता दें इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्मी लहर का सफर यही तक, लेकिन सफर अभी जारी है आकाशवाणी के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: तो दोस्तों, फिल्मी लहर इस खूबसूरत गीत के साथ, और इस गीत के पीछे का जो मैसेज है कि रुक जाना नहीं, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, क्योंकि अपने आप पर भरोसा कर और अपने मंजिल की तरफ नजर टिकाए रख और आगे बढ़। इस खूबसूरत से मैसेज के साथ आगे बढ़ते हैं, और अगला कार्यक्रम हम आपके लिए सफर में लेकर आए हैं वेस्टर्न मेलोडीज, जहां हम आपके लिए पेश करेंगे कुछ यादगार गाने, एवरग्रीन मेलोडीज। कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज में बने रहे आकाशवाणी के रेन एफएम 103.1 MHz पर, क्योंकि जिंदगी चाहे जितनी बदल जाए, कुछ धुनें हमेशा हमारी अपनी रहती है, और अगला कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज में भी कुछ ऐसा ही मैसेज आप तक पहुंच रहा है।
1: Melodies on Akashwani Itanagar. I'm Coco. Music has an incredible ability to lift our spirits, get us moving, and turn ordinary moments into celebration. This playlist is packed with energetic beats, catchy melodies, and songs that have filled dance floor around the world. Whether you're listening at home, traveling, or simply looking for a burst of energy, these tracks are sure to get you into a great mood. Some songs are made for quiet listening, and then there are songs like this one that instantly make you want to get up and move. Released in 2012, Don't Stop the Party became one of the Pitbull's biggest international dance hits and a regular feature at celebration clubs and even around the world. The song is about enjoying the moment, letting go of stress, and making memories with the people around you. With its energetic beat and feel good vibe, it's the perfect reminder that sometimes life is meant to be celebrated. Here's Pitbull with Don't Stop the Party.

0: मैं मुकेश कुमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हो गया।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 20 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये केंद्र असमिया बंगाली मराठी पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता दान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में

0: पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। भारत ने पाकिस्तान से जारी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब की फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। यूक्रेन के रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिब्याह ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारतीय पायलट स्मित मच्छर के अदम्य साहस की सराहना की है। श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि कैप्टन स्मित ने एक भयावह घटना होने से बचा ली। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वर्जीनिया के ग्रेवली पॉइंट पार्क में विकसित भारत एकता दौड़ का आयोजन किया। इसमें भारतीय मूल के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान योग और ध्यान का भी आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सैंकड़ों इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सैंकड़ों की याद में आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाया और आजादी की भावना जगाई। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने ओजस्वी भाषणों और प्रेरणादायी लेखन से लोगों को विदेशी शासन के खिलाफ एकजुट किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। 2 सप्ताह से अधिक के इन खेलों में कई रोमांचक मुकाबले हुए। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bhartruhari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from Lok Sabha and 10 members of Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from Lower House and 10 from Upper House, while the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta. Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as the chairperson of Committee on Chemicals and Fertilizers. The Ministry of Education has approved 5 centers of excellence for studies in classical languages. Department of Higher Education has approved the establishment of the 5 centers of excellence for studies in classical Assamese, classical Bengali, classical Marathi, classical Pali and classical Prakrit. Today is the last day of campaigning for the Nandigram and Rajinagar Assembly by-elections. The voting will take place on Tuesday, the 6th of October. Central forces have already started arriving in both the constituencies. Police and Central Force personnel have begun route marches across villages to ensure security ahead of polling. Ministry of External Affairs has summoned the Charge d'Affaires of Pakistan High Commission to lodge India's strong protest over the continued facilitation of illegal cross-border infiltration from Pakistan. India also categorically rejected the baseless and motivated allegations regarding an incident in the Firozpur sector in Punjab along the international border on Friday. प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, आपका फिर से स्वागत कर रहे हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आपको ये बता दूं कि आप सुन रहे थे आकाशवाणी की दिल्ली द्वारा प्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार। तो देश दुनिया के ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के बाद फिर से हम चलेंगे गीतों के सफर में मेरे साथ यानी आरजी नूरी के साथ। दोस्तों, आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी के ईटानगर के एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुण एफएम। दोस्तों, हिंदी फिल्मी गानों का सफर हम ले चलेंगे आपको बचपन के गानों से लेकर एडल्टहुड और यानी बढ़ती उम्र के साथ साथ हम कैसे कैसे गानों को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हिंदी फिल्मी गाने हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हम ये सोच भी नहीं सकते कि हिंदी फिल्मी गाने हमारी जिंदगी में नहीं होते तो हमारी जिंदगी कितना सुना सुना सा लगता है ना दोस्तों। तो चलिए, जिंदगी को सुना नहीं बल्कि सुना सुना सा बनाएंगे, यानी कि हम ऐसा करेंगे कि जिंदगी के हर पड़ाव के गानों को हम सुनेंगे दोस्तों, क्योंकि हम जिंदगी में हिंदी फिल्मी गानों को सुनकर ही बड़े हुए। और अपने एडल्टहुड में हो या चाहे अपने टीनेज ईयर्स में हो या चाहे बढ़ती उम्र के साथ साथ हम जब बुजुर्ग हो जाते हैं तब कौन से गाना कौन कौन से गीत हम सुनना पसंद करते हैं। और हमारे किसी बुजुर्ग का ये कहना था कि हमारा रिश्ता जो है ना हिंदी फिल्मी गानों और रेडियो के साथ एक ऐसा अटूट बंधन है जिसको हम मरते दम तक लेकर जाएंगे। और इसी बात को लेकर आज मैंने प्लेलिस्ट तैयार किया हमारे हर उम्र के लोगों के लिए। तो दोस्तों, अब एडल्टहुड में जो गाने हम सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि हम गानों को सुनते हैं क्योंकि कभी कभी वे उन भावनाओं को शब्द देते हैं जिन्हें हम खुद कह नहीं पाते, यानी कि हम शब्दों में ढाल नहीं पाते। जैसे कि काम, परिवार, रिश्ते, जिम्मेदारियां, जिंदगी धीरे धीरे हमें बहुत कुछ सिखाती है लेकिन हमारे पास वो शब्द नहीं होते, हमारे इमोशन

उसको हम बयान कर सके। और तभी कोई पुराना गीत अचानक सुनाई देता है और लगता है कि ये गीत तो जैसे मेरी जिंदगी को बयान करता है या मेरे लिए लिखा गया है। चलिए दोस्तों, अगला गीत हम लिखेंगे जिंदगी को समझते हुए, आनंद फिल्म का ये खूबसूरत गीत। कहते हैं ना कि जिंदगी सचमुच एक पहेली है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है और कभी रास्ता बदल कर हमें नया कुछ सिखा देती है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें जिंदगी की इसी खूबसूरत उलझन का एहसास है।

तो दोस्तों आप बने हुए हैं मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। और दोस्तों शायद यही हमारी म्यूजिकल जर्नी की सबसे खूबसूरत बात, गाने नहीं बदलते, उनका मतलब हमारे लिए बदल जाता है। दोस्तों जिस गीत को हमने बचपन में सिर्फ सुना था, उसे आज सुनकर एक अलग ही एहसास होता है। जिस प्रेम गीत पर हम कभी मुस्कुराते थे, आज उसमें रिश्तों की गहराई महसूस होती है और कुछ गीत समय के साथ हमारे अपने बन जाते हैं। और अब जरा लौटते हैं उस दौर में जब बॉलीवुड रोमांस हमारी प्लेलिस्ट का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करता था। कुछ गीतों के साथ सिर्फ मेलोडी नहीं जुड़ती, जुड़ती है कोई जगह, कोई चेहरा, कोई दोस्त, कोई अधूरी कहानी। तो उस दौर की यादों के नाम फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ये खूबसूरत गीत आप सभी के लिए, यानी मेरी कहानी आपकी कहानी, इस गीत के माध्यम से।

और आज हम उस उम्र में हैं जहां शायद बचपन की मासूमियत भी याद आती है, यौवन के सपने भी याद आते हैं और साथ ही यह एहसास भी होता है कि जिंदगी का असली मजा सिर्फ मंजिल में नहीं सफर में है। तो चलिए अपनी इस म्यूजिकल जर्नी को एक ऐसे गीत के साथ आगे बढ़ाते हैं जिसमें है आजादी, सफर और जिंदगी को अपने अंदाज से जीने की चाह।

हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स बचपन से आज तक। दोस्तों, हमारी उम्र बदली, हमारे सपने बदले, हमारे रिश्ते बदले, हमारी पसंद बदली, लेकिन संगीत वह हर पड़ाव पर हमारे साथ रहा। कभी उसने हमें हंसाया, कभी किसी की याद दिलाई, कभी हिम्मत दी और कभी बिना कुछ कहे हमारे दिल का हाल कह दिया। शायद इसलिए कुछ गीत पुराने होकर भी पुराने नहीं होते, वे हमारी जिंदगी के अलग अलग पड़ावों की यादों के साथ ही बन जाते हैं। और आज की हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स को यहीं से एक खूबसूरत सलाम उन तमाम गीतों के नाम जिन्होंने हमारे बचपन से आज तक हमारा हाथ थामे रखा। दोस्तों, इसी गीत के साथ ही, लाइफ इन मेट्रो के इस खूबसूरत गीत के साथ ही, हम कुछ बातों को, कुछ इमोशंस को यूं ही अनकहा छोड़ देते हैं। आइए चलिए मेरे साथ यानी आरजे नूरिस के साथ अगले सफर पर चलते हैं। अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। दोस्तों, अगला कार्यक्रम हम पेश कर रहे हैं आप तक पहुंचाने के लिए हमारे फौजी भाइयों और बहनों के लिए सजाया गया दैनिक कार्यक्रम गीतमाला।

दोस्तों, कार्यक्रम गीतमाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आपको बता दूं कि यह कार्यक्रम हम हमारे फौजी भाइयों और बहनों की हिम्मत और ताकत और हमारे लिए और हमारे देश के लिए तत्पर रहने वाले जज्बात को सलाम करते हुए हमने सजाए हैं और उन तक हम पहुंचाना चाहते हैं गीतों के माध्यम से। हमारे दिल से सलाम, हमारे दिल से दुआ। और आज फौजी भाइयों और बहनों के लिए हमने सजाए हैं साथी फिल्म के कुछ हसीन नगमे बैक टू बैक। चलिए सुनते हैं पहले गीत के साथ तुमको हम इस कदर कुमार सानू और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

0: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे थे फौजी भाई और बहनों के लिए सजाया गया दैनिक कार्यक्रम गीतमाला। और इस कार्यक्रम में आपके लिए हमने पेश किया साथ ही फिल्म के कुछ हसीन नगमे बैक टू बैक। श्रोता दोस्तों, आपको बता दूं कि इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गीतमाला यही पे समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इसी समय यानी कि 12:30 से लेकर 1 बजे हमारे फौजी भाई और बहनों का कार्यक्रम गीतमाला में। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हम फिर चलेंगे आकाशवाणी की दिल्ली की तरफ हिंदी न्यूज तथा अंग्रेजी में समाचार यानी कि इंग्लिश न्यूज के लिए। तो बने रहे आकाशवाणी के RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हो गया।
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 20 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र असमिया बंगाली मराठी पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे।
3: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमेरिका के हिंद प्रशांत कमांड के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव प्रचार आज का अंतिम दिन है। मतदान से पहले सुरक्षा के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचना शुरू हो गई हैं। मतदान 6

0: अक्टूबर को होगा। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों की पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय जनमानस में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में श्री कृष्ण वर्मा के अथक प्रयास देश की स्वाधीनता संग्राम का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता को समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य के साथ कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 2:30 बजे से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Vice President C.P. Radhakrishnan has said that the journey of Viksit Bharat will be built on the strength of India's institutes, MSMEs and startups. Addressing the 58th Foundation Day of Institute of Company Secretaries of India, that is ICSI, in New Delhi today, Mr. Radhakrishnan emphasized that the nation cannot progress without gaining the trust and confidence of the investors. The Vice President noted that India is one of the fastest growing economies in the world, while simultaneously entering into an era of rapid technological advancements. Talking about ICSI, Mr. Radhakrishnan lauded the Institute for contributing in the promotion of good corporate governance in the country and described it as the global benchmark for sustainable development. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met United States Indo-Pacific Command Commander Admiral Samuel Paparo. In a social media post, Dr. Jaishankar said they discussed ways to further strengthen the security partnership and maritime cooperation between India and the United States in the Indo-Pacific region. Delhi police has transferred complaints of alleged sexual harassment made by 3 female journalists against police personnel to the crime branch for a fair and impartial inquiry. The alleged incidents took place yesterday during a protest in the New Delhi area where police personnel were deployed to maintain law and order. According to Delhi police, the New Delhi district received the complaints and handed them over to the crime branch for further investigation. Today is the last day of campaigning for the Nandigram and Rajinagar assembly by-elections. The voting will take place on Tuesday, the 6th of October. Central forces have already started arriving in both the constituencies. Police and central force personnel have begun route marches across villages to ensure security ahead of polling. Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs PM Setu has completed 1 year today. The PM Setu scheme of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship was launched on 4th of October last year. The initiative seeks to strengthen industry-led governance, upgrade training infrastructure, and promote demand-driven courses in line with evolving workforce requirements. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has invited Indian pilot Captain Smit Machar and Prime Minister Narendra Modi to light the ceremonial flame at Israel's upcoming independence.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार सुनने के बाद वक्त हो चला है मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ बढ़ने का अगले कार्यक्रम की ओर। और कार्यक्रम है हिंदी क्लासिक म्यूजिक फ्रॉम 60s to 80s। दोस्तों, कभी कभी कोई पुराना गीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, वह अपने साथ एक पूरा दौर लेकर आता है। वह दौर जब गीतों में सादगी थी, धुनों में मिठास थी और शब्दों में भावनाओं की गहराई। आज की हमारी संगीत यात्रा हमें ले जा रही है हिंदी फिल्म संगीत के उन सुनहरे दशकों में, जहां की 1960 से लेकर 80s तक एक ऐसा दौर जिसमें मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले, मुकेश और कई सुरों ने हमारी फिल्मी यादों को हमेशा के लिए संजो दिया। तो आइए कुछ खूबसूरत धुनों के साथ शुरू करते हैं ये पुरानी यादों से भरा सफर।

दोस्तों कार्यक्रम क्लासिक हिंदी म्यूजिक फ्रॉम 1960s to 1980s में हम शुरुआत कर चुके हैं मुद्दत फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे आवाजें दी हैं आशा भोसले और मोहम्मद अजीज ने और संगीत से सजाया है बप्पी लहरी ने। और इस फिल्म में स्टार कास्ट है मिथुन चक्रवर्ती, जयाप्रदा, पद्मिनी कोल्हापुरे और शक्ति कपूर। दोस्तों इस कार्यक्रम को शुरू करते ही हमें ऐसा लगता है कि संगीत की दुनिया में कुछ धुनें ऐसी होती है जिन्हें सुनते ही लगता है कि जैसे वक्त ने अचानक अपनी रफ्तार ही बदल दी हो और हम पहुंच जाते हैं उस दौर में जहां संगीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस भी किए जाते थे बहुत दिल से। और दोस्तों आज की हमारी संगीत यात्रा भी

कुछ ऐसे ही है 1960 से लेकर 1980s तक के उस सुनहरे दौर की, जब हिंदी फिल्म संगीत ने हमें ऐसी धुनें दी जो आज भी हमारी यादों में उतनी ही ताजा है और हर कोई गुनगुनाना पसंद करते हैं। दोस्तों, सफर में आज हम खास तौर पर रुकेंगे 1978 की फिल्म त्रिशूल पर। एक ऐसी फिल्म जिसके गीतों में दोस्ती है, शरारत है, मोहब्बत है और रिश्तों की गर्माहट महसूस होती है। तो आइए क्लासिक हिंदी म्यूजिक के इस सुरीले सफर की हम अगले पड़ाव में लेकर आएंगे त्रिशूल फिल्म के कुछ ऐसे नगमे। पहला ही गीत है बचपन जैसी शरारत के साथ। दोस्तों, त्रिशूल का यह गीत भी कुछ ऐसा ही रंग अपने साथ लेकर आता है, मस्ती, चंचलता और एक ऐसी धुन जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आए। तो चलिए म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत में हम मुद्दत के बाद अगला गीत हम सुनेंगे गप्पू जी गम गम त्रिशूल फिल्म से।

दोस्तों, उस जमाने की फिल्मों में जो संगीत होती थी वो खास इसलिए था कि एक ही फिल्म में आपको अलग अलग भावनाओं के इतने रंग मिल जाते थे कि कहीं दोस्ती की बेफिक्री, कहीं प्रेम की गंभीरता और कहीं रिश्तों की मासूमियत। अब उसी फिल्म से बढ़ते हैं मोहब्बत की तरफ। मोहब्बत जिसे समझने के लिए शायद पूरी जिंदगी कम पड़ जाए, लेकिन एक अच्छा गीत कभी कभी उसके कई मायने समझा देता है। और अगला गीत तो अपने आप में मोहब्बत की अहमियत को बहुत खूबसूरती से बयान करता है। अगला गीत है दोस्तों लता मंगेशकर, यशुदास और किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म त्रिशूल से ही, जिसके बोल है मोहब्बत बड़े काम की चीज है।

दोस्तों, जब मोहब्बत की बात चली है तो जरा दोस्ती को भी साथ लेते चले, क्योंकि पुराने हिंदी फिल्मों के संगीत में दोस्ती का रिश्ता भी कितनी खूबसूरती से दिखाई देता है, बिना किसी बनावट के, बिना किसी दिखावे के। एक अच्छा दोस्त वही जिसके साथ खामोशी भी अच्छी लगने लगे, बेवजह की बातें भी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आप सभी के बहुत ही चहेते चैनल अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम बॉलीवुड के क्लासिक म्यूजिक फ्रॉम 1960s टू 1980s, और आज हमने चुना है 1978 की फिल्म त्रिशूल के कुछ हसीन नगमे। दोस्तों, त्रिशूल का अगला गीत इसी दोस्ताना एहसास को अपने अंदाज में सामने रखता है, तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में यह गीत, जिसे संगीत से सजाया है खय्यम ने और संगीत के बोल है साहिर लुधियानवी के।

और जब दोस्ती से जरा आगे बढ़ते हैं उस खूबसूरत जगह की ओर जहाँ तारीफ में थोड़ी शरारत घुल जाती है, जहाँ किसी की अदाएं देखकर बस इतना कहने का मन करता है अब वाकई कमाल करते हैं। और इसी हल्के पुलके रोमांटिक अंदाज के साथ त्रिशूल का अगला गीत जानी मन तुम कमाल करते हो सुनते हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुण एफएम पर कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक फ्रॉम 1960s टू 1980s में। ये अगला गीत त्रिशूल का

0: तो श्रोता दोस्तों, त्रिशूल के इन गानों ने हमें एक ही फिल्म के भीतर भावनाओं के कितने रंग दिखा दिए। मस्ती भी, मोहब्बत भी, दोस्ती भी और हल्की सी शरारत भी। शायद यही वजह है कि 1970s और 1980s का हिंदी फिल्म संगीत आज भी हमारे दिल के इतने करीब है, आज भी गुनगुनाने का मन करता है। उस दौर के गीतों में कुछ ऐसा था जो समय के साथ पुराना नहीं हुआ। धुने वही है, शब्द वही है, लेकिन हर बार सुनने पर उनसे जुड़ी हमारी कोई ना कोई याद सामने आ जाती है। तो क्लासिक हिंदी म्यूजिक का यह सफर यही खत्म नहीं होता, क्योंकि अच्छे गीत कभी बीतते नहीं, ये बस हमारी यादों का हिस्सा बनकर हमारे साथ चलते रहते हैं। तो मैं हूं आप सबके साथ आरजी नूरे और आप सुन रहे थे क्लासिक हिंदी म्यूजिक फ्रॉम 1960s टू 80s आकाशवाणी के ईटानगर के FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण FM पर। संगीत सुनते रहे, पुरानी यादों को महसूस करते रहे और जुड़े रहे अपनी पसंदीदा धुनों के साथ। चलिए, संगीत का सफर जारी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा धुन बदलते हैं और जमाना बदलते हैं।
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Yemen confirms strikes against Houthi-controlled areas in Sana'a and Sada. Houthi claims missile and drone attack targeting Aramco facilities in Riyadh. And Asian Games 2026 to conclude today at Nagoya in Japan. India secures fourth place in overall medal standings with a tally of 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा भारत अपने संस्थानों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान यमन ने सना और सदा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है
2: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I am sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
1: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है ब्यौरा हमारे संवाददाता से
3: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़ राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है 14 आईटीआई क्लस्टर के लिए 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है आनंद और ऋषु के साथ सकलैन अख्तर आकाशवाणी समाचार दिल्ली
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है समावेशी विकास

0: और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
1: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल 2 पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
2: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश, भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
1: दक्षिण पूर्व एशिया के रणनीतिक संपर्क बिंदु पर स्थित यह उन्नत हवाई अड्डा बैंकॉक, पारो और सिंगापुर जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सुगम हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है, जिससे असम भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में 2 नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे।

0: आगे रहें एक्स पर @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
2: हूती विद्रोहियों के बियाहत पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तैस और तूर अलबहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशन में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हूती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हूतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान के नागोया में एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह कुछ ही देर में 2:30 बजे शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी।
3: एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। जबकि कुमकुम मोहत व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वायुसेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सैकड़ों की स्मृति में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का 1 वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गीत संगीत
5: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में
5: दिल से दिल की बात
4: बस आपके नाम।
5: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो साथी आरजे नूरी और आप सुन रहे हैं हिट्स ऑफ 90s आकाशवाणी के रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और इससे पहले आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार मिडे न्यूज तथा दोपहर समाचार। दोस्तों कहते हैं कुछ सफर मंजिल तक पहुंचने के लिए होते हैं और कुछ सफर सिर्फ उन यादों को फिर से जी लेने के लिए जो दिल में हमेशा बसी रहती है। आज का यह संगीत सफर भी कुछ ऐसा ही है जो हमें ले चलेगा उस सुनहरे दौर में जब कैसेट प्लेयर की क्लिक के साथ संगीत शुरू होता था, जब वॉकमैन कानों में लगाकर दुनिया से बेखबर हो जाना एक अलग ही एहसास था और मजेदार वो दिन था। और अब हर नई फिल्म का हर गीत देखते देखते हर गली हर घर और हर दिल की धड़कन बन जाता था। 90s का दशक सिर्फ बेहतरीन फिल्मों का दौर नहीं था दोस्तों, बल्कि मासूम मोहब्बत, सच्ची दोस्ती, पारिवारिक रिश्तों और दिल को छू लेने वाले संगीत का भी दौर था। उस समय के गीत आज भी सुनते हैं और सुनते ही जैसे जिंदगी कुछ पल के लिए ठहर जाती है और यादों की खिड़की अपने आप खुल जाती है। तो आइए आज फिर से उन सुरीले नगमों, मीठी धुनों और सुनहरे लम्हों के साथ एक खूबसूरत संगीत यात्रा पर निकलते हैं मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ, आप सभी के बहुत ही चहेते चैनल अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से। तो दोस्तों अगले कुछ समय आपका साथ निभाएंगे 90 के दशक के वे सदाबहार गीत जो आज भी उतने ही ताजा, उतने ही दिलकश और उतने ही अपने से लगते हैं। तो बढ़ाते हैं यादगार सफर की शुरुआत हिट्स ऑफ 90s के पहले खूबसूरत गीत के साथ।

दोस्तों, संगीत वो खूबसूरत चीज है जो सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचता, बल्कि सीधे दिल के उस कोने तक पहुंच जाता है जहां हमारी सबसे प्यारी यादें सहेजी हुई होती है। 90 के दशक के ये गीत कुछ ऐसे ही है। इन्हें सुनते ही कभी स्कूल और कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं, कभी पहली दोस्ती, पहला प्यार, तो कभी परिवार के साथ बिताई गई वे बेफिक्र शामें याद आने लगती हैं। दोस्तों, वक्त भले ही बदल गया हो, तकनीक ने संगीत सुनने के तरीके बदल दिए हो, लेकिन इन गीतों की मिठास आज भी वैसी ही है। यही वजह है कि 90s के ये नगमे हर पीढ़ी के दिल में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। इसीलिए तो 90s के गानों के अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं आज के जमाने में भी। जैसे बॉलीवुड 90s रिवाइंड बाय डीजे रफ करके यूट्यूब में 90s के नगमों को रिमिक्स करके एक मशअप जब अपलोड किया तो कई लोगों ने इस मशअप पे कमेंट किया। एक यूजर है, वो लिखते हैं, 90s के किड्स को अच्छी तरह पता है कि 90s का वो गोल्डन एरा जैसा टाइम न हुआ है न कभी होगा, जिसमें रोमांटिक, हिप हॉप, इंडी पॉप, रैप, डिस्को, भांगड़ा, ब्रेक डांस जैसे सारे मसाले थे। ये एरा हम ना कभी भुलाएंगे ना कभी भूल पाएंगे, और वैसे ही 90s के गीत कभी ओल्ड भी नहीं होंगे। तो ऐसे मजेदार जो कमेंट्स है वो आते हैं आज भी 90s के नगमों को, चाहे वो ओरिजिनल्स हो या जो रिवाइंड या रिमिक्स वर्जन है, उसके उन गीतों पर भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। और डीजेस और बहुत सारे ऐसे मॉडर्न जमाने के जो सिंगर्स है या म्यूजिशियंस है, उनका भी ये सब्जेक्ट है। अगर वो उसे कुछ नए तरीके से परोसना चाहते हैं तो वो 90s के गानों को ही उठाते हैं। इसका मतलब ये है कि 90s के गानों में कुछ खास तो जरूर था। तो इसीलिए उस खास दौर के गानों को आप तक पहुंचाने के लिए हमने एक म्यूजिकल जर्नी तैयार किया है हिट्स ऑफ 90s के रूप में आकाशवाणी के रन FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ रन FM पर, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। उम्मीद है कि इस सुरेले सफर का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। तो आइए यादों की इस खूबसूरत कारवा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं 90 के दशक का एक और शानदार, दिल को छू लेने वाला गीत सिर्फ आपके लिए हिट्स ऑफ 90s में, मेरे साथ सफर में, यानी कि आरजे नूरी के साथ सफर में।

दोस्तों कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s हो और हमारे श्रोता गण हमारे साथ न जुड़े ऐसा कैसे हो सकता है। इस वक्त हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि 4 अक्टूबर 2026 और मैं अपने होम टाउन की तरफ जा रहा हूं और सुन रहा हूं ये गाने 90s के जमाने के और फ्लश गेट्स ऑफ मेमोरीज आर ओपनिंग कहते हैं। और कहते हैं आज उन्होंने थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग ऑल द सॉन्ग्स ऑल माई फेवरेट सॉन्ग्स टू दिस वन शो दैट इज हिट्स ऑफ 90s। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस वक्त कि हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं उनका हर फेवरेट गाना इस शो के दौरान मैं प्ले कर रही हूं। दोस्तों हमारा यही तो मकसद रहता है कि हर गाने से आपकी जो यादें हैं वो जो जुड़े हैं वो इसी तरह से किसी पुराने एल्बम की तरह से आपके सामने खुल जाए, क्योंकि हर गीत हर गाना हमारे लिए कुछ ना कुछ खास मैसेज जरूर छोड़ता था और आज हम यादें ताजा कर रहे हैं हिट्स ऑफ 90s में गानों के माध्यम से। और आपको फिर से याद दिला दूं कि आप बने हुए हैं आकाशवाणी के एफ एम बैन 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुणा एफ एम पर और आज के सफर में मैं हूं आप सबके साथ आप सबकी अपनी रेडियो साथी आरजे नूरी। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे लिए एक गाना जरूर प्ले कर दीजिएगा कुरुक्षेत्र फिल्म से आपका आना दिल धड़काना। ताना जी आपको ये बता दूं कि जो रिक्वेस्ट सॉन्ग्स है उसका जो कार्यक्रम है वो 10 बजे सुबह रहता है और उसके लिए नंबर ये है 9436887808 और इस नंबर पर आप सुन सकते हैं हर रंग के हर दौर के हर इमोशंस के और हर तरह के गाने यानी हिंदी फिल्मी गाने सुन सकते हैं। इस नंबर के माध्यम से आप हमें मैसेज भेज सकते हैं और सुन सकते हैं रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम पर। फिलहाल क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपने सुनना चाहा है आपका आना दिल धड़काना कुरुक्षेत्र फिल्म से जरूर सुनाऊंगी, लेकिन आपको फिर से याद दिला दूं कि रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम पर आप सुन सकेंगे अपना मनपसंद गीत और नंबर फिर से याद दिला दूं 9436887808। और फिलहाल कार्यक्रम चल रहा है हिट्स ऑफ 90s। कहते ना कभी कभी एक धुन एक मुखड़ा या किसी गीत की बस पहली ही पंक्ति हमें बरसों पीछे ले जाती है। 90 का दशक भी कुछ ऐसा ही था, जब छुट्टियां होती थी तो हम अपनों के साथ अपने दोस्तों के साथ गाने सुनने के लिए बैठ जाते थे। तो इन गानों के साथ न जाने कितनी कितनी यादें जुड़ी हैं, स्कूल कॉलेज के दिन दोस्तों की महफिलें परिवार के साथ बिताए गए कई शामें शायद याद होगी। चलिए ताना जी के साथ सुनते हैं कुरुक्षेत्र फिल्म का ये गीत।

दोस्तों हिट्स ऑफ 90s कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों 90s के गानों की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, इसलिए भी है क्योंकि उस दौर में गाने बड़े मुश्किल से मिलते थे। जी हाँ, आज के जमाने में तो बस फिंगर क्लिक किया और आपके पास ढेर सारे गाने, ढेर सारे ऑप्शंस, और उसमें भी अगर आपको कोई गाना अच्छा नहीं लगा आप उसे स्किप कर सकते हैं, आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं अब मौजूद है। लेकिन दोस्तों जरा याद कीजिए वो दौर जब पसंदीदा गीत सुनने के लिए मोबाइल नहीं बल्कि एक कैसेट और टेप रिकॉर्डर हुआ करता था। गीत अच्छा लगा तो रिवाइंड, फिर प्ले, और कभी कभी रिबन उलझ जाए तो पेंसिल से उसे ठीक करने की जद्दोजहद भी। बहुत सारी मीठी यादें जुड़ी हुई है हमारे 90s के गानों के साथ। वो छोटी छोटी परेशानियां भी आज कितनी प्यारी याद लगती है, है ना। जब हम हर गाने को, हमारे पसंद के गाने जो आने वाले हैं, रिलीज होने वाले हैं, वो गाने भी हम लोग एडवांस में सुन भी सकते हैं। लेकिन वो जमाना ऐसा था कि अपनी पसंद के गीतों को सुनने के लिए रेडियो पर अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश करना और फिर बेसब्री से इंतजार करना कि शायद आज हमारी पसंद का गीत बज जाए। और जब वही गीत अचानक रेडियो पर सुनाई देने लगता था तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था कि हर अपने फ्रेंड्स को बता देते थे गली मोहल्ले में जाके कि आज मेरा पसंद का गीत बजा था और रेडियो जॉकी ने, यानी कि उद्घोषिका या उद्घोषक ने मेरा नाम लिया था। दोस्तों बहुत ही मजेदार दिन थे वो। और अगर आप भी इसी इमोशंस को फिर से जीना चाहते हैं तो अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज आपके लिए मौका देता है। ठीक सुबह के 10 बजे आप सुन पाते हैं रेडियो ऑन डिमांड, जिस कार्यक्रम के तहत आप सुन पाते हैं अपना मनपसंद गीत, और कार्यक्रम का नाम है रेडियो ऑन डिमांड, और नंबर है जिस पर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं 9436887808। फिलहाल तो आप, बहरहाल आप सुन रहे हैं इट्स ऑफ 90s आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आरजे नूरी के साथ। चलिए यादों के सफर को जारी रखते हैं इस अगले गीत के साथ।

0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।
2: श्रोता दोस्तों, फिर से स्वागत है आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 MHz पर। ताई खमती और मिशमी श्रोताओं के कार्यक्रम के बाद अब वक्त हो चला है आपको अपडेट करने का बॉलीवुड के किस्सों का और नए रिलीजेस का और OTT के समाचार का। तो दोस्तों, फिल्मी दुनिया में हर दिन कुछ नया होता है। कभी बॉक्स ऑफिस पर कोई फिल्म नई रिकॉर्ड बनाती है तो कभी OTT पर कोई नई कहानी दर्शकों का ध्यान खींचती है और टेलीविजन की दुनिया में भी सितारों और शोज की हलचल लगातार जारी है। तो आइए जानते हैं आज के बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट अपडेट्स। अजय देवगन स्टार दृश्यम 3 द कंक्लूजन ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत की है। 2 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने दूसरे दिन भारत में लगभग 50 करोड़ से अधिक नेट का कलेक्शन किया और 2 दिनों में घरेलू नेट कलेक्शन 115 करोड़ तक पहुंच गया। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी लगभग 170 से कहीं ज्यादा तक पहुंच चुका है। यानी विजय सलगांवकर की कहानी का यह अंतिम अध्याय दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। अगर आप थिएटर के बजाय घर बैठे मनोरंजन पसंद करते हैं तो इस सप्ताह OTT पर भी काफी कुछ नया आया है। पूजा मेरी जान, जिसमें मृणाल ठाकुर और हुमा कुरैशी प्रमुख भूमिकाओं में है, 2 अक्टूबर से Z5 पर स्ट्रीम हो रही है। वही दुपहिया सीजन 2 1 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। इस सीरीज में छोटे शहर की जिंदगी, हास्य और रहस्य का दिलचस्प मेल देखने को मिलता है। इसके अलावा पंकज त्रिपाठी और पवन मल्होत्रा की ओ माई डॉग भी 1 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। यानी इस वीकेंड आपके पास थिएटर के साथ साथ घर पर बैठकर देखने के लिए भी मनोरंजन के कई विकल्प मौजूद है। और अब टेलीविजन की दुनिया से। टीवी पर इस समय बिग बॉस 20 का वीकेंड का वार चर्चा में है। सलमान खान ने हाल के एपिसोड में अपने पुराने शो 10 का दम को लेकर एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि उस दौर में अपने कैरियर को लेकर मुश्किल समय के बीच वे इस शो को करने को लेकर हिचकिचा रहे थे, लेकिन पिता सलीम खान की सलाह ने उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए इंस्पायर किया। सलमान ने यह भी याद किया कि अमिताभ बच्चन के लिए कौन बनेगा करोड़पति ने टेलीविजन पर उनकी लोकप्रियता को नया आयाम दिया। इधर KBC18 में आसाम के डूलाजन से आए ऑयल इंडिया कर्मचारी सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी अपनी ज्ञान यात्रा से दर्शकों का ध्यान खींचा। उन्होंने 7.5 लाख जीते और 12.5 लाख के सवाल पर खेल छोड़ने का फैसला किया। और इसी के साथ एक और दिलचस्प बात, टेलीविजन और OTT की दुनिया अब पहले से ज्यादा करीब आ चुकी है। दर्शक चाहे पारिवारिक मनोरंजन चाहते हो, रियलिटी शोज, क्विज शोज या फिर फिल्मों और वेब सीरीज की दुनिया, हर तरह का कंटेंट अब उनकी पसंद और समय के हिसाब से उपलब्ध है। तो ये थे आज के बॉलीवुड अपडेट्स, सिनेमा घरों से लेकर OTT और छोटे पर्दे तक। फिल्मी दुनिया की हर हलचल, हर नई रिलीज और हर दिलचस्प खबर के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मनोरंजन की दुनिया में कहानी कभी खत्म नहीं होती, अब बस अगला सीन शुरू हो जाता है। तो चलिए आरजे नूरी के साथ सुनते हैं एक और गीत।

0: वांकप वांगसुई। प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड इम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रो अपग्रेडेड आईटी आईस पीएम सेतु मोथो होवांगवांग क्या फै मा अनि ए लजांग पोंता लन ले सतना इंडस्ट्री लेड गवर्नेंस आचाक आजों क्या बो मा ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आचन आचों हा आचन आचों आंगो बो मा अथापों ए लमलीले सत्ते क्या होली मोनमि सतमि वर्कफोर्स थम जिंगे जौले अलाइडन अंक्या जू तो जी ले जिंग क्या हजा पीएम सेतु स्कीम मोथो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप होथम ए अपुआतों ले ले एन के जंग पु अक्टूबर लेट नि आली तारीख आनी फंग मखंग होवांग वांग के चांग क्या बो महाजा स्कीम होमो खो सथान पंगमा सेंटर ए हाजत सबन कुटी स्टेट्स फॉर ए हाजत सा कुटी बोमा इंडस्ट्रीज ए हाजत बन कुटी ले आठ को ले हाजत पूजम कुटी मुनसेन आउटले को अटोन ले तै तै ले इंडिया आज के संग पूं एशियन गेम्स हबो पर पंतु सो मा सामता गोल्ड मेडल सा अनत सिल्वर मेडल बो मा सबन अनत ब्रॉन्ज मेडल ले खौपुली आगा मेडल्स कपलत अन क्या ए मेडल टैली मा आली दन तो सत है ले हजा बामा लेन के हफ्ता अन्य होने तो खंग ए अंगोटा सो ले गो क्या हजा आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 हबो पटपान तुसो अनि अशुक चंग तैले बो महाजा होशुक सेरेमोनी तुसो मा इंडियन शको अम हबो पट मि थम मखंग ए देस नि लो कप ले शूटिंग स्टार नीरु धंडा ngai हजा एशियन गेम्स 2026 होशुक सेरेमोनी तुसो जापान देस नागोया सिटी मक्या मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम मा असो अफो ऐ चंगतेले बोमा हजा सेरेमोनी तुसो अनि क्या हानसों आजोक बाजी तु मखंग ए होवांग बांग ले सते अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ए स्टेट मा कॉफी जमोन मानजाई आचन अमय अन क्या ए कॉफी मानजाई मि थम मुनचक सेन फक इनकम आचोंग आचन आजोंग मोंहा ले वनले खांडू आजा का मनी इटानगर मा असो अफो क्या हिल्स टु कप कॉफी वर्कशॉप तु सो होका दापन तो लवन क्या जंग मन का जे मा वलने बो मची ए स्टेट म क्या कॉफी मन जाई मा हकबुन तै क्या चास एन एंटरप्रेन्योर्स थम टेक्निकल एक्सपर्ट थम बो मा स्टेक होल्डर्स थम ले जोंता मा आथत असो अंग कप क्या तु सो चंको ले हया वर्कशॉप तु सो अरुणाचल प्रदेश अंग क्या कॉफी मन जाई मोथो सजु जोंग मा ता खत खा क्या मोथोवांग अंग सत्तेपु बोमा स्टेट गवर्नमेंट ए हजा वर्कशॉप तु सो मा तीन फन क्या का अंगउ मा ला आले ले स्टेट अंग क्या कॉफी मानजा मी थम या एंटरप्रेन्योर्स थम तो सो फोंग अंग क्या होम कोसत कार्टन पॉलिसी जिंग जाउ ए चांग तेपु ले चु वन से ले का होम मा अजंग बाजा वर्कशॉप तु सो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया होतम ए स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थम फै आसाम थम क्या ए अपुतों ले अंगोत असो क्या चांग ले अरुणाचल प्रदेश साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर दसंग लुपुल ए स्टेट गवर्नमेंट ए होने खत ले चु स्टेट अंक असाय लो बोर्डर होने पो तो ले हा फंग तो क्या जियो थर्मल एनर्जी पोटेंशियल वन पावर अंग जिंग जौले अलाय अदन अंक मोथो सजु मोकसा ले मो तैले ले वन जेले चि हजा का स्टेट अंक सेंटर फॉर आर्ट साइंसेस एंड हिमालयन स्टडीज ओथम डायरेक्टर ताना तागे हिया हजा डिपार्टमेंट अंक जियोलॉजिस्ट थमचु आजोला ले ले जियो थर्मल मकंग ए क्लीन एनर्जी वन पावर ओलपंग मोकसा ले अलाय अदन तै हे लक्या बामा सिंगवान अंग लद्दाख पुगा वैली होनोई मा जिंगजौ ले तै क्या ओएनजीसी जियो थर्मल प्रोजेक्ट तो हुआहा अंग कापुजु मा ngai वले पुल हाले हज प्रोजेक्ट तो हुआ हा क्या कतो अंग का क्या अरुणाचल प्रदेश मा चु तावांग डिस्ट्रिक मागो थिंगबु होनोई जंग मा बन मकंग बन आगा मेवत मेगावट तकु जो वन पावर अलाय अदन तंग ले जियो थर्मल पोटेंशियल तय नंग तय को ले अंग ता खत खा क्या होली अंग ए सत क्या चंग तैले बोमा मिनिस्टर पुल ए होम हजा ปูกับโปรเจกต์ตัวหัวหาอังฮาเลกาแก่มาสิงห์วันแก่ฮอนเจเอสเตทมาจิโอทาร์มัลเอเนอร์จีวันพาวเวอร์อังสิงห์เจ้าเล่อะไรดันอังตุงตาและงอเตกะหมดทศจุตพงและอาสุนาเซอังแก่เลจูวันเล่บาซาร์ฮอนุยจังเอเมเล่ญาบีจินีดิร์จีมันีบาซาร์ฮอนุยมาแก่คาร์โคเฮริเทจเซ็นเตอร์มาอังอดอาสุแก่ดิสตริกเลเวลเตจัสTransforming Entrepreneurial Journeys Across State and District Workshop to so ma hakle bo ma haja tejas moto tale kya homo khosat moto mokwang se le te sung te kya entrepreneurs cha san pho minusha ko tham hiya lanu na sam pho nying kya tham mentorship munisen funding market access hiya mau mamu start up homo khosat opportunities phai alinga tai le ko aton puku ma start up india tham asom keta motto changle emle dirchi ajba mata social media post ka ho ma hom leparada district angke pang bai cha san pho minu shako tham ssg ho tham pho lan no sam nu hiya aspiring entrepreneurs tham ang yo haja workshop makang kapalo pang pangnu huli homo khosat lab kapalo ang azong mong ba khai ole vanenzele meteorological center itanagar mci tokang arunachal pradesh ang kya lower subansiri papung pare west siang siang upper siang hia dibang valley district pho ma ani zaita honui to jang adunga kingpu ele wateila laketa yellow alert ka ho phale taile ka ho ivai Ija Akashwani Itanagar Kaupema Sai Apahai Anyi Kaya Saikem Honchun Ngandam Dingma Pong Kapai
1: से प्यार भरे अल्फाजों में
2: दिल से दिल की बात
1: बस आपके नाम
2: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz

दोस्तों ज्ञान संगीत दिल से दिल की बात और किससे कहानियों का संगम अरुण एफ एम 103.1 में पर आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का समाचार। अगर आप जारी रखना चाहते हैं सुनना वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम तो ट्यून इन कर पाएंगे आकाशवाणी के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर। और अगर आप मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ जारी रखना चाहते हैं और सुनना चाह रहे हैं हिंदी फिल्मी गाने तो चलिए सुनते हैं बैक टू बैक कुछ हसीन नगमे।

दोस्तों गानों के कार्यक्रम से हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, क्योंकि अब वक्त हो चला है 4 बजे का ईडू मिशमी श्रोताओं के समाचार को सुनने का। हम फिर से लौट कर आएंगे 4:05 से, फिर से सुनेंगे हिंदी फिल्मी गाने आकाशवाणी के RNFM 103.1 MHz पर। तो कुछ ही पलों में यानी कि 4 बजे का समय रहेगा ईडू मिशमी श्रोताओं के समाचार का।

अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है इदुमिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी ईटानगर माचल पुची इपी इन एम एल एतनी इदमिश्मी आहुलाकी दरगालंबो अति ज्वालाको जिया इमू जम आजो अहिदा लने आयरा प्राइम मिनिस्टर सेतु एनुचे इनी तनी आयोपगा बचा है एतनो इनुगा बदा ने सेंट्रल गवर्नमेंट में लाभगा ने आय स्कीम को कमने आई टी आई दोने किसा ट्रेनिंग आई तुम मामने ज्वालाको जिया इमो ट्रेनिंग अहिचा सेंटर में आसुखर स्टेट आलम्रोचे अन्यखर एदोने इंडस्ट्री आलम्रोचे हूखर पाउचे आय स्कीम मा एठगा लाहगा एदानी एशियन गेम्स तमगा मा इंडिया में अन्यों खे गोल्ड मेडल अन्यों यू सिल्वर दोने असुर यू ब्रॉन्ज मेडल लापरगे यू मंगा मेडल आने गने काफी पोजिशन मा खिगा बदा आहगा आई ची नागोया एशियन गेम्स तमगा एतानी दोगा माचिनी आगे ओमाचे आहोएगा नेहरू दांदा में तारमगा आखांदो माचे छीमा इंडिया माचे आसला अंगोगेने अगुई बौदा लाहोगा आ तारमगा आखांदो माचे छे है अबुनी इंडिया माचे ताहुबाजी माने जापान नागोया आतिकोची मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम माने आखगाउदा लाहोगा अरुणाचल प्रदेश माचे कॉफी अपीतिया में आम पिया आयोजिका आरो चिपुआ के बने अतुत्व अरुंदगा ने ची मिस्टर पेमा खांडू में बुनी हिल्स टू कप कॉफी वर्कशॉप आखगा माची चाय माहौल लगाने आ वर्कशॉप आखापा कॉफी अपीतिया के बने पुलिस आचू अजित चिपुआ स्टेट गवर्नमेंट में अतुत्गा लगाता आहोगा आ पुलिस आचू अजित चिपुआ कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया में अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट लाइव महोम आ वर्कशॉप है अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अखनगा आहोगा हिमालय माखा लद्दाख आतिका माचे इमू में लिखी कोकोचे थर्मल तीमा इलेक्ट्रिक पावर आयोगा चिपो अथु आहित अरुणाचल प्रदेश साइंस दोने टेक्नोलॉजी मिनिस्टर दसांगलो पुल में आतिका मा बाबने लद्दाख माचे पुगा बेली जियो थर्मल प्रोजेक्ट मा अथोबदा आहोगा पुल सो है आर्ट साइंसेस सेंटर दोने हिमालयन स्टडीज माचे डायरेक्टर इंजीनियर थाना तागे साइंस ने टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट माचे आजालम्ब्रो ऑल इंडिया लिमिटेड एदोने सेरोस माचे इमु आलम्ब्रो में पानबेगा बदा आहोगा आ महो अरुणाचल प्रदेश तवांग डिस्ट्रिक्ट माचे थिंगबू आतिका माबो जियो थर्मल प्रोजेक्ट अजित जिगा लिखी तीखागा लाहोगा लेपरादा अतिका माचि ज्वाला कोचिया इमु तेजास स्कीम को माने आम आयोका इनका जिगा आरो ची नाने बासार एम एल ए न्याबी जी निदिर्चि में बुनी बासार अतिको ने तेजास चिपो वर्कशॉप अखगा माचि चाब महा लाइबादा आहोगा चांग ताजो माचि आई सी डी एस प्रोजेक्ट में अहा छला पुची जानी हिमागा माचि ने अब एचला पुची हिउ माचि निलीबा आ अतिका माचि आंगनवाड़ी सेंटर मामा ने आंगन का उत्सव आंगन का मिलन सेवा दोने सेवा संकल्प अभियान कोकोमा ने वो प्रोग्राम अखगा लाहोगा आंगनवाड़ी सेंटर दो ची जाचू आमाबा एवे एदोने आई सी डी एस ची जोता पंचायत मेंबर आलम्ब्रो सेल्फ हेल्प ग्रुप आलम्ब्रो विलेज हेल्थ सैनिटेशन दोने न्यूट्रिशन कमिटी आलम्ब्रो एदोने एकिशा होया अंजया इमो आलम्ब्रो में आरोगनाचा अली प्रोग्राम अखनेगा चिदा लाहोगा अबुना अरुणाचल प्रदेश माचि लवर सुबानश्री पपुम परे वेस्ट सियांग सियांग अपर सियांग दोने दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट माचि आतिका ब्राई मा आयो पम्बो अरुणा मा दोने अबुली चो सदाने इटानगर मिथोरोलॉजिकल सेंटर माचि में लाहोगा एतानसि इदमिस्मि आहो अली माओ दोबाए
1: एच आई वी एम बे चिपो आसावे आउदा खागा
2: HIV हम बे है HIV गिला मिंग ची इयु घर दोगा गे कंदू ने जी दोगा गे HIV हम बे गिला इंजेक्शन ठापो बीजी ची ठा दोगा गे मने

0: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से।
1: इरुम मिश्र श्रोताओं के समाचार के बाद अब फिर से वक्त हो चला है वापस चलने का हिंदी फिल्मी गानों की तरफ। ये आकाशवाणी का आरएन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है।

0: तो दोस्तों, इसी गीत के साथ ही हमारी दूसरी प्रसारण सभा का ये सफर यहीं पे समाप्त होता है। अब वक्त हो चला है आप सभी को बताने का कि कुछ ही पलों में यानी कि 4:25 पर गुड इवनिंग ईटानगर के साथ हमारी तीसरी प्रसारण सभा शुरू होगी और उसके लिए आप सभी की बहुत ही चहेती और चुलबुले से आप सबकी प्यारी आरजे मंच स्टूडियो में आप पहुंचे हैं। उम्मीद है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ बिताया गया यह समय यानी कि हमारी दूसरी प्रसारण सभा आपके दिल को सुकून, चेहरे पर मुस्कान और अपनों से अपनापन दे गया होगा। संगीत, बातों और यादों के इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी श्रोताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी दूसरी प्रसारण सभा को सफल बनाने में हमारे प्रसारण अधिकारी श्री पी डोले तथा तकनीकी अभियंता श्री एचएम भूषण और पूरी टीम का विशेष योगदान रहा और आप सभी का भी हार्दिक आभार। दोस्तों, जिंदगी चाहे कितनी ही व्यस्त क्यों ना हो, अपने लिए कुछ पल सुकून के जरूर निकालिए क्योंकि खुश रहना भी एक कला है और मुस्कुराते रहना जिंदगी की सबसे खूबसूरत आदत। इसी प्यारे से संदेश के साथ अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। और हाँ, जाते जाते आपको ये भी याद दिला दूं कि रेडियो का सफर यानी कि अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज का सफर जारी रहेगा। तांसा चुनाव के समाचार के बाद आरजे मंच आपसे रूबरू होंगी और फिर जुड़ेगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर के साथ। तो बने रहे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ क्योंकि रेडियो का सफर यूं ही चलता रहेगा, गीतों के साथ, बातों के साथ और आप सभी के साथ।
1: मेरो आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मचौसा देवबासा अक्टूबर जिलिंग रंगबलई तारीख पांग हजनेरा खरखरक पांग आरो मचौरंग जा रुंगरंग रुकवांग कोनका मामाइरो आचुंग सुरकरिबंग स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री र प्रधान मंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेड आईटी स्कीम प मनपांग यंग अक्टूबर जिलिंग रंगबलई तारीख सा तफांग तवांग मचौसा सकान नंग पांग सिसो थौरंगो फांद इर स्कीम र इंडस्ट्री लेड गवर्नेंस काम प सहंग मनै ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प तचेन मरा परम डिमांड ड्राइवन कोर्सेस ताम प अमाय तयांग मतान र परम इर स्कीम र गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआईस ताम प मॉडर्न इंडस्ट्री एलाइंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौनांगसो तयांग रोरे क्वालिटी नई वोके

jini dirsi thoktung ofant aru workshop wang hobida po kamlang ahuma serang moro emle dirsi ro social media post nang lepa rada district wang jarau jachang heng manai mayung heng mara parju self help groups tam roktu nang ma aru liwan sa manai entrepreneurs mayeng mo dobroktu chayang tayo icds project ro angan ka utsav nai अंगन मिलन सेवारा जन सेवा से संकल अभियान ताम जखुम बली भय अंगनवाड़ी सेंटर्स ताम नंग कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम पर सितंबर जुलिंग रंखर बना तारीख में आरो मचोलिंग रंसन तारीख अतक सरियंग थी इरे प्रोग्राम रो कमवांग ताम नंग सिंगमुंग वंग मई पर अपंग थयोप रो जैसे मई मने नौसा हेंग मो अंगनवाड़ी सेंटर ताम पर अरियंग त्रयंग मतान रो आरो रिमेकिंग तामनंग आईसीडीएस सर्विसेस कामवांग पो सेंग लिनम कामनंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस तामने सेल हेल्प ग्रुप्स तामरा विलेज हेल्थ परजु सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटीज ने फोन लाइन वर्कर्स मैहेंगरा बेनिफिशरीज मैहेंग पो अपंग थयोप म तानरुंगो रोतो रुंगरंग इतना थुमरा

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

हेलो एंड गुड इवनिंग हमारे सभी प्यारे श्रोताओं को, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां बात होती है दिल से दिल तक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आपका दिन अच्छा गया होगा, और अगर दिन थोड़ा हैक्टिक रहा है तो कोई बात नहीं, अब शाम हो चुकी है, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, चाय लीजिए और बस कुछ देर के लिए सारी टेंशन साइड में रख दीजिए। श्रोताओं, मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ हमारे आज के दिन के तीसरे और आखिरी प्रसारण सभा में। अब तक आप बने हुए थे आरजे नूरी के साथ, और अब आपका साथ देने आई हूँ मैं अपनी आवाज के साथ, आपकी अपनी आरजे बिंदुंग दिंदो मांच। साथ ही श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे इस प्रसारण सभा को आप तक पहुँचाने के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद है अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी वीडियो ती तांगजांग एवं तकनीकी अभियंता पी वीडियोरी। तो श्रोताओं, चलिए शुरू करते हैं हमारे तीसरी प्रसारण सभा, और मैं आपको बता देती हूँ अब से लेकर रात के 10:30 तक के प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से लेकर शाम के 4:45 तक आप सुनेंगे गुड इवनिंग ईटानगर का कार्यक्रम, जिसके बाद 4:45 पर आप सुनेंगे हिंदी समाचार एवं इंग्लिश न्यूज। ठीक 5:00 आप सुनेंगे नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम नोक्ते भाषा में समाचार, जिसके बाद 5:05 पर हम लेकर आएंगे आपके लिए कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव। 5:30 पर प्रसारित होगा शाम की महफिल का कार्यक्रम, जिसके बाद ठीक 6:00 आप सुनेंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का कार्यक्रम। 6:30 पर आप सुनेंगे आदि श्रोताओं का कार्यक्रम आदि भाषा में समाचार, जिसके बाद

6:35 पर हम आपके लिए लाएंगे आज के कलाकार। ठीक 7 बजे आप सुनेंगे निशी श्रोताओं का कार्यक्रम निशी भाषा में समाचार, जिसके बाद 7:05 पर आप सुनेंगे वुमेन एंड फैमिली प्रोग्राम। हम सुनेंगे इंटरव्यू विद श्री तापक उली ऑन पोक्सो एक्ट गैर अत्य के साथ। 7:35 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का कार्यक्रम, जिसके बाद ठीक 8 बजे हम सुनेंगे अपना गीत का कार्यक्रम। 8:30 पर प्रसारित होगा वेस्टर्न मेलेडीज के कार्यक्रम तेची कोकोलोलो के साथ, जिसके बाद 9 बजे हम सुनेंगे भूले बिसरे गीत का कार्यक्रम। श्रोताओं 9:30 से 10:30 तक आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के साथ रिले एफएम गोल्ड के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारे आज की तीसरी प्रसारण सभा की रूपरेखा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं गुड इवनिंग ईटानगर का कार्यक्रम। और गुड इवनिंग ईटानगर में आज हम बात करेंगे एक बहुत सिंपल सी चीज के बारे में, जो कि है खुशी। चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को एक बहुत ही बेहतरीन गीत के साथ। हम सुनेंगे केके की आवाज में फिल्म ओम शांति ओम से अजब सी।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही सिंपल सी चीज, खुशी के बारे में, लेकिन बड़ी वाली खुशी नहीं। आज हम बात करते हैं उन छोटी छोटी खुशियों की जो हमारी डेली लाइफ को थोड़ा और स्पेशल बना देती है। जैसे सुबह उठते ही एक गर्म चाय, बारिश के टाइम खिड़की के पास बैठना, किसी ओल्ड फ्रेंड का अचानक कॉल आ जाना, मम्मी का बिना बोले फेवरेट खाना बना देना, या फिर पूरे दिन के बाद घर पहुंचकर बेड पर गिरना। सच बताओ, लाइफ में हैप्पीनेस के लिए हमेशा कुछ बड़ा होने की जरूरत नहीं। कभी कभी एक सिंपल सा थैंक यू, एक जेन्युइन स्माइल या किसी अपने का सब ठीक है ना भी मूड चेंज कर देता है। और हम लोग ना अक्सर बड़ी चीजों के पीछे भागते भागते ये छोटी खुशियां नोटिस करना ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं जब ये अचीव कर लूंगा तब खुश होऊंगा, जब जॉब मिल जाएगी तब खुश होऊंगा, जब पैसे ज्यादा हो जाएंगे तब लाइफ एंजॉय करूंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब, कब, अब बनेगा हमें पता नहीं चलता। इसीलिए आज शाम छोटा सा काम कीजिए। एक, अपने आसपास देखिए। हो सकता है आपके घर में कोई आपका वेट कर रहा हो, हो सकता है कोई फ्रेंड आपसे बात करना चाहता हो, या हो सकता है आपको खुद थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो ब्रेक लीजिए, फोन थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए, अपने फेवरेट सॉन्ग प्ले कीजिए, चाय या कॉफी बनाइए और बस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। चलिए हम सुनते हैं एक और गीत। फिल्म फुकरे से सुनेंगे ये गीत अंबर सरिया।

0: दोस्तों, आज की शाम एक सिंपल रिमाइंडर के नाम, खुश रहने के लिए परफेक्ट लाइफ का वेट मत कीजिए। जो अच्छा है, जो आपके पास है, उसे एंजॉय कीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त, और आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग ईटानगर। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शाम अभी बाकी है और आप सभी के साथ इस शाम को और बेहतरीन करने का जो मुझे मौका मिला है, इसी में मेरी खुशी है। दोस्तों, चलिए अब वक्त हो चला है हिंदी समाचार के लिए, जिसके बाद आप सुनेंगे इंग्लिश न्यूज और हमारी मुलाकात फिर होगी इवनिंग ड्राइव के कार्यक्रम में। तो बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज बारिश का अनुमान। यमन के सेना और सादा में हुती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हुती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के

संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थानों के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलाव के दौर में भी प्रवेश कर रहा है। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्था का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्था के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईआईटी के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावनाएं मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय कि यह योजना पिछले वर्ष आज के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजी नगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्र में भेजी जा रही है। मतदान 6 अक्टूबर को होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल ए पेपरोस से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में दो नरग्रेड इंडियन बास्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीकी और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व छात्रों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पेन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पेन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में मदद करेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी और एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्रीय कप्तान स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कप्तान स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। श्री द्विवेदी ने कहा कि कप्तान स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है। वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्ष दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच

0: अपराध शाखा को सौंप दी है। यह घटना कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। यह पुलिस कर्मी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए गए थे। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हुती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हुतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सेना और सादा में हुती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है। सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा है कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हुती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हुतियों की अपनी नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से वेस्टर्न जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिला है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे, जिनकी तलाश की जा रही है। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैककिनन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कल अगले 2 दिन गरज चमकने के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। वायुसेना ने आज कई शहरों में सिखो भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित किया। इसमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलोर, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि यह मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो की स्मृति में आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजी नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था को रूपांतरित करने के लिए शुरू किए गए पीएम सेतु योजना का 1 वर्ष पूरा। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज बारिश का अनुमान। यमन के सेना और सादा ने हुती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हुती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शुभ्रशाची भट्टाचार्य। Vice President C.P. Radhakrishnan today said that the journey of Viksit Bharat will be built on the strength of India's institutes, MSMEs and startups. Addressing the 58th Foundation Day of Institute of Company Secretaries of India, ICASI, in New Delhi, Mr. Radhakrishnan emphasized that the nation cannot progress without gaining the trust and confidence of the investors. He noted that India is one of the fastest growing economies in the world while simultaneously entering into an era of rapid technological advancements. Talking about ICASI, Mr. Radhakrishnan lauded the Institute for contributing in the promotion of good corporate governance in the country and described it as the global benchmark for sustainable development. He also expressed hope that the collective efforts of ICASI in building a strong Atmanirbhar Bharat should make India the single largest economy of the world one day. In West Bengal, today is the last day of campaigning for the Nandigram

0: Advinte he safety ahu thama dihak damnam romju khonchat vinte nam solai ba biji syringe solai le nyongwa chanamin tale minjo
1: hama arngin pa hunang thinan room tong dakpak min kitmin jamrum chala michik ko hiv khonchat pa nangjatma
0: hiv khonchat pa soktuk remin homoy ko khonchat pa jadloti ko soktuk pa ma rondong lo ta heng minjo hiv khonchat ran nak chen ajaja khobot ba joinan khonchat pa soktuk reyan khonchat junma mi anang mahon minjo are khonchat kho ko ajaja ngin chojat rang national aids helpline number 1097 ko phone honan are khobot pa arunachal pradesh state aids control society dhs nahalagan neva public he hobi darang jo lo se dega
2: जिद्दी पड़ोसी है पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in
3: हर घर सूर्य घर
4: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं घर में दो दो फ्रिज हैं फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है जीरो मैंने पूछा तो भतीजा बोला चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर
3: हर घर सूर्य घर
6: श्रोताओं वक्त है कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का दोस्तों इस वक्त अगर आप रोड पर है तो सीट बेल्ट लगाइए फोन साइड में रखिए और ड्राइव के साथ हमारी बातें भी एंजॉय कीजिए आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है लेकिन इम्पोर्टेंट भी हम बात करने जा रहे हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में अब ट्रैफिक रूल्स सुनते ही कुछ लोग सोचते हैं हाँ हाँ रेड लाइट पे रुकना है हेलमेट पहनना है ये तो पता है बिल्कुल पता है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रूल्स पता होने और रोड पर एक्चुअली फॉलो करने में थोड़ा डिफरेंस है आज बात सिर्फ रूल्स की नहीं करेंगे बात करेंगे कंसिडरेट ड्राइविंग की मतलब आप रोड पर सिर्फ अपनी सेफ्टी का नहीं बल्कि दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखें सबसे बेसिक रूल से शुरू करते हैं रेड लाइट रेड लाइट है यानी रुकना है कभी कभी हम देखते हैं कि सिग्नल रेड है लेकिन ड्राइवर धीरे धीरे लाइन क्रॉस करके आगे निकल जाता है सोचता है अरे रोड खाली है लेकिन ट्रैफिक रूल्स का पर्पस सिर्फ ट्रैफिक होने पर सेफ्टी देना नहीं आपको सिग्नल फॉलो करना है चाहे रोड खाली ही क्यों ना हो और प्लीज स्टॉप लाइन का भी ध्यान रखें। सिग्नल पर रुकते वक्त इतना आगे मत आ जाइए कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ब्लॉक हो जाए इंडिकेटर का यूज करें अब एक छोटी सी चीज जो ड्राइविंग को बहुत प्रेडिक्टेबल बना देती है वो है इंडिकेटर लेफ्ट टर्न लेना है इंडिकेटर राइट टर्न लेना है इंडिकेटर लेन चेंज करना है इंडिकेटर आपके पीछे वाला ड्राइवर माइंड रीडर नहीं है उसको पता कैसे चलेगा कि आप अचानक लेफ्ट मुड़ने वाले हैं इंडिकेटर देने से दूसरे ड्राइवर को टाइम मिलता है रिएक्ट करने का और यही होती है कंसिडरेट ड्राइविंग आप सिर्फ अपनी नहीं दूसरों का भी सोच रहे हैं और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेशली इवनिंग और नाइट ड्राइविंग के लिए डिपर अगर सामने से कोई व्हीकल आ रहा है तो हाई बीम को डिप करके लो बीम पर आ जाइए हाई बीम से सामने वाले ड्राइवर की आंखों में डायरेक्ट ग्लेयर पड़ सकता है और कुछ सेकंड्स के लिए उसको रोड प्रॉपरली दिखना मुश्किल हो सकता है अगर आपके पीछे कोई व्हीकल है और वो आपको ओवरटेक कर रहा है तो उस वक्त अननेसेसरीली हाई बीम यूज करके उसको ब्लाइंड मत कीजिए सिंपल यूज रूल याद रखिए।

दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक, और आप सुन रहे हैं इवनिंग ड्राइव का कार्यक्रम। दोस्तों, इवनिंग ड्राइव में आज हम बात कर रहे हैं कुछ ड्राइविंग रूल्स के बारे में, और एक रूल जो आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ड्राइविंग के वक्त फोन नहीं। मैसेज आ गया, बाद में चेक कर लेंगे। कॉल आ रहा है, अगर अर्जेंट नहीं है तो सेफली साइड में रोककर अटेंड कीजिए। एक सेकंड के लिए फोन देखना भी रोड पर आपका अटेंशन हटा देता है, और रोड पर एक सेकंड का डिस्ट्रैक्शन कभी कभी काफी होता है। सभी ड्राइवर्स से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ, वो है पेडेस्ट्रियन को थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए। हर पेडेस्ट्रियन रोड क्रॉस करते वक्त परफेक्ट डिसीजन नहीं लेगा, इसीलिए अगर कोई एल्डरली पर्सन है, बच्चा है, या कोई रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो स्पीड कम कीजिए और उन्हें सेफली क्रॉस करने का चांस दीजिए। राइट ऑफ वे को ईगो का इश्यू मत बनाइए, आपका डेस्टिनेशन कहीं भागा नहीं जा रहा। बाइकर्स और टू व्हीलर्स के लिए एक रिमाइंडर है कि हेलमेट सिर्फ पुलिस के डर से नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए यूज करें, और कार ड्राइवर्स टू व्हीलर्स के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस रखिए। बाइक छोटी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको रोड पर जगह की जरूरत नहीं। ब्लाइंड स्पॉट्स का भी ध्यान रखिए। और जब बात आती है ओवरटेकिंग की, प्लीज सिर्फ इसीलिए ओवरटेक मत कीजिए क्योंकि आगे वाली गाड़ी आपसे स्लो है। सेफ डिस्टेंस रखिए, सिचुएशन देखिए, और अगर सेफ नहीं है तो वेट कीजिए। 2 मिनट का वेट एक रिस्की ओवरटेक से कहीं बेहतर है। दोस्तों, अगर ट्रैफिक रूल्स की लिस्ट एक्चुअली सिंपल है, स्पीड लिमिट फॉलो करना, सिग्नल फॉलो करना, सीट बेल्ट और हेलमेट का यूज करना, फोन से डिस्टेंस रखना, इंडिकेटर यूज करना, और रात में जरूरत के हिसाब से डिपर यूज करना, लेकिन इन सब से एक स्टेप आगे है कंसिडरेट ड्राइविंग। रोड पर हम अकेले नहीं है, आपके साथ कोई ऑफिस से घर जा रहा है, कोई अपने बच्चे को स्कूल से लेकर आ रहा है, कोई बाइक पर अपनी फैमिली के लिए ग्रोसरीज लेकर जा रहा है, तो कोई एम्बुलेंस में किसी को हॉस्पिटल ले जा रहा हो सकता है। हर किसी की अपनी डेस्टिनेशन है, इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा स्पेस दीजिए, थोड़ा सिग्नल कीजिए, थोड़ा स्लो डाउन कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, रोड पर एक दूसरे का ख्याल रखिए, क्योंकि गुड ड्राइविंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप खुद सेफली ड्राइव करें। गुड ड्राइविंग का मतलब ये भी है कि आपकी ड्राइविंग की वजह से कोई और अनसेफ फील ना करे। तो ईटानगर, आज की इवनिंग ड्राइव में बस इतना याद रखिए, ड्राइव स्मार्ट, ड्राइव सेफ और ड्राइव कंसिडरेट। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त, और आप सुन रहे हैं इवनिंग ड्राइव। स्टीयरिंग पर ध्यान रखिए, स्पीड को कंट्रोल में रखिए, और घर सेफली पहुंचे। आपकी जर्नी सेफ हो और दूसरों की भी। हमारे साथ बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और चलिए अब सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। फिल्म दिल का रिश्ता से हम सुनेंगे अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण की आवाज में दिल का रिश्ता।

0: Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वारी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव। चलिए अब इस कार्यक्रम में सुनते हैं एक और गीत। हम सुनेंगे फिल्म हसी तो फसी से, जहन नसीब।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, दिल से दिल की बात।
1: नमस्कार और एक बहुत ही खूबसूरत शाम का सलाम। शाम ढल रही है, हवाओं में थोड़ी ठंडक है और ऐसे वक्त में अगर साथ हो कुछ प्यारे से नगमे तो शाम और भी हसीन हो जाती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं शाम की महफिल का कार्यक्रम। एक ऐसी महफिल जहां बातें कम होंगी लेकिन गाने दिल से होंगे। हिंदी फिल्मों के वो गाने जो कभी हमें किसी की याद दिलाते हैं, कभी पुराने कहानियों में ले जाते हैं, कभी चेहरे पर स्माइल ले आते हैं और कभी बिना कुछ कहे दिल की बात कह जाते हैं। कुछ गाने नए होंगे, कुछ पुराने, कुछ रोमांटिक, कुछ एवरग्रीन और कुछ ऐसे जिन्हें सुनते ही हम बोल पड़ते हैं, अरे वाह ये गाना तो कितने सालों बाद सुना। तो आज की शाम अपनी सारी बिजी लाइफ को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए, चाहे आप घर पर हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं या बस अपने खिड़की के पास बैठकर शाम एंजॉय कर रहे हैं। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए और दिल को थोड़ा म्यूजिक के हवाले कर दीजिए। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट मांज और आप है हमारे साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के शाम की महफिल का आगाज करते हैं एक खूबसूरत हिंदी फिल्म सॉन्ग के साथ। हम सुनेंगे फिल्म धड़क का टाइटल ट्रैक धड़क।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
4: श्रोताओं चलिए अब सुनते हैं शाम की महफिल के कार्यक्रम में फिल्म जज्बा का गीत बंदिया।

से गाया है जुबिन नौटियाल ने। संगीत के निर्देशक है अमजाद नदीम और गीत के बोल लिखे हैं अमजाद नदीम ने खुद। चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से दिल की बात।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
6: श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और चलिए अब सुनते हैं शाम की महफिल में एक और गीत, फिल्म इकबाल से सुनेंगे के और सलीम मर्चेंट की आवाज में। आशाएं

श्रोताओं, शाम की महफिल में आज के लिए बस इतना ही और अब वक्त है हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के कार्यक्रम का। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा का ये बेहतरीन सा एल्बम बिना किसी ब्रेक के। तो चलिए सुनते हैं।

दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखिए निगाह। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, दिल से दिल की बात।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आज के कलाकार में। अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का कार्यक्रम आदि भाषा में समाचार। आज की शाम हम डेडिकेट कर रहे हैं एक ऐसी आवाज को जिसे सुनते ही कभी रोमांस याद आता है, कभी दर्द, कभी खुशी और कभी कोई पुरानी याद। एक ऐसी आवाज जिसने पिछले कई डेकेड्स में हिंदी फिल्म म्यूजिक को अपने अलग अंदाज से खूबसूरत बनाया है। आज बात हो रही है सोनू निगम की।

0: जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में जन्मे सोनू निगम ने बहुत छोटी सी एज में सिंगिंग शुरू कर दी थी। सिर्फ 4 साल की एज में वो अपने फादर सिंगर अगम कुमार निगम के साथ स्टेज पर गाने लगे थे, और जिस गाने से उन्होंने अपने फादर के साथ परफॉर्म करना शुरू किया वो था मोहम्मद रफी साहब का आइकॉनिक सॉन्ग क्या हुआ तेरा वादा। शायद वहीं से एक म्यूजिकल जर्नी शुरू हुई जो आगे चलकर उन्हें इंडियन प्लेबैक सिंगिंग के सबसे पहचाने हुए नामों में ले गई। बाद में सोनू निगम मुंबई आए, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली और धीरे धीरे प्लेबैक सिंगिंग में अपनी जगह बनाई। उनकी आवाज की सबसे खास बात है उनकी वर्सेटिलिटी। रोमांटिक सॉन्ग हो, इमोशनल नंबर हो, क्लासिक टच हो, डिवोशनल म्यूजिक हो, गजल हो, कवाली हो, पॉप या रॉक हो, सोनू ने अलग अलग स्टाइल्स में अपनी आवाज का जादू दिखाया है। इसी वर्सेटिलिटी की वजह से उन्हें अक्सर मॉडर्न रफी भी कहा गया, क्योंकि मोहम्मद रफी साहब उनके म्यूजिकल आइडल्स में से एक रहे हैं। चलिए आज के कलाकार के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सोनू निगम की बहुत ही मेमोरेबल एक गीत के साथ, फिल्म रेफ्यूजी से, जो कि रिलीज हुई थी 2000 को। अलका याग्निक के साथ उनका ये गाना है, सुनते हैं ऐसा लगता है।
1: कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें।

दोस्तों, सोनू निगम की जर्नी सिर्फ हिंदी तक लिमिटेड नहीं रही। उन्होंने कन्नड़ा में भी अपने बहुत सारे गाने गाए हैं और बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, आसमिस, मलयालम, गुजराती, भोजपुरी, नेपाली, ओडिया, मणिपुरी और कई दूसरी लैंग्वेजेस में भी अपनी आवाज दी है। मतलब लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, इमोशन समझने और आवाज से उस इमोशन को लिसनर तक पहुंचाने की उनकी एबिलिटी उनकी सबसे बड़ी

स्ट्रेंथ्स में से एक है और उनकी जर्नी में अवार्ड्स भी आए हैं। कल हो ना हो के लिए उन्हें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर मिला। फिल्म फेयर और आईफा जैसे अवार्ड्स भी उनके करियर का हिस्सा रहे हैं। 2022 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। लेकिन अवार्ड्स और अचीवमेंट्स से अलग एक सिंगर की असली पहचान उसके गाने हैं। और सोनू निगम के गाने तो हम सबकी यादों का हिस्सा है। तो चलिए इस खास महफिल में एक और गीत सुनते हैं। हम सुनेंगे दिल ने ये कहा है दिल से, जिन्हें लिखा है समीर ने, संगीत के निर्देशक है नदीम सैफी और श्रवण राठौर।

दोस्तों, सोनू निगम की आवाज में एक अलग ही सॉफ्टनेस है और आज के इस खास महफिल में हम सोनू निगम के करियर के अलग अलग फेसेस से गुजरेंगे। उनके रोमांटिक सॉन्ग्स, इमोशनल नंबर्स, एनर्जेटिक ट्रैक्स और कुछ ऐसे गाने भी जो शायद आपको पुराने यादों में ले जाए। चलिए हम सुनते हैं फिल्म तुमसे अच्छा कौन है का ये गीत, तुमसे अच्छा कौन है।

0: तो दोस्तों इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं हमारे आज के कलाकार के कार्यक्रम के अंत में। अब आप सुनेंगे निशी श्रोताओं का कार्यक्रम निशी भाषा में समाचार सिर्फ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के हर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। तो बने रहिए हमारे साथ।
1: आकाशवाणी ईटानगर पोकुमा प्रापोल का आलो लुप नान दून उरुम का कने बाजे रेम तार मेलम आलम मेल सुरुंग निसे आउम आर मोलंजी ग्रेम तानगे दे ताचोब सुरुंग शिपुयम तापा चोरे जब जरन शी नर्म आकोम हर पुबाबला अपग्रेडेड ITI लोकल अलाहिक ला प्रधानमंत्री स्किलिंग और एम्प्लॉय एलिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन PM सितु में नाम हम इन्हीं गोब रुपए के कुबा हम में पादो ओकसोक PM सेतु स्कीम का मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ओक इंटरप्रेन्योरशिप का मनीग फ्रापोल का आलो लुप नानलो लांच मोलंजिप कुब ओक सरकार का रेगनम इंडस्ट्री गत ने आलिया मोदबला ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपग्रेड मोदब ओक कुदु काम रिग पाग देन गत ने आलव मोलंबुलन गग्रिक ला डिमांड ड्राइवन कोर्स हम प्रमोट मोदकुब सोक रिगो मेंगो हम रमेनरेप गपकुम में पाता तो सिन्यू एशियन गेम्स लो भारत अलब रिमिसी ग्रीक ला एपनान फ्लेस लो आग्रे ला खुदू ला अचम्पीन को ला अंग मेडल को पाकुं पुकुनम सो गोल्ड मेडल चेम्यू को ला आखेन गो सिल्वर मेडल चेम्यू को ला कन गो और ब्रॉन्ज मेडल चुमुं को ला कन गो बपान्या पुकुनम खर में पादो अशोक गेम्स हम रिचुम रिका गर्ग आलो लो भारत ग एज जानता हम नागोया लो इर उपुख हम अलब आवला कुकुन निरु दांदा ये तोर्चा गला रेग्रिकन ओक सोक गेम्स हम रिजुप गर्ग उरुम लो आत आत ग ट्रेडिशन हम कातम ग ग्रीक ला केला दोला रेने गदह प्रेद में नाम हम सोतम गग्रे ला सोक गेम्स हम रिचुम गमरिकने ओक आचिया नागोया एशियन गेम्स 2026 हम होता एनी दुरिया गोब रिका मिस कुनाम ग कुक लो सुरुम रिचुम गर कुने हम में पाता दो अब आसे हम आलब मुलन या ग्रिक ला नुंग नाम पो हम तगन नाम ते लोक रिग ग्रिक ला कोपी नुंग मोन गद ने पुनाम पानाम हम आलब कुपा पापा मधुकुब अरुणाचल प्रदेश ते लो कोफी नुंग ग पले लो आलब रिलन दागलन गद कुका हम ला कोपी ग पले लो रिलन दागलन गन गद ने अरुणाचल प्रदेश ते के चीफ मिनिस्टर ने पेमा कांतो ये जाप कुम हम में पादो ओक मोर ग पा आरोह हिल्स टू काफ कॉपी

फैमिली प्रोग्राम का हम सुनेंगे एनीमिया और प्रेगनेंसी के बारे में डॉक्टर बीती तोको के साथ। तो आशा करते हैं कि आप इस कार्यक्रम से कुछ महत्वपूर्ण सीख पाएंगे।

0: बेसिकली एनीमिया का जो लक्षण होता है, जैसे कि किसी भी इंसान को अगर एनीमिया होता है तो उसको कमजोरी महसूस होने लगता है, वो अपने कामकाज में ध्यान नहीं दे पाता है, थकान महसूस होता है। तो अगर वो शुरुआत में ऐसे महसूस होता है, लेकिन जैसे ही एनीमिया थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मतलब खून की मात्रा में हीमोग्लोबिन और भी कम घटने लगता है, तो उस हिसाब से उनका जो सिम्टम्स और बढ़ने लगता है, जैसे सांस फूलने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, चल फिर नहीं सकता है, अपने घर के कामकाज नहीं कर पाते हैं, और ज्यादा अगर एनीमिया बढ़ता है तो शरीर में सूजन आ जाता है, क्योंकि फ्लूड जो है एस्केप होने लगता है, और उसके बाद में पूरा शरीर सूज जाता है, चेहरा भी सूज जाता है, मतलब फूलने लगता है, और फिर चलने फिरने में तकलीफ होने लगता है, कामकाज नहीं कर पाते। तो इस तरीके का जो है लक्षण देखने को मिलता है।
1: जी, इसके होने के कारण आप से हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: एनीमिया जो है, अगर हम देखते हैं स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है एंड स्पेशली हमारा जो देश भारत है, इसमें बहुत कॉमन है। सर्वे में देखा गया है कि ऑलमोस्ट 70-80% जो है लड़कियां जो है एनीमिया से पीड़ित है, चाहे वो माइल्ड फॉर्म में हो या मॉडरेट फॉर्म में हो। लेकिन एनीमिया जो है काफी कॉमन एक कंडीशन है इंडिया में, क्योंकि एक तो इससे होता है कि आपका डाइटरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं हो पाते, क्योंकि खाने पीने से ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है, और क्योंकि ज्यादातर लोग वेजिटेरियन होता है तो वेजिटेरियन डाइट में जो है हीमोग्लोबिन जो हीम होता है, आयरन जो होता है वो बहुत कम पाया जाता है कंपेयर टू नॉन वेज डाइट है। और ये एक हम कह सकते हैं कि एक विशियस सर्कल है, क्योंकि जो ये लड़कियां जो एडोलेसेंट लड़कियां अगर एनीमिक होते हैं और शादी करती है आगे जाके, तो उनके शरीर में ऑलरेडी एनीमिया जो है, मतलब हीमोग्लोबिन स्तर जो कम होता है, और अगर ये एनीमिक लड़कियां जो प्रेग्नेंट होते हैं, तो अगर उनका जो प्रेगनेंसी के दौरान हम इंटरवेंशन नहीं करते हैं तो वो एनीमिक बच्चों को पैदा करती है, तो यही बच्चे एनीमिक बच्चे आगे जाके फिर एनीमिक मदर बनते हैं। ये एक विशियस साइकिल है जिसको हमें तोड़ना है और हमको इंटरवीन करने की बहुत जरूरत।
1: तो अगर एनीमिक है कोई लेडी तो उसे प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है?
0: वैसे प्रेग

0: कंसीव होने में प्रॉब्लम नहीं होगा अगर किसी को एनीमिया है तो भी, लेकिन एनीमिक जो लेडी है कंसीव करने के बाद में बच्चे को और माँ को प्रॉब्लम होने की चांसेस ज्यादा रहता है
1: कंसीव करने के बाद.
0: राइट.
1: तो कैसे क्या ध्यान रखना चाहिए अगर किसी कोई एनीमिक है और उसने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, उसके बाद उसको किस तरह का ध्यान रखना चाहिए?
0: सबसे पहले तो जैसे ही एक महिला को पता चलता है कि उसको प्रेग्नेंट है तो उनको जो है जाके नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर में अपना रजिस्ट्रेशन करवानी है. तो रजिस्ट्रेशन का समय में उनका कुछ खून की जांच किया जाता है जिसमें हीमोग्लोबिन का भी टेस्ट होता है. तो अगर हीमोग्लोबिन लेवल सही है तो बहुत अच्छा है, लेकिन हीमोग्लोबिन टेस्ट करने से सिर्फ किसी को मालूम नहीं होता कि उसको एनीमिया है कि नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी ऐसा एक कंडीशन है जहां पे हीमोग्लोबिन जो रिक्वायरमेंट है, आयरन रिक्वायरमेंट है, वो ज्यादा बढ़ जाता है. क्योंकि आयरन जो है अब माँ को भी जरूरत है और बच्चे को भी जरूरत है, ताकि फॉर द बेस्ट हेल्थ कंडीशन बोथ मदर एंड चाइल्ड के लिए जरूरत होता है. तो इसमें जरूरी है कि आयरन स्टोर जो है सही रहे, और मेनली जो आयरन स्टोर होता है वो मसल में और टिश्यूज में जो है स्टोरेज रहता है. तो कई बार शरीर में अगर स्टोरेज कम भी हो जाता है तो ब्लड जो सर्कुलेटिंग ब्लड जो, क्योंकि बॉडी में एक सर्कुलेटिंग ब्लड सिस्टम होता है, तो वहां पे जो है आयरन जो हीमोग्लोबिन जो है सही स्तर अगर दिखा भी रहा है, लेकिन हो सकता है कि जो टिश्यू स्टोर है उसमें कमी हो. तो इसलिए ये WHO की गाइडलाइन है कि अगर आपके हीमोग्लोबिन लेवल कम नॉर्मल भी हो, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग 11 ग्राम परसेंटेज को लेता है, उससे कम नहीं होना चाहिए, तो उसमें भी आपको आयरन जो है सप्लीमेंटेशन की जरूरत है. तो जैसे ही प्रेग्नेंट होता है महिला को सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाना है, और रजिस्ट्रेशन के बाद में हीमोग्लोबिन की टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, और उसके बाद उसको एटलीस्ट 100 टैबलेट्स, अगर उसका नॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो 100 टैबलेट्स आयरन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेना बहुत जरूरी है.
1: अच्छा, नॉर्मल अगर हीमोग्लोबिन लेवल है फिर भी लेना,
0: फिर भी लेना जरूरी है,
1: क्योंकि बहुत सारे तो लापरवाही होती है कि नहीं लेती है. तो प्रेग्नेंट लेडी और अगर कोई एनीमिक है तो उससे अजन्मे जो शिशु जो बच्चा जो जन्मा ही नहीं है उसे किस तरह का खतरा हो सकता है पर्टिकुलर?
0: सबसे पहले अगर एनीमिक मदर है और मदर जो प्रेग्नेंट है और अगर कोई इंटरवेंशन नहीं करता है तो बच्चे को खून जो है जो खून के स्तर में बच्चे को जो एनीमिया होने की चांसेस रहता है. तो अगर बच्चा भी एनीमिक है तो बच्चा कई बार मिसकैरेज हो जाता है, कई बार जो है अंदर में स्टिल बर्थ हो जाता है. स्टिल बर्थ का मतलब ये होता है कि बच्चा अंदर में ही खराब हो गया, मर गया, क्योंकि उसको ऑक्सीजन जो है प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलता है, तो उसका वजह से जो है बच्चा जो है अंदर में खराब हो गया. इस तरीके से देखने को मिलता है. और या तो स्मॉल फॉर जेस्टेशन, जैसे कि उसका ग्रोथ जो सही नहीं है, जैसे एक लेवल का हिसाब से जैसे कितना मंथ्स हो गया, 7 मंथ्स 8 मंथ्स 9 मंथ्स में बेबी का सर्टन वेट होना चाहिए, तो उस वेट कैटेगरी में जो है बेबी जो नहीं पहुंच पाता है, तो उसका वजह से उसको स्मॉल फॉर जेस्टेशन कहता है, तो उससे भी सफर कर सकता है बेबी. और अगर कोई बेबी ऐसा है कि स्मॉल फॉर जेस्टेशन है, छोटा है, साइज में कमजोर है, तो डेफिनेटली वो बहुत सारे जन्म होने के बाद भी बच्चा अगर जिंदा भी रहता है तो भी वो बच्चा जो है मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, क्योंकि शरीर में खून की स्तर लेवल जो है कम है, हीमोग्लोबिन की लेवल कम है, तो उसमें बच्चा जो है स्ट्रेस को, लाइफ का स्ट्रेस को बेयर नहीं कर पाता है, और उसका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है. तो इसीलिए कोई छोटा मोटा बीमारी जो है उसको हर समय में जकड़ लेता है, तो पेरेंट्स को हर समय अस्पताल के दरवाजे को खटखटाना पड़ सकता है, और उसमें फैमिली का इकोनॉमी और टाइम, बहुत सारा चीजें प्रेशर आ जाता है फैमिली को उस बच्चे को संभालने में.
1: तो माल न्यूट्रिशन की शिकार भी हो जाता
0: है. सही सही है.
1: तो जैसे कि आपने बताया था कि प्रेग्नेंट कंसीव करते ही किसी लेडी को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, तो ये रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाए? क्या सभी हॉस्पिटल्स में इंक्लूडिंग प्राइवेट, आजकल क्योंकि ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल तो वहाँ पे भी ये फैसिलिटीज है, या फिर सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स में ही है?
0: रजिस्ट्रेशन देखिए अरुणाचल में देखा जाए तो हमारा तो ऑलमोस्ट 90% जो है गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स हैं. ये हम प्राइवेट क्लिनिक बहुत कम जगह में देखने को मिलता है. प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ मे बी कैपिटल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलता है, लेकिन बाकी सारे जगह में प्राइवेट सेटअप है ही नहीं. तो हमें गवर्नमेंट सेटअप ही है. और कोई भी गवर्नमेंट सेटअप इवन सब सेंटर लेवल पे भी जाए तो रजिस्ट्रेशन वहां पे करने का फैसिलिटीज अवेलेबल है.
1: और जो आयरन की टैबलेट्स देते हैं वो भी
0: हाँ
1: free.
0: वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट 100 टैबलेट्स पर प्रेगनेंसी वो भी अवेलेबल.
1: जी, उसके बाद किस तरह का डाइट लेना चाहिए किसी प्रेग्नेंट लेडी को, खासतौर पे जो एनीमिक है उसे कंट्रोल करने के लिए आयरन?
0: हाँ, अगर कोई पेशेंट कोई महिला जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको पाया जाता है कि उसको एनीमिया है तो उसको 100 टैबलेट्स आयरन से ही काफी नहीं है. उसको जो है ज्यादा जो आयरन की गोली है उसको लेना जरूरी है. और उसमें अलग अलग फैसिलिटीज जैसे है कि अगर बहुत ही सिवियर एनीमिया है, बहुत ही ज्यादा ही उसका खून जो कम है तो खून देने की जरूरत भी पड़ सकता है. और अगर ज्यादा इतना भी एनीमिक नहीं है, मॉडरेट टाइप का एनीमिक है या माइल्ड एनीमिया है तो उनको जो है 100 टैबलेट सिर्फ आयरन नहीं देके उसको ज्यादा डोजेस जो है इंक्रीज करना है. और अगर किसी महिला को ऐसा है कि आयरन की गोली नहीं खा पाते क्योंकि आयरन से भी कई लोगों को साइड इफेक्ट्स बहुत होता है जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है, तो अगर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते तो उनको इंजेक्शंस लेने का भी फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो भी वो ले सकती हैं. और इंजेक्शंस में फायदा ये है कि उनको एक या दो बार ही इंजेक्शन लेना पड़ेगा, बार बार लेने की जरूरत नहीं है. और देन खाने पीने में ध्यान देना बहुत जरूरी है. ऐसा खाना खाना है जहां पे जो है आयरन की कंटेंट ज्यादा हो. अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है महिला तो उसमें तो ईजियर होता है क्योंकि मीट जो होता है एनिमल जो फ्लैश होता है मीट में तो उसमें हीम का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. तो वो जैसे चिकन आइटम, पोल्ट्री आइटम हो गया या जैसे कि कोई भी गोश्त जो मीट है वो खा सकती है और इवन फिश ले सकती है तो उसमें जो है हीमोग्लोबिन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. और जैसे कोई ज्यादातर लोग हमारे यहाँ पे वेजिटेरियन ही होते हैं तो वेजिटेरियन डाइट में ये देखना जरूरी है कि आप कंबाइंड करके जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह ले, स्पेशली पालक है या ऐसे कलर्ड वेजिटेबल्स है जो उसमें ज्यादातर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जैसे बैंगन हो गया या जो कलरफुल है जैसे पम्पकिन हो गया, तो उसमें आपको जो है ज्यादातर आयरन मिलेगा. और प्लस आप हो सके तो जैगरी खाए, गुड़ है वो भी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ आयरन है. और हो सके तो आप आयरन यूटेंसिल्स में खाना पकाए क्योंकि अगर आयरन की यूटेंसिल में खाना पकाए तो आयरन कंटेंट जो है आपका मील का वो बढ़ जाता है. तो ये तरीका है अलग अलग और आयरन को नॉर्मली अगर आप खाना के साथ में खाएं आयरन टैबलेट को तो उसमें एब्जॉर्प्शन कम रहता है, इसलिए आप कोशिश करें कि खाली पेट में ही आयरन टैबलेट को खाएं तो जिससे कि आयरन एब्जॉर्प्शन जो है वो बेटर हो. और ऐसे चीजों के साथ में आयरन टैबलेट को ना खाएं कि उससे एब्जॉर्प्शन कम हो. बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप टी और कॉफी, चाय कॉफी पीते हैं और आयरन टेबलेट साथ में खाते हैं तो उसमें आयरन एब्जॉर्प्शन होने की चांसेस कम रहता है क्योंकि कैफेन और जो टैनिन होता है चाय में तो वो आयरन के साथ में कंबाइंड हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन होने को नहीं देता है. तो ऐसी चीजें खाएं जैसे कि सिट्रिक एसिड जो विटामिन सी होता है तो उसमें सिट्रिक एसिड होता है जो आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है. तो अगर आयरन के साथ में नींबू पानी पी ले आयरन खाने के बाद में खाली पेट में तो उसमें एब्जॉर्प्शन रेट जो बेटर होगा. तो इस तरीके से महिला जो है खाना उना खाने पीने में ध्यान दे तो डेफिनेटली. और वर्म इन्फेस्टेशन अगर है तो डीवर्मिंग करे तो क्योंकि वर्म इन्फेस्टेशन होगा तो उसमें भी काफी आयरन जो ब्लड लॉस होता है कई वर्म इन्फेस्टेशन तो डीवर्मिंग का भी बहुत जरूरी है.
1: अच्छा, डीवॉर्मिंग की टैबलेट्स और साथ में आयरन टैबलेट्स दोनों ही कंटिन्यू?
0: हाँ, दोनों ही ले सकते हैं
1: जी. इससे कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ता?
0: नहीं, ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा डीवॉर्मिंग के साथ में. डीवॉर्मिंग तो एक ही बार खाना होता है, सिंगल टैबलेट है तो आयरन जरूर ले सकते हैं.
1: जी, तो खान पान के अलावा और किस तरह के जो सप्लीमेंट्री तौर पे और कुछ ले सकते हैं वे?
0: हाँ, जैसे हमने कहा कि सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंटेशन तो लेना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे यहाँ में बहुत सारा मिसकंसेप्शंस रहते हैं, मिथ्स रहते हैं। वो महिलाएं सोचती हैं अगर गवर्नमेंट, नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट, WHO पूरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि

0: हम आयरन टैबलेट खाना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन कई महिलाओं को ये एक भ्रम रहता है कि आयरन टैबलेट्स खाएं तो बच्चा बहुत बड़ा होगा, मोटा होगा, तो डिलीवरी के समय में बहुत तकलीफ होगा. तो ऐसा भ्रम जो रहता है, जो कि बिल्कुल भी गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं है. तो आयरन जो है बेसिकली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है और बच्चे उससे मोटा नहीं होता. मोटा बच्चा इसलिए पैदा करते हैं कि कई बार हम लोगों की हमें फूड जो अवेलेबिलिटी जो है काफी बढ़ गया है, और स्पेशली अर्बन एरिया में देखें तो फिजिकल एक्टिविटी मदर का भी बहुत कम है. तो फिजिकल एक्टिविटी प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ये मिला के कि एक नॉट ओनली बच्चे का, मदर का भी वेट गेन जो है बहुत ज्यादा होता है. तो अगर आपको वेट जो है नॉर्मल फॉर जेस्टेशन वेट रखना है, आप नॉर्मल एक्टिविटी करते रहे और खाना जो है बैलेंस डाइट खाएं, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी ऐसा हो गया है कि बैलेंस डाइट नहीं लेते, ज्यादातर टुवर्ड्स फैटी फूड ज्यादा लेने का ऐसे हैबिट हो गया है, जिसके वजह से वेट बढ़ता है. लेकिन आयरन टेबलेट खाने से बच्चा का वेट जो है ज्यादा होगा ऐसा बिल्कुल भी
1: अच्छा,
0: नहीं.
1: आयरन टेबलेट बच्चे के वेट के लिए नहीं होता, बल्कि मदर के हेल्थ
0: के लिए और बच्चे के लिए प्रॉपर हेल्थ फंक्शनिंग के लिए. क्योंकि अगर एनीमिया होता है मदर को तो डेफिनेटली मदर को प्रॉब्लम होगा और प्लस बच्चे को भी प्रॉब्लम होगा, ब्रेन ग्रोथ में भी असर पड़ता है. तो कई बार ऐसा बच्चे पैदा होता है कि जो आईक्यू इतना ठीक नहीं होता है कि परफॉर्म नहीं कर पाता है अपना स्कूल में, ये सब. तो ये सब जो है हमें कंसेप्शन से पहले ही सोच लेना है कि बिफोर कंसीविंग एनीमिया को पहले ट्रीटमेंट करना है. एंड ड्यूरिंग, अगर कंसेप्शन से पहले नहीं किया उसका इलाज, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए. क्योंकि हम हेल्दी बच्चे हमको चाहिए, ना कि अनहेल्दी बच्चे जो कि हमेशा बीमार हो, जो स्कूल में भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चे हमको पैदा नहीं करना है.
1: जी, तो जैसे कि आपने कहा कि एक लेडी को जो प्रेगनेंसी में जो वेट गेन करती है, तो कितना वेट गेन एक नॉर्मल होता है?
0: ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि उसका बॉडी वेट कितना है. अगर कोई, जैसे कि बीएमआई हम लोग कैलकुलेट करते हैं बॉडी मास इंडेक्स के तौर पर, अगर कोई महिला जो है अंडर वेट है तो उसको एटलीस्ट 12 से 15 केजी जो है वेट गेन करना है अगर अंडर वेट है. नॉर्मल वेट है तो आप 11 से 12 किलो पूरा एंटायर प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स में, जो कि फर्स्ट 3 मंथ्स में तो वेट गेन होता नहीं है क्योंकि उसमें वॉमिटिंग लगता है, कुछ खाने का मन नहीं होता है. तो वेट गेन शुरू होता है 4th मंथ ऑनवर्ड. तो 4th से लेके 9th, बेसिकली जो लास्ट जो 6 मंथ्स होता है उसमें वेट गेन जो है नॉर्मल वेट वालों को 11 to 12 किलो. लेकिन जो ओवर वेट है, ज्यादा ओवर वेट है या ओबीस है, तो उन लोगों को 5-6 किलो वेट गेन ही काफी है, उनको ज्यादा वेट गेन नहीं करना है. तो उसमें उनको अगर ज्यादा वेट गेन करता है तो उसके लिए प्रॉब्लम होता है.
1: जी, और आजकल बहुत कॉमन शिकायत देखी गई है कि स्वेलिंग होती है, तो क्या ये एनीमिक ही इसका वजह है या फिर कुछ और कारण भी हो सकता है जो स्वेलिंग होते हैं आजकल?
0: हाँ, प्रेगनेंसी में थोड़ा सा स्वेलिंग तो कॉमन है क्योंकि वो प्रेशर पड़ता है यूटेरस जो, जहाँ पे बच्चेदानी होते हैं, बच्चा बड़ा ग्रो करता है तो बच्चेदानी भी बढ़ता है. तो वो थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है वेन पे, बेसिकली वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न लाता है हार्ट की तरफ में. तो वेन पे प्रेशर पड़ता है तो थोड़ा सा सूजन हो जाता है पैरों में, डेट इज क्वाइट नॉर्मल. तो ऐसे सूजन जो नॉर्मली हमको शाम को देखने को मिलता है, जो रेस्ट करने के बाद में वो सूजन जो है ठीक हो जाता है. लेकिन अगर एनीमिया का वजह से सूजन है, तो वो सूजन जो अगर आप रात को रेस्ट करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं रहेगा, कि वो कॉन्स्टेंटली जो है स्वेलिंग जो होगा. और ना सिर्फ एनीमिया में देखने को मिलता है, कई बार अलग अलग कंडीशंस होता है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम है किसी का या किसी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में भी हमको स्वेलिंग देखने को मिलता है. और इस तरीके का जो मेडिकल कंडीशंस में जो स्वेलिंग होता है, वो ना सिर्फ पैरों में देखने को मिलेगा, आपको चेहरे पे भी सूजन देखने को मिलेगा. जैसे किडनी प्रॉब्लम है किसी का, तो उसमें भी हमें सूजन देखने को मिलता है, चेहरे पे स्वेलिंग होगा, आपके हाथों में फिंगर्स वगैरह में भी स्वेलिंग देखने को मिलेगा. रिंग जो है पहना है लेडी, तो वो रिंग टाइट हो जाएगा. तो ये सब एक सिम्टम है कि आपका जो स्वेलिंग है वो जो नॉर्मल नहीं है.
1: अच्छा, तो आप संक्षेप में बहुत शॉर्ट में हमारे श्रोताओं को कैसे बताएंगे कि खासतौर पर जो हमारी महिला श्रोताओं को कैसे बताएंगे कि एनीमिक से कैसे बचे, क्या करें?
0: हाँ, मैं महिलाओं को सबसे पहले यही मैं कहना चाहूंगी कि पहले तो वो प्लान करे प्रेगनेंसी को, और प्रेग्नेंट होने से पहले वो देखे कि वो एनीमिक है या नहीं।

0: है, और अगर एनीमिक है तो वो पहले एनीमिया को ट्रीट कराए तो उसके बाद में प्रेग्नेंट हो. तो अगर ऐसा नहीं किया लेकिन प्रेग्नेंट है पता चला तो सबसे पहले खुद को जाके रजिस्टर कराए वहाँ में नियरेस्ट मेडिकल सेंटर में और अपने आप को टेस्ट कराए. अगर हीमोग्लोबिन लेवल ठीक है तो भी आप जो है 100 टैबलेट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन के जरूर लें. और ये ध्यान रखें कि आप जो स्वस्थ रहे पूरा प्रेगनेंसी में और आपका जो बच्चा जो आप जन्म देने जा रहे हैं तो वो भी स्वस्थ तरीके से निकले. तो इसलिए आप अपने स्वस्थ के लिए ध्यान दें और ये कदम उठाए कि आप आयरन की टैबलेट्स लेंगे और खाने पीने में ध्यान रखेंगे और ऐसे चीजें नहीं खाएं जिससे कि आयरन एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो, और ऐसे चीजें खाएं ताकि आयरन एब्जॉर्प्शन बेटर रहे और आपके शरीर में जो आयरन की मात्रा ठीक ठाक रहे. और मैं यही चाहूंगी कि आप हेल्दी रहें और आपके बच्चे हेल्दी हैं.
1: जी मैम, आपका बहुत बहुत थैंक
0: यू.
1: आप श्रोता सुन रहे थे ये कार्यक्रम महिला जगत. आज इस कार्यक्रम में आपने सुना ये भेंट वार्ता, विषय था एनीमिया एवं गर्भावस्था, और हमारे साथ थी तोमो रिबा स्टेट हॉस्पिटल नाहरलगुन के स्त्री रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर पोम्बी तांग तोको.

नमस्कार, ये है आकाशवाणी ईटानगर और आज हम आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ हेल्थ टिप्स देने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे अतिसार के बारे में। अतिसार या डायरिया, इस स्थिति में मनुष्य को बार बार मल त्याग करना पड़ता है। मल बहुत पतले होते हैं, दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। पतले दस्त जिनमें जल का भाग अधिक होता है थोड़े थोड़े समय के अंतर से आते रहते हैं। अतिसार का मुख्य लक्षण और कभी कभी अकेला लक्षण भी विकृत दस्तों का बार बार आना होता है। तीव्र दशाओं में उदर के समस्त निचले भाग में पीड़ा तथा बेचैनी प्रतीत होती है अथवा मल त्याग के कुछ समय पूर्व ऐसी स्थिति पता लगती है। धीमे अतिसार के बहुत समय तक बने रहने से या उग्र दशा में थोड़े ही समय में रोगी का शरीर कृश हो जाता है और जलहास यानी डिहाइड्रेशन की भयंकर दशा उत्पन्न हो सकती है। खनिज लवणों के तीव्र ह्रास से रक्तपूरिता तथा मूर्छा यानी कोमा उत्पन्न होकर मृत्यु तक हो सकती है। अतिसार के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं: अंतड़ियों में अधिक द्रव जमा होना, अंतड़ियों द्वारा तरल पदार्थ को कम मात्रा में अवशोषित करना या अंतड़ियों में मल के तेजी से गुजरने की वजह से भी ये स्थिति पैदा हो सकती है। डायरिया की दो स्थितियां होती हैं, एक जिसमें दिन में 5 बार से अधिक मल त्याग करना पड़ता है या अत्यधिक पतला मल आता है, इसे डायरिया की गंभीर स्थिति कहा जा सकता है। अनुपातिक डायरिया में व्यक्ति सामान्यतः जितनी बार मल त्यागता है उससे कुछ ज्यादा बार और कुछ पतला मल त्यागता है। उग्र अतिसार, उग्र यानी अक्यूट अतिसार का कारण प्रायः आहार जन्य विष, खाद्य विशेष के प्रति असहिष्णुता या संक्रमण होता है। कुछ विषों से भी जैसे संख्या या पारद के लवण से दस्त हो सकते हैं। जीर्ण यानी क्रॉनिक अतिसार बहुत कारणों से हो सकता है। अमाशय अथवा अग्नाशय ग्रंथि के विकास से पाचन विकृत होकर अतिसार उत्पन्न कर सकता है। आंत्र के रचनात्मक रोग जैसे अबूर्द संकीर्ण यानी स्ट्रिक्चर अतिसार के कारण बन सकते हैं। जीवाणुओं द्वारा संक्रमण तथा जैव विषों यानी टॉक्सिन्स द्वारा भी अतिसार का खतरा उत्पन्न हो सकता है। इन जैव विषों के उदाहरण है रक्त विषाक्तता तथा रक्तपूरिता यानी यूरेमिया। कभी निस्रावी यानी एंडोक्राइन विकार भी अतिसार के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे एडिसन के रोग और हाइपरथायरॉयडिज्म। भय, चिंता या मानसिक व्यथाएं भी इस दशा को उत्पन्न कर सकती हैं, तब इसे मानसिक अतिसार कहा जा सकता है। चिकित्सा, डायरिया उग्र या जीर्ण क्रॉनिक हो सकता है। डायरिया उग्र या जीर्ण यानी क्रॉनिक हो सकता है और प्रत्येक प्रकार के डायरिया के भिन्न कारण और इलाज होते हैं। डायरिया से उत्पन्न जटिलताओं में निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट खनिज असामान्यता और मलद्वार में जलन शामिल हैं। निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन को पीने वाले रिहाइड्रेशन घोल की सहायता से कम किया जा सकता है और आवश्यक हो तो अंतःशिरा द्रव्य की मदद भी ली जा सकती है। चिकित्सा के लिए रोगी के मल की परीक्षा करके रोग के कारण का निश्चय कर लेना आवश्यक है, क्योंकि चिकित्सा उसी पर निर्भर है। कारण को जानकर उसी के अनुसार विशिष्ट चिकित्सा करने से लाभ हो सकता है। रोगी को पूर्ण विश्राम देना तथा हल्का खाना देना अत्यंत आवश्यक है। उपयुक्त चिकित्सा के लिए किसी विशेषज्ञ चिकित्सक का परामर्श उचित है। तो आज हमने आपको जानकारी दी अतिसार के बारे में। हमें आशा है कि आपको इन हिंस से जरूर मदद प्राप्त होगी। आगे ऐसी ही हिंस हम आपको लगातार देते रहेंगे। नमस्कार।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल की बात।
1: श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम अपना गीत का, तो चलिए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: गीत किसी भाषा या प्रांत की सीमा नहीं जानता। संगीत तो एक एहसास है जो हर दिल को कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है, कभी मस्ती के सागर में तो कभी यादों के भंवर में सैर कराता है। जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। एक बार फिर कार्यक्रम अपना गीत के साथ मैं हूँ आपका रेडियो साथी गैर अतर। तो चलिए संगीत के इस खुशनुमा सफर का आगाज करते हैं एक ईदू गीत से, जिसे लिखा है काफुली पुलू ने और आवाज है मेडिको मेंजो की।

इश्क में इंसान फना हो जाते हैं। उन्हीं को सोचने में और उन्हीं को चाहने में खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। हर घड़ी हर पल नजरें उन्हीं को ढूंढती हैं। हर चेहरे में वो नजर आती है, फिर क्या, बस इसी तरह बर्बाद हो जाते हैं। तभी तो एक तरफा प्यार में खतरा ज्यादा है। श्रोता, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, ताकम दादो तालोम की आवाज में निशी गीत।

नोकपान हांगसिक की आवाज में आप सुन रहे थे तुत्सा गीत। श्रोता आनंद ले रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के गीतों का कार्यक्रम अपना गीत के अंतर्गत, जो आप तक पहुंच रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और हमारे श्रोता हमें लाइव सुन सकते हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी।

ससुरा की आवाज में ये था अपतनी गीत। हर पल ये दिल तुम्हें याद करता है, न जाने कब तुम इस दिल के एहसासों को अपनाओगी। तुम्हारे साथ बिताए उन पलों की यादों से ही मैं खुश हो जाता हूँ, मुझ में नयापन आ जाता है। बस तू हमेशा के लिए दूर मत चली जाना। जी हाँ श्रोताओं, ये गीत है गालो भाषा में और आवाज है स्वर्गीय मार्तो कामदा की।

वांगकप वांगसु द्वारा गाई इसी वांगचो गीत के साथ अपना गीत कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। एक और नए अंक के साथ हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने

0: And that was today's playlist. I hope these upbeat tracks brought some extra energy and excitement to your day. Music is meant to be enjoyed, and this song certainly knows how to keep the good vibes. So stay tuned tomorrow, same time, same station, for great music ahead. This is Coco signing off. Keep listening to Akashvani Itanagar. Bye bye.
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वेस्टर्न मेलोडीज का कार्यक्रम तेची कोको लोलो के साथ, और वक्त है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का। चलिए दोस्तों, भूले बिसरे गीत में हम सुनेंगे वो सारे गीत जो एक समय हमारे रोजमर्रा का एक हिस्सा रहा करते थे, लेकिन आज समय बीतता हुआ गया और हम इन गीतों को धीरे धीरे भूलने लगे। और आज भूले बिसरे गीत में उन्हीं सारे गीतों को चलिए फिर से दोबारा सुनते हैं और हमारे यादों को ताजा करते हैं। सबसे पहला गीत हम सुनेंगे फिल्म घर का, फिर वही रात आई, किशोर कुमार की आवाज में।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, भूले बिसरे गीत में चलिए अब सुनते हैं अगला गीत। हम सुनेंगे फिल्म बालिका वधू से। ये गीत बड़े अच्छे लगते हैं, जिसे गाया है अमित कुमार ने। श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां बात होती है दिल से दिल तक। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते हैं कुछ भूले बिसरे गीत।
2: जब हम सब बड़े हो जाएंगे तो देखा करेंगे, पिताजी, माँ, कमल,

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
4: दोस्तों आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत, और चलिए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म गोलमाल से किशोर कुमार की आवाज में, आने वाला पल जाने वाला है। श्रोताओं कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम आने से पहले ही मिस करने लगते हैं, और इसी फीलिंग को, इसी भाव को इस गीत में बहुत ही सुंदर तरीके से पिरोया है गुलजार ने। चलिए सुनते हैं ये गीत, आने वाला पल जाने वाला है।

श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत का हमारा ये प्यारा सा कार्यक्रम। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म मेरे सनम से, जो कि रिलीज हुई थी 1965 को। हम सुनेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में हमदम मेरे मान भी जाओ। अगर दोस्तों आपकी प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपसे रूठी हुई है तो ये गीत उन्हें डेडिकेट कीजिए और उन्हें जरूर मनाइए। चलिए सुनते हैं हमदम मेरे मान भी जाओ।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर।

0: और श्रोताओं, इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं हमारे आज के तीसरे और आखिरी प्रसारण सभा के अंत में। अभी तक आप सुन रहे थे भूले बिसरे गीत का कार्यक्रम और अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। आशा करते हैं कि आपका आगे की रात अच्छी रहेगी, सुहानी रहेगी। अपने फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कीजिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा HPT में मौजूद थे अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ती तांगजांग एवं तकनीकी अभियंता PB दियोरी और मैं अपनी आवाज के साथ आपकी आरजे बिंदुंग दिंदो माज। तो दोस्तों, गुड नाइट और शब बखेर।
1: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का

0: ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित रूपक मन के मौसम उम्र के साथ। आलेख डॉक्टर बानी आनंद, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक मन के मौसम उम्र के साथ।
1: सूरज हर सुबह लगभग एक ही जगह से उगता है, लेकिन हर उम्र में उसकी रोशनी एक जैसी नहीं लगती। कभी वही सुबह एक नई शुरुआत लगती है, तो कभी वही सुबह एक बहुत लंबा दिन।
2: उम्र बढ़ती है तो शरीर में बदलाव दिखाई देते हैं, बालों में सफेदी, चाल में धीमापन, चश्मे का नंबर, दवाइयों की संख्या। लेकिन कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिन्हें कोई एक्सरे नहीं पकड़ता।
1: काम से रिटायर होने के बाद खाली हुआ समय, बच्चों के घर से चले जाने के बाद खाली हुआ कमरा, जीवन साथी के जाने के बाद खाली हुई कुर्सी, और धीरे धीरे कम होती बातचीत के बीच मन में पैदा हुई एक खामोशी।
2: हम अक्सर पूछते हैं उम्र कितनी हो गई, लेकिन शायद एक और सवाल पूछा जाना चाहिए, उम्र के इस पड़ाव पर मन कैसा है? क्योंकि उम्र बढ़ना केवल शरीर की कहानी नहीं है,
1: ये रिश्तों की कहानी है, भूमिकाओं की कहानी है, पहचान की कहानी है, और साथ ही बिछोह की कहानी है, और इन सबसे बढ़कर ये सुने जाने की कहानी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में हम इसी अनकहे संसार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
2: दिल्ली स्थित एक प्राइवेट ओल्ड एज होम से कुछ आवाजें और कुछ आवाजें सुदूर बिहार से।
3: मेरा नाम आशुतोष मुखर्जी, इलाहाबाद से आए हैं। हम इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री में ऑफिसर थे, रिटायर हो गए। म्यूजिक इज माय हॉबी, बोंगो कॉन्गो। हमारा पूरा ऑर्केस्ट्रा था वहाँ। इलाहाबाद में अब कोई है ही नहीं मेरा। हमारे दो डॉटर्स हैं, दोनों ऑस्ट्रेलिया में हैं। लड़कियों की शादी हो गई, वाइफ डेथ हो गई।
4: माय नेम इज कृष्णा मिश्रा। आई यूज्ड टू लिव विद माय डॉटर, बट शी हैज एक्सपायर्ड। आई केम हियर, आई फील वेरी लोनली। जनरली आई लाइक टू वॉच टीवी and like to story book.
5: मेरा नाम है विजेंद्र सिंह शेखावत, आर्मी से रिटायरमेंट हूँ चौधर से, और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। उनकी देख रेख जैसे रात पूरा तारी बीमारी होती है, 10 का मेरा स्टाफ है। नहीं ऐसे को नहीं, सभी आते हैं, एक दो दिन तो उनका मन नहीं लगता, फिर यहाँ पर माहौल में डल जाते, सब खुश रहते, एक साथ बैठते यहाँ पर, टीवी देखते हैं, न्यूज पेपर देखते हैं, यहाँ कीर्तन भाव होते हैं हफ्ता में एक दिन, कॉलेज के स्कूल के स्टूडेंट आते हैं, वो डांस करते हैं, तमल्ला खिलाते हैं, अंताक्षरी करते हैं, गाने सुनाते हैं, तो उनका अच्छा टाइम पास हो जाता है।
6: मेरा नाम बेबी सिन्हा है, मैं खगड़िया चित्रकूट नगर डीएवी रोड से हूँ। मैं यहाँ पर अपने लड़का के नाम से स्कूल खोली हुई हूँ। मैं अकेले अपने घर में रहती हूँ, तो स्कूल खोलने का मकसद मेरा यही था कि बच्चे के बीच में रहूंगी, मैं खुश रहूंगी।
7: मेरा नाम श्यामा कांति सिन्हा है, मेरी उम्र 69 बरस है। मैं बिहार शरीफ में रहती हूँ अपने पति के साथ अकेले। मैं पहले सर्विस करती थी, अब मैं रिटायर हो गई हूँ, अकेले तो नहीं रहती हूँ। कभी कभी बहुत मुश्किल होती है, गिर जाती हूँ मैं भी, मेरा पति भी। पूरे दिन अकेले काटती हूँ, पेपर पढ़ती हूँ, कभी मोबाइल देखती हूँ। मेरे बच्चे हैं जो दूर में रहती हैं, दो बेटियाँ, उनको आना भी मुश्किल है। मैं सोचो के कभी कभी रोना आता है, रोते रहती हूँ।
8: धुंधले दर्पण में गालों के अरू

0: दस्तखत कर गई मैं भुलावे कऊ बटन हिमल तारा कौन से रास्ते जान किस मोड़ पर कब बिछड़ कर मेरा बाकपन रह गया पत्ते झरने लगे बूढ़ा बरगद हुआ बस गए उम्र का आकलन रह गया पत्ते झरने लगे बूढ़ा बरगद हुआ पत्ते झरने लगे बूढ़ा बरगद हुआ।
1: भारत को लंबे समय तक युवा देश के रूप में देखा गया, लेकिन अब भारत की जनसंख्या की तस्वीर बदल रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की एलएसए इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी का हिस्सा 2021 में लगभग 10.1% अनुमानित था और 2031 में 13.1% तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था।
2: और इससे आगे की तस्वीर देखें तो UNFPA की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी 2022 के 10.5% से बढ़कर 2050 में 20.8% होने का अनुमान है। यानी आने वाले दशकों में भारत में हर 5 लोगों में लगभग एक व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो सकता है।
1: ये सिर्फ जनसंख्या का बदलाव नहीं है, ये परिवार की संरचना बदलेगा, स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत बदलेगा, सामाजिक सुरक्षा की जरूरत बदलेगा और मानसिक स्वास्थ्य की हमारी समझ को भी बदलना होगा। क्योंकि सवाल ये नहीं कि हम कितने लोगों को लंबी जिंदगी दे पाएंगे, सवाल ये भी है कि क्या हम उस लंबी जिंदगी को अर्थपूर्ण, सम्मानजनक और सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ बना पाएंगे। कई वर्षों तक भारत में और वर्तमान में दोहा कतर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में सेवाएं दे रहे डॉक्टर नवाब खान कहते हैं,
3: केयर सिस्टम है ना इंडिया में चेंज हो रहा है। पहले एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, वो अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में तब्दील हो रहा है। केयर टेकर्स थे पहले के कंपैरिजन में कम हो रहे हैं। दूसरा है कि जो चीजें उनके अंदर होती है, एंजाइटी है, जो लोनलीनेस है, जो फॉरगेटफुलनेस है, डिमेंशिया से रिलेटेड चीजें होती है, जो उनका लॉस है, जिससे लॉस ऑफ पार्टनर है, इस चीजों के लिए। तो बेसिकली होता क्या है कि इंसान जब हार जाता है तो उनका गुस्सा खुद की तरफ होने लगता है, लेकिन जब गुस्सा बाहर की तरफ होता है तो फिर वो फाइट की स्पिरिट में दिखता है कि अपने राइट्स के लिए लड़ना, स्पेस के लिए लड़ना, अपने इमोशनल कनेक्टिविटी के लिए लड़ना, मतलब आई एम समथिंग, ये सेंस हो जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी इसको फैमिली वाले अलग वे में ले लेते हैं कि अच्छा इस उम्र में इतना ईगो दिखा रहे हैं। ये एक ब्लेसिंग है एक्चुअली, जिसको फैमिली वाले को समझना ही चाहिए कि नहीं, स्टिल ही इज हैविंग फाइटिंग स्पिरिट, द लाइफ इज देयर। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप कितने साल तक जीते, इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि इन सालों में जिंदगी कितनी थी, वो जिंदगी को भरने की जरूरत होती है एक्चुअली।
2: पूरी जिंदगी किसी व्यक्ति की पहचान कई भूमिकाओं से बनती है। कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, किसान, व्यापारी, गृहिणी, माता पिता, फिर एक दिन नौकरी या सेवा समाप्त होती है और उसके साथ सिर्फ वेतन या खुद की भूमिका ही नहीं ठहरती, कभी कभी दिनचर्या भी रुक जाती है। सहकर्मियों से रोज का मिलना रुकता है, निर्णय लेने की आदत बदलती है और व्यक्ति के मन में एक प्रश्न जन्म लेता है, अब मैं कौन हूँ।
1: ये प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है। व्यक्ति को अपने जीवन में उद्देश्य, सामाजिक संबंध और अपनी भूमिका का एहसास भी चाहिए।
2: अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना एक ही बात नहीं है। कोई व्यक्ति परिवार के बीच भी रहकर भीतर से बहुत अकेला महसूस कर सकता है और कोई व्यक्ति अकेला रहकर भी अपने जीवन से संतुष्ट हो सकता है।
4: मेरा नाम दशरथ भगत है, मैं प्लस टू विद्यालय स्थानीय खगड़िया स्टेशन रोड से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं अभी अकेले घर में रहता हूँ। मेरी पत्नी शिक्षिका थी, 2013 में एक्सपायर कर गई। तीन बच्ची है, तीनों बच्ची की शादी हो गई है। एक लड़का है, वह बीटेक करके बीपीएससी की तैयारी करता है, लेकिन घर में मैं अकेला रहता हूँ। अकेलापन तो अनुभव होता है, लेकिन साथी लोग हैं, इसलिए हम लोग का समय बड़ी आसानी से कट जाता है। थोड़ा आध्यात्मिक होने के कारण और विभिन्न संस्था से जुड़े रहने के कारण मेरा पर्सनल लाइफ ठीक है। बुनियादी केंद्र में भी हम लोग का एक मनोरंजन होता है, मैं खुश हूँ अपने लाइफ से।
2: WHO के अनुसार दुनिया में लगभग हर 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति लोनलीनेस का अनुभव करता है। वृद्ध लोगों में लगभग 11.8% लोनलीनेस का अनुमान दिया गया है। WHO ये भी रेखांकित करता है कि लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन का संबंध मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्गजीविटी से है। और सोशल आइसोलेशन इससे अलग अवधारणा है। यहाँ व्यक्ति के सामाजिक संपर्कों और रिश्तों की संख्या और गुणवत्ता महत्वपूर्ण हो जाती है।
1: कभी कभी कितने लोग हैं ये समस्या नहीं है, बल्कि कितने लोग हैं जिनसे मन की बात की जा सकती है। यही वो जगह है जहाँ मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। डॉक्टर नवाब खान कहते हैं,
3: ये चीज जो स्टडीज से रिफ्लेक्ट हुई है, मैक्सिमम स्ट्रेस अपने पार्टनर के खोने से होता है, बाकी स्ट्रेस सब उसके नीचे आते हैं। इवन अगर जो लोग ओल्ड एज में रहते हैं, उनके दोस्त हैं और उनकी नजरों के सामने अगर कोई जाता है, दे फील वेरी वेरी सैड एंड बैड। अल्टीमेटली उनको ये फील होता है कि मेरा नंबर आ रहा है। जिस वक्त इंसान को ये फीलिंग होने लगे कि मेरा नंबर आ रहा है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है उसके पास, इनोवेशन खत्म हो जाते हैं, एक दो जील जो जीरे की होती है वो खत्म हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। हर कम्युनिटी में उम्र के साथ जो स्पेसिफिक चैलेंजेस है वो आते ही आते हैं। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कुछ कर ले, तब भी एक जो कम्युनिटी का रोल होता है, जो एक रिलेटिव्स का रोल होता है, जो एक दोस्तों का रोल होता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
2: भारत में पारिवारिक संरचना भी बदल रही है। माइग्रेशन बढ़ा है, शहरीकरण बढ़ा है, परिवार छोटे हुए हैं, बच्चे शिक्षा और रोजगार के लिए दूसरे शहरों या दूसरे देशों में चले जाते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ सोशल सपोर्ट की आवश्यकता कम नहीं होती।
1: इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार जब वृद्ध लोग अपने वयस्क बच्चों के साथ नहीं रहते तो लिविंग अरेंजमेंट्स में जेंडर डिफरेंसेस दिखाई देते हैं।
2: यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, उम्र के बहुत आगे के पड़ावों पर विडोहुड और अकेलेपन का जोखिम महिलाओं में अधिक हो सकता है।
1: UNFPA की रिपोर्ट विशेष रूप से एजिंग के फेमिनाइजेशन की ओर ध्यान दिलाती है, यानी वृद्ध आबादी में महिलाओं का बढ़ता अनुपात और उनके साथ जुड़ी आर्थिक या सामाजिक वल्नरेबिलिटीज।
2: इसीलिए सीनियर सिटीजन को एक समान समूह मानकर नहीं देखा जा सकता। एक अकेले रहने वाले पुरुष का अनुभव अलग हो सकता है, महिला का अलग, ग्रामीण बुजुर्ग का अलग और शहर में अकेले रहने वाले वृद्ध का बिल्कुल ही अलग। और आर्थिक रूप से सुरक्षित व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अनुभव भी आर्थिक रूप से असुरक्षित व्यक्ति से बिल्कुल अलग हो सकता है। लंबे समय से भारत में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर।
5: भारत में बुजुर्गों की मानसिक सेहत और इलाज से जुड़े आंकड़े गंभीर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज यानी IIPS के देश के सबसे बड़े सर्वे जो अब तक हुआ है, लॉन्जिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया यानी LASI LASI की रिपोर्ट के मुताबिक, और आपको बता दूं कि बुजुर्गों की मानसिक सेहत से जुड़े ये आंकड़े मुख्य रूप से LASI वेव 1 रिपोर्ट से लिए गए हैं। इन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 6 जनवरी 2021 को जारी किया था। ये आंकड़े देख लेने चाहिए, इससे हमें समस्या कितनी गंभीर है और कितना ज्यादा और काम किया जाना बाकी है इससे पता चलता है। तो आंकड़े इस तरह हैं कि भारत में लगभग 20% वरिष्ठ नागरिक 60 साल से जिनकी उम्र ज्यादा हो किसी न किसी तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्या या मनोरोग से जूझ रहे हैं। डिप्रेशन यानी अवसाद बुजुर्गों में ये आम समस्या हो गई है। आंकड़े देखें तो लगभग 41.7% बुजुर्गों ने किसी न किसी स्तर पर

0: और डिप्रेशन के लक्षणों की शिकायत की है, ये रिकॉर्ड में है। इसके अलावा डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी, भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 7.4 बुजुर्ग, ये संख्या बैठती है लगभग 88 लाख। अब महिलाओं में ये खतरा ज्यादा रहता है, बुजुर्ग पुरुषों के मुकाबले बुजुर्ग महिलाओं में मानसिक तनाव और डिप्रेशन की दर ज्यादा देखी गई है। इसकी जो खास वजह है वो एकाकीपन और आर्थिक निर्भरता है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्गों में अवसाद के लक्षण ज्यादा पाए गए हैं, क्योंकि वहां मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अभी अपेक्षा के हिसाब से कम है।
1: LASI के विश्लेषण में 75 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में प्रोबेबल मेजर डिप्रेशन की प्रेविलेंस 9.4% तक दर्ज हुई। 60 से 64 वर्ष में ये 8.3% थी।
2: एक और महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है, LASI में सिम्टम बेस्ड असेसमेंट से डिप्रेशन का स्तर सेल्फ रिपोर्टेड डायग्नोसिस की तुलना में कहीं अधिक पाया गया। इन दोनों आंकड़ों के बीच का अंतर हमें एक महत्वपूर्ण सवाल देता है, क्या मानसिक स्वास्थ्य की समस्या कम है या हम उसे पहचान कम रहे हैं? यही इस कार्यक्रम की केंद्रीय चिंता भी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को बीमारी मानकर ही नहीं देखता तो वो मदद लेने कैसे जाएगा?
1: और अगर परिवार हर उदासी को उम्र का असर है कहकर टाल देता है तो पहचान और उपचार की संभावना और कम हो जाती है। रवि पाराशर।
0: भारत में लगभग 8% बुजुर्ग ऐसे हैं जो गंभीर डिप्रेशन से पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें खुद इस बीमारी की जानकारी नहीं है, ये भी एक गंभीर बात है। इसकी जो खास वजह है वो सामाजिक संकोच है, वो ये बताना नहीं चाहते दूसरों को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, कि वे उन्हें कोई मानसिक समस्या है। एक और बड़ी वजह रिपोर्ट में पाई गई है कि मानसिक सेहत की जांच करने वाले और इलाज करने वाले डॉक्टरों की अभी कमी है, तो इस दिशा में सरकार काम कर रही है और लगातार काम जारी रहेगा, ऐसा मुझे अपने अनुभव के आधार पर लगता है।
2: उम्र बढ़ने के साथ मानसिक स्वास्थ्य को केवल मानसिक बीमारी के संदर्भ में देखना भी अधूरा होगा। उम्र के साथ साथ फिजिकल लिमिटेशंस भी बढ़ती हैं। 60 प्लस के लोगों में लगभग 23.8% को कम से कम एक एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में लिमिटेशन और लगभग 48% को इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में कम से कम एक लिमिटेशन दर्ज की गई है।
1: अब जरा इसे एम्फैटिकली यानी मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझते हैं। जब किसी व्यक्ति को रोजमर्रा के कामों के लिए दूसरे की मदद चाहिए, जब चलने फिरने की स्वतंत्रता कम हो, जब सुनने या देखने में कठिनाई हो, जब दर्द लगातार साथ हो, तो सिर्फ शरीर नहीं बदलता, व्यक्ति की ऑटोनॉमी, कॉन्फिडेंस और सोशल पार्टिसिपेशन भी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर बात करते हुए फिजिकल हेल्थ, डिसेबिलिटी और फंक्शनल इंडिपेंडेंस को अलग नहीं किया जा सकता। डॉक्टर नवाब खान।
3: बुजुर्गों में एक उम्र के बाद सुनने की जो ताकत होती है थोड़ी कम हो जाती है, कभी कभी विजन पे असर हो जाता है, और आप हम लोग ये सब जानते हैं कि उम्र के साथ मेमोरी पे भी असर पड़ता है। सब पे ना हो, लेकिन एक मेजर पॉपुलेशन पे ऐसा काम होता है जब आपके सुनने की, देखने की, याद करने की क्षमता में कुछ चेंजेस हो जाए तो फिर ट्रस्ट का इश्यू आता है कि किस पे ट्रस्ट करें। कभी कभी आपकी मेमोरी आपका साथ नहीं दे रही होती है तो मेमोरी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो अगर आपने खाना खा लिया है या नाश्ता कर लिया है तो फिर आपको याद भी नहीं है, तो उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, प्रॉपर चैट की जरूरत होती है, तो प्रॉपर टीम की जरूरत होती है। और इस हालत में बुजुर्गों को खुद अपनी मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी होती है। जैसे कुछ चीजें आप रखे थे भूल जाते हैं, या किसी ने कुछ बात कही तो हमको शक हो, ऐसे शायद ये मेरे बारे में बोल रहा है, दे स्टार्ट ओवर हियरिंग एवरीथिंग, दे स्टार्ट रेफरिंग देमसेल्फ फॉर एवरीथिंग, जो पेनफुल हो जाता है बात। और ये जेंडर से एक्चुअली चेंज नहीं होता है, दोनों जेंडर के लिए इक्वली चीजें एप्लीकेबल होती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये बेसिकली आपके कॉग्निशन मतलब थिंकिंग पैटर्न, उससे रिलेटेड इमोशन और उससे रिलेटेड बिहेवियर, इन तीनों चीजों को एक लॉजिकल वे में रिस्ट्रक्चर करने का तरीका है। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर हैं, इस जगह पे हैं, तो ठीक है, तो मे बी ऐसी ही मेरी जिंदगी थी और ऐसा ही होना था, इसलिए हो रहा है ये, तो इसलिए स्टार्ट ब्लेमिंग आवरसेल्फ। एक्चुअली हम ही इसको फेट को

0: ओन करते हैं, इन चीज प्रॉब्लम्स को हम ही ओन करते हैं और हमको ये करना ही होगा, बट सिचुएशन कुछ भी और हो सकती है. तो ये जो कॉग्निटिव एरर्स हो जाते हैं उसको एक जेंटली मोर लॉजिकली चैलेंज करके रिस्ट्रक्चर करने का तरीका है. लेकिन इसका इस्तेमाल तब होता है जब पेशेंट या पर्सन जो है, बोले आप, या ओल्ड एज में जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके अंदर लॉजिकल एबिलिटी हो समझने के लिए कि इसका ये अल्टरनेटिव कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, इसका ये अल्टरनेटिव कॉज भी हो सकता है.
1: मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा में एक और पक्ष अक्सर पीछे छूट जाता है, वो है आर्थिक सुरक्षा.
2: अब जरा सोचिए, अगर उम्र बढ़ने के साथ आय का स्रोत समाप्त हो जाए, स्वास्थ्य खर्च बढ़ जाए, दवाइयां नियमित रूप से लेनी पड़े और व्यक्ति आर्थिक रूप से पूरी तरह परिवार के सदस्यों पर निर्भर हो जाए, तो आर्थिक चिंता और मानसिक तनाव के बीच दूरी कितनी रह जाती है.
1: इसीलिए वृद्धावस्था का मानसिक स्वास्थ्य केवल काउंसलिंग का विषय नहीं, ये सोशल सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और डिग्निटी का भी विषय है. यानी समाधान केवल ये नहीं कि बच्चे अपने माता पिता से फोन पर बात करें, जरूरत इससे बड़ी है कि ऐसे मोहल्ले हो जहां बुजुर्ग सुरक्षित होकर निकल सके, ऐसे पार्क हो जहां बैठने की जगह हो, ऐसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था हो जिसका उपयोग वृद्ध आसानी से कर सके,
2: ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स हों जहां वे केवल लाभार्थी नहीं सहभागी हों, और ऐसी सामाजिक गतिविधियां हों जिनमें उम्र बाधा न बने, क्योंकि किसी व्यक्ति के सामाजिक रिश्ते उसकी मानसिक सेहत का हिस्सा हैं.
1: एक सवाल और है, मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य को केवल बीमारी के उपचार के रूप में देखा जाए या उसमें सोशल पार्टिसिपेशन, लोनलीनेस प्रिवेंशन, कम्युनिटी सपोर्ट, काउंसलिंग, ऑटोनॉमी और डिग्निटी जैसे विषयों को भी शामिल किया जाए? क्योंकि अगर अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तो लोनलीनेस प्रिवेंशन भी पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन का एक हिस्सा होना चाहिए.
2: और अगर रिटायरमेंट आइडेंटिटी को बदलना है तो मीनिंगफुल एंगेजमेंट भी एजिंग पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए. भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई सरकारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं. लंबे समय से भारत में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर.
3: सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि सरकारी योजनाओं का फायदा सभी बुजुर्गों को मिलना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में रह रहे हों, चाहे वो शहरी इलाकों में रह रहे हों, चाहे वो वृद्धाश्रमों में रह रहे हों. और इसके लिए ग्रामीण इलाकों में मुझे लगता है कि वहां के जो प्रधान होते हैं और सरपंचों को, उनको जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, उनसे सीधे जोड़ा जाना चाहिए. और शहरी इलाकों में जो सबसे निचली इकाई है, मोहल्लों के वार्डों के जो पार्षद हैं, उनके जिम्मे ये काम किया जाना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए बल्कि. और कुछ सरकारी योजनाओं का जिक्र यहाँ करना सही रहेगा. आयुष्मान भारत योजना, ये योजना ऐसी है कि 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को, देश भर के सभी बुजुर्गों को इस योजना के तहत 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलता है, जिसमें मानसिक समस्याओं का इलाज भी शामिल है. दूसरी योजना है टेली मानस. ये मानसिक सेहत से जुड़े परामर्श के लिए, सलाह मशवरे के लिए सरकार की 24 घंटे सातों दिन चलने वाली हेल्पलाइन सेवा है. ये बुजुर्ग इस पर कॉल करके मुफ्त मानसिक सलाह ले सकते हैं. इसके नंबर दो हैं, एक है 14416 और दूसरा नंबर है 1800894416. और अच्छी बात यह है कि ये सेवा जो है वो हिंदी समेत कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, तो इसका लाभ उठाया जा सकता है. बिना संकोच किए आप फोन घुमाइए. अगर दूसरों को नहीं बताना चाहते, अकेले में सलाह लेना चाहते हैं, अपनी मानसिक सेहत से जुड़ी समस्या का निराकरण चाहते हैं, तो फोन पर बात कर सकते हैं. एक और नंबर है जिसको एल्डर लाइन कहा जाता है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन, वो है 14567. ये आसानी से याद भी किया जा सकता है, 14567. इस पर कॉल करके बुजुर्गों को न केवल मानसिक मदद मिलती है, मानसिक समस्याओं से जूझने में मदद मिलती है, बल्कि पेंशन, कानूनी विवाद और पारिवारिक समस्याओं में भी ये यहाँ पर सलाह मशविरा और सही मार्गदर्शन दिया जाता है. इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र भी सरकार ने जगह जगह स्थापित किए हैं. प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर बुजुर्गों को बुनियादी सलाह मशविरा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दवाएं यहाँ इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP

0: और जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम DMHP, इसके तहत जिलों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श दिया जाता है। वयोवृद्ध जन कल्याण योजनाएं भी यह सरकार चलाती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इन्हें चलाता है। इसके तहत डे केयर सेंटर, आश्रय और मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं अगर घर पर आपको परामर्श चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ये सभी हेल्पलाइन सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त हैं और 24 घंटे उपलब्ध हैं।
1: ये जानकारी भी होनी चाहिए कि भारत में मानसिक बीमारी के इलाज और अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में एक कानून बनाया गया था और आयुष्मान भारत यानी पीएम जय के नियमों के तहत बेहद सुगम और मरीज के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए तैयार किया गया है।
2: आंकड़े जरूरी है, वो हमें समस्या का आकार बताते हैं, लेकिन आंकड़े ये नहीं बताते कि किसी शाम अकेले कमरे में बैठना कैसा लगता है, पति या पत्नी की मृत्यु के बाद पहली रात कैसी होती है, रिटायरमेंट के बाद सोमवार और रविवार में फर्क क्यों मिट जाता है, या जब परिवार कहता है आप आराम कीजिए तो कभी कभी उस वाक्य के पीछे छुपा संदेश कैसा महसूस हो सकता है।
3: इसीलिए इस वर्ष की थीम लिव्ड एक्सपीरियंसेस हर्ड रियल वॉइसेस रियल चेंज एक महत्वपूर्ण दिशा देती है। सिर्फ लोगों के बारे में बात मत कीजिए, लोगों को बोलने की जगह दीजिए। मन के मौसम बदले जा सकते हैं, उम्र बढ़ना एक बायोलॉजिकल रियलिटी है, लेकिन अकेलापन हमेशा अनिवार्य नहीं।
2: शायद उम्र का सबसे कठिन मौसम वो नहीं होता जब शरीर कमजोर पड़ने लगता है, सबसे कठिन मौसम वो होता है जब व्यक्ति को लगे कि उसकी जरूरत कम हो गई है, जब बातचीत उसके बारे में होती है लेकिन उससे नहीं, जब उसके लिए फैसले लिए जाते हैं लेकिन उसकी राय नहीं पूछी जाती, जब उसके पास घर होता है लेकिन संवाद के लिए कोई नहीं, जब उसके पास परिवार होता है लेकिन अपनापन नहीं, और जब उसके भीतर बहुत कुछ कहने को होता है सुनने वाला कोई नहीं।
3: हमारे पास आंकड़े हैं और आंकड़े हमें बताते हैं कि भारत तेजी से एजिंग सोसाइटी बन रहा है। वे बताते हैं कि डिप्रेशन, सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस वास्तविक और गंभीर चिंताएं हैं।
2: लेकिन एक आंकड़ा कभी किसी व्यक्ति की पूरी कहानी नहीं होता, इसलिए शायद अब समय है कि हम सवाल बदलें। ये पूछने के बजाय कि आपको क्या परेशानी है, कभी पूछें आप इन दिनों क्या महसूस कर रहे हैं।
3: ये पूछने की बजाय आपको किस चीज की जरूरत है, कभी पूछें आप अभी भी क्या करना चाहते हैं।
2: और ये मान लेने के बजाय कि उम्र के साथ मन के रंग फीके पड़ जाते हैं, उसे फिर से रंगने के लिए एक जगह बनाते हैं, क्योंकि मन भी मौसम की तरह है, उसमें पतझड़ आता है तो बसंत भी आ सकता है, कभी बादल घिरते हैं तो धूप भी लौटती है।
3: जरूरत सिर्फ इतनी है कि खिड़कियां बंद न कर दी जाए, किसी के मन की खिड़की खुली रहे, कोई वहां से आती आवाज तो सुन सके, रुके, बात करे और कहे कि हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ।
2: क्योंकि शायद मानसिक स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी सुना जाना है। किसी उम्र में जीवन समाप्त नहीं होता, हर उम्र में एक नया मौसम आने की गुंजाइश हमेशा रहती है,
3: और ये नया मौसम हर किसी के जीवन में आए ऐसी हमारी कामना है।
4: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित रूपक मन के मौसम उम्र के साथ। आलेख डॉक्टर बानी आनंद, वाचन स्वर हर्ष रंजन, नवोदिता मिश्रा, रमेश शर्मा की गीत पंक्तियों को स्वर दिया ओम प्रकाश मिश्र ने, प्रस्तुति सहयोग हरदीप सिंह और सुमन ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
5: नमस्कार, आकाश

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है। दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: Really is a point of convergence.
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों की पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले के में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा है कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉर्पोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का प्रभाव अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वितीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का आदर्श आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इसमें तमिलनाडु की मधुरातकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थत्तन चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वे अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नगोया में आधिकारिक समापन हो गया। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू डांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया और भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया तथा 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक सहित कुल 85 पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के समापन के अवसर पर भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को देश का दृढ़ संकल्प, जुनून और शानदार खेल भावना का प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी।

0: The News, read by Shagun Chopra. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers. He said it is marked by the repositioning of the United States, the rise of China, and growing global interdependence.
1: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing. And I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
0: Dr. Jaishankar has emphasized that Russia is a country that stood by India in many ways when India's security and territorial integrity was under threat. The External Affairs Minister stressed that at a time when much of the world preferred backing a military regime next to India, Russia was a country with which India's relations were very good. He said India-Russia relations are shaped by that legacy in many ways. He said the bilateral relationship has widened beyond that today, and it is very much an economic relationship as well. Dr. Jaishankar said there are military, nuclear and space components, along with significant amount of trade and investment between the two countries. Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan today handed over the first installment of 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh under the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen 2.0 at an event in Guntur district. Mr. Chauhan also laid the foundation stone for the country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology comprising 177 houses at a cost of 14 crore rupees. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu was present on the occasion. Addressing the gathering, the Union Minister described the 3D concrete printing project as a major step towards modernizing rural housing. Campaigning ended today for by-elections to 5 assembly constituencies across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and one Lok Sabha constituency in Assam. Polling for the 6 seats will be held on Tuesday, while counting of votes will take place on Friday. The assembly constituency is going to poll are Madurantakam and Dharapuram in Tamil Nadu, Thattanchavadi in Puducherry and Rajinagar and Nandigram in West Bengal. In Assam, voting will be held for the Nagaon Lok Sabha constituency. The assembly seats fell vacant following the resignation of the sitting legislators, while the Nagaon Lok Sabha seat became vacant after the resignation of Congress leader Pradyut Bordoloi. Indian Ambassador to UAE Deepak Mittal has said prayers continue to flow in for good health of Captain Smith Nachar. In a social media post, Ambassador Mittal said he is recovering well and in good spirits. He added that the embassy remains in touch with the local authorities and the family is extending all possible assistance. Iran has said that the Strait of Hormuz will not reopen until the United States meets 7 conditions outlined in a June interim agreement, as Tehran and Washington remain at odds over efforts to end their conflict. Iranian state media today quoted Parliament Speaker Mohammad Bagher Qalibaf as saying that Tehran's position on reopening the strategic waterway is completely clear and firm. Separately, Iranian army spokesperson Mohammad Akramania said Iran will seek to extend the range of its missiles following its recent war with the United States. The curtain has come down on the Asian Games with their dazzling closing ceremony at Aichi Nagoya in Japan, bringing more than 2 weeks of action-packed competition across 43 disciplines to an end. The ceremony featured the traditional parade of athletes, the lowering of the Asian Games flag, and the formal handover of ceremonial torch and flag to Doha, the host city for the 2030 edition. Proudly carrying the Indian tricolour for the closing ceremony was India's women's flag bearer and shooting star Neeru Dhanda. And that is the end of this news bulletin.
2: Namaskar. आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ईरान ने कहा, अमरीका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले किए। हूती ने रियाद में आरामको तेल संयंत्र पर हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
3: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। ईरान के सरकारी मीडिया ने संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ के हवाले से बताया कि रणनीतिक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के बारे में ईरान की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट और दृढ़ है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। इस संघर्ष से ही आवश्यक हो गया है कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित करे। उन्होंने कहा कि देश पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ा चुका है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
4: हूती विद्रोहियों के दियात पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तईस और तूर अलबहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशंस किए। इन ऑपरेशंस में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
2: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए

0: प्रमुख मुद्दे हैं। राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा चौथी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो के 45 वर्षीय बेटे और सीनेटर फ्लेवियो बोल्सोनारो अपने परिवार के दक्षिणपंथी आंदोलन को वापस सत्ता में लाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य भागों पर हमले तेज करने की चेतावनी दी है। रूस के तेल शोधन कारखानों पर हमले तेज करने के यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बयान के बाद ये चेतावनी आई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश की सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, रक्षा उद्योगों और संबंधित बुनियादी ढांचों पर हमले तेज करेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ लंबा मार्च शुरू किया। सरकार के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद ये कदम उठाया गया है। एशियाई खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वज वाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में 4th स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
1: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहां भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा हॉर्मुज गलडमरू मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। यमन ने साना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले किए। हूती ने रियाद में आरामको तेल संयंत्र पर हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में 2 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ 4th स्थान पर रहा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I'm Renuka with the World News. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says, changing global landscape opens new avenues for cooperation among emerging and middle powers. Highlights peace, supply chain resilience and connectivity as their key agendas. Iran says Strait of Hormuz remains closed until US meets its 7 conditions, plans to expand range of missiles. Yemeni forces launch strikes on Houthi-controlled Sana'a and Sada as rebel group claims to hit Aramco oil facility in Riyadh. And Asian Games.